0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हालचाल, आज 20 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 11 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहेगा, 10% चांस है बारिश के आज वैसे, लेकिन यस सनसेट होगा आज 7:31 पे।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे।
1: नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। और यस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन अगेन। अगर आप मुझे अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो, या फिर अगर आप मुझे 12 बजे सुन रहे हैं तो, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए, सुनते रहिए लंच बॉक्स शो। ये आर काफी स्पेशल होता है। मैं बॉलीवुड की खबर तो लेके आता हूँ, बट एक ऐसी खबर भी लेके आता हूँ जो या तो आपको डराएगी, या फिर मुस्कराएगी, या हंसाएगी, या फिर रोमांटिक बनाएगी, या फिर आपको इंस्पायर करेगी। जी हाँ, तो आज की कहानी होगी एक इंस्पिरेशन की। सो बस आप बने रहिए, सुनते रहिए लंच बॉक्स शो।
0: बचाओ क्या,

0: वेल, ये रही कहानी यहाँ पे जो मैं लेके आया हूँ, काफी इंस्पिरेशनल है, काफी मोटिवेट करेगी आपको। सो यस, लेट्स स्टार्ट इट। छोटी सी स्टोरी एक लड़की की है जिसका नाम है आरव, और आरव एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से था। उसका ड्रीम था एक दिन अपना बिजनेस स्टार्ट करना, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब भी वो कुछ स्टार्ट करता कुछ ना कुछ गलत हो जाता। पहली बार बिजनेस स्टार्ट किया, लॉस हो गया। दूसरी बार ट्राई किया, पार्टनर ने साथ छोड़ दिया। तीसरी बार ट्राई किया, बैंक ने लोन रिजेक्ट कर दिया। धीरे धीरे आरव को लगने लगा कि शायद ये ड्रीम उसके लिए बना ही नहीं है। और एक दिन वो अपने फादर के पास जाकर बैठा और उनसे पूछा, पापा मुझे लगता है मैं हार चुका हूँ, मैं कितना भी ट्राई कर लूँ मुझे हार ही मिलती है। फिर पापा ने उनके सामने बोला, एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ इशारा करते हुए, बेटा कभी बिल्डिंग बनाते हुए देखा तुमने? आरव बोला, हाँ। फादर ने फिर कहा, बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? आरव ने जवाब दिया, फाउंडेशन। फिर फादर ने स्माइल करते हुए कहा, और फाउंडेशन बनाते वक्त बिल्डिंग दिखती है क्या? आरव बोला, नहीं। फिर फादर ने कहा, एग्जैक्टली, लाइफ में भी जब तुम स्ट्रगल कर रहे हो तुम्हें रिजल्ट नजर नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बन नहीं रहा या फिर ठीक ठाक नहीं है। एंड देन ऑफ कोर्स इस लाइन से आरव को बात तो समझ में आ गई, और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो सक्सेस के पीछे भागने की बजाय हर दिन बस एक स्टेप लेगा। एक फोन कॉल, एक न्यू आइडिया, एक न्यू कस्टमर और एक लर्निंग का। कुछ महीने बाद उसका बिजनेस स्लोली ग्रो होने लगा, और एक दिन उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और रियलाइज किया कि जिस टाइम उसे लग रहा था कि वो फेल हो रहे हैं, एक्चुअली उस टाइम उनकी फाउंडेशन बन रही थी। सो गाइज, अगर आज आपकी लाइफ में कुछ वर्क नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए हो। मे बी यू आर जस्ट बिल्डिंग योर फाउंडेशन। सक्सेस कभी कभी एक ह्यूज जंप से नहीं, बस एक छोटे छोटे स्टेप से आती है। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, तो बस यही है वो। तो आज अगर इस लाइफ अगर आपकी थोड़ी सी डिफिकल्टी है, डिफिकल्ट से गुजर रही है, तो मायूस ना होइए, बिकॉज कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है और कोई भी चीज़ टेम्प्रेरी भी नहीं होती है। एवरीथिंग कीप ऑन चेंजिंग। सो गिव अप मत करो और ट्राई करते रहो। बस एक और स्टेप लो, कल एक और फिर एक और। वेल यस, समटाइम्स द डिफरेंस बिटवीन गिविंग अप एंड विनिंग इज सिंपली वन मोर स्टेप। वैसे आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये कहानी या फिर ये जो मैंने बात बताई यहाँ पे कैसी लगी। 5599 इज द नंबर। लंच बॉक्स
1: विद केतन। इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन्स का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स।
4: Reliance Ventilation System.
5: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
4: Moisture और ventilation का problem लगता है।
5: और पता है मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
4: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
6: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
7: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
8: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
7: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
9: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू old for gold.
5: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
2: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
5: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
7: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
9: The first time Glenn saved lives was a Thursday. He was wearing odd socks. He crossed his feet. No one seemed to notice. The second time wasn't quite as dramatic. He closed his eyes to see how many dog breeds he could name. 22. Not bad, Glenn. Not too bad. Sit back and save lives at your local NZ Blood Donor Centre or mobile drive. Visit nzblood.co.nz to book your blood or plasma donation appointment.
10: The big sale is on now at Beds R Us with amazing deals on selected sleepyhead beds like 60% off Swiss Tech Precision Queen Size now 3499. The big sale at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
11: Shop fresh deals at New World North Island this week. Get skinless chicken thigh cutlets, $11.99 per kilo, or avocado, 2 for $2.50. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
12: Lunchbox with Ketan.
13: मुझे पसंद है लड़का।
12: हम। Lunchtime Rant Line
0: के लिए ये रही बात, और रोहित भाई ने मैसेज किया है। Hi Ketan, my rant is about people who call you. ये तो मैंने तो कोई दूसरा मैसेज पढ़ लिया। Actually back to back मैसेज आया, तो मैंने choose नहीं किया था ये, but it's fine. ये रहा सिमरन का एक्चुअली मैसेज था। वो कह रही है, I am just 5 minutes away. This is the message I often get it, but when they haven't even left the home, how can they be so sure and why do they lie? I was waiting for a friend at a coffee and she kept telling me she was almost there, she's almost there, but after 20 minutes I called her and said, she actually said, I'm just getting ready. At this point, I think 5 minutes away needs to be added to the list of biggest lie. सो ट्रू यार, सो ट्रू। मुझे लगता है स्कूल में ना ये चीज भी सिखानी चाहिए कि टाइम को कैसे देखा जाता है और टाइम को कैसे बताया जाता है आपका। इसलिए मैंने आजकल स्टार्ट करने लगा, जो भी मुझे बोलता है ना भाई मैं 5 मिनट दूर हूँ या 10 मिनट दूर हूँ या फिर बस इतना टाइम लगेगा, मैं बोलता 13 या मेरा। एंड अगर उन्होंने बोला कि भाई उनका, तो समझ जा रहा कि भाई भूल जाओ। बट यस, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि जो मजाक में काफ़ी सामने वाले बंदे का टाइम भी बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। बट अगेन डिपेंड्स यार कि सामने वाला बंदा कैसा है। मे भी हो सकता है वो लाइट ले लिया, हाँ ठीक है यार 5 का 10 ले लिया, 5 का 15 ले लिया, इट्स फाइन। बट टाइम इज वैल्यू एंड वैल्यू इज मनी, फॉर श्योर टाइम इज मनी, राइट।
12: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.

0: हमने आप सभी के लिए पॉडकास्ट रेडी किया है। अभी हमारे बीच सनी कौशल जी आए थे, सैंडी रुजबे से उन्होंने बात की और आपके जो सवाल आपने भेजे थे उनसे भी हमने रूबरू करवाया था। काफ़ी बातें करी उन्होंने बिजनेस को लेके, क्राइम कैसे कम हो सकता है, क्यों रिपीटेड ऑफेंडर्स हो रहे हैं इमिग्रेशन को लेके, और काफ़ी कुछ उन्होंने न्यूजीलैंड की ग्रोथ के बारे में बात की। तो ये पॉडकास्ट अगर सुनना है आपको तो हमें बस भेज दीजिए टेक्स्ट 5599 पर ड्राइव लिख के, आप तक लिंक डायरेक्टली पहुंच जाएगी। साथ में अनफिल्टर्ड विद शर्ली सेठिया, ये भी हमने पॉडकास्ट वहां पर डाल रखा है, तो यू कैन जस्ट सर्च ऑन स्पॉटिफाई और रोवा अनफिल्टर्ड विद सैंडी रुजबे और आपको मिल जाएगा। बहुत ही पते की बात बोली शर्ली ने रिगार्डिंग हर स्ट्रगल एंड एज एन बीइंग आउटसाइडर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज हम हमेशा बोलते हैं कि यू नीड टू हैव अ गुड कॉन्टैक्ट इन बॉलीवुड या फिर एटसेट्रा, सो दिस माइट हेल्प यू इफ यू आर परसुइंग और इफ इवन इफ नॉट, नॉलेज रखने के लिए इट इज़ वेरी वर्थ। एंड येस बियॉन्ड द डेप्थ, वॉट डज सक्सेस एक्चुअली मीन, BF लिखिए 5599 पे भेज दीजिए ताकि लिंक आप तक पहुंच जाए जहां पे आप समझेंगे कि सोसाइटी क्या किस तरह से कैलकुलेट करती है। ये विजय एंड पूजा ने रिकॉर्ड किया, सो येस यू डेफिनेटली शुड चेक इट आउट एज वेल।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: हाँ।
3: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: peanuts with 2 degrees. Starting from just $8, our prepay prices are nuts. Minimum $10 top-up applies. Plans auto-renew monthly if you have enough credit. Check 2degrees.nz for T's and C's.
1: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
2: Busy subah ho ya shaam ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
3: Lunchbox with Ketan.
4: Iske peeche na 3-4 ladkiyan padi hui hain.
3: Iske peeche?
5: Hum.
3: लंच के मंच पे
6: वेल बॉलीवुड की खबर की बात कर लेते हैं. दृश्यम 3 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है. आज अजय देवगन स्टारिंग ने ओपनिंग वीकेंड में अराउंड 174 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है. ये INR है, रिपोर्ट आई आज और मंडे यानी कि परसों के दिन डे 4 पर अर्ली एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 21-22 करोड़ का बिजनेस हो चुका है इसका. इसके साथ ही फिल्म का इंडिया टोटल में 196 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है और अब 200 क्लब भी क्रॉस कर चुकी है. बॉलीवुड हंगामा के अकॉर्डिंग फिल्म का मंडे होल्ड स्ट्रॉन्ग रहा और अगर वीकेंड्स में मोमेंटम बना रहा तो लाइफ टाइम कलेक्शन 400 करोड़ के आसपास हो जाएगा इस फिल्म को लेके. सो यस, आप स्टे ट्यून रहिए और कलेक्शन का इंतजार करिए.
3: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट NZPMI.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI.

0: ब्रॉट टू यू बाय 0800 रचना इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
1: वेलकम बैक यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स और मेरा नाम केतन है चलिए फटाफट से आपके लिए ऑफर्स लेके आ चुका हूं तो आप सुन लीजिए वेल यस फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस दिस दिवाली विद हम सबसे पहले तो लॉजिक लिखिए LOGIC और स्पेस के साथ अपना नाम लिखिए और मुझे 5599 पे भेज दीजिए ताकि ड्रॉ में शामिल हो सके हैं जो आपको मौका दे सकता है $1,000 वर्थ ऑफ न्यू वर्ल्ड वाउचर्स जी हाँ वन विनर ओनली लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु गंडोला अ हाउस होल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री कॉल 0800 लॉजिक जी उसके बाद दूसरा भी मौका है एक और जहां पे मुझे आप फॉर्च्यून लिखिए और स्पेस के साथ नाम भी लिखिए और 5599 पे मुझे भेज दीजिए बिकॉज इसके थ्रू आप ड्रॉ में शामिल होंगे और ये आपको मौका दे सकता है $1,000 कैश जीतने का फॉर्च्यून विथ होल ग्रेन असेंशियल विटामिन्स फॉर्च्यून फ्यूल एवरी वेन बिग और स्मॉल ब्रिंग होम द फॉर्च्यून आप टर्म्स एंड कंडीशन के लिए हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं hum.rewa.nz एंड यस एक चीज याद रखिए 30 तारीख को इसका डिस्क्लोजर होगा इस महीने के एंड में और 5 मिनट तक के लिए ही ये खुला हुआ है फॉर योर एप्लीकेशन सो वंस यू स्टार्टेड हियर जैसे कि अभी आप मैं कर चुका हूं तो आपको फट से विद इन 5 मिनट्स मुझे सारे एंट्रीज भेजने हैं

0: गूंजेगी।
1: क्या रहा, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में। वेल गेस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। अभी वैसे बने रहिए, बिकॉज इसके बाद कॉफी ब्रेक में आपका साथ देगी सैंडी और उनका साथ देंगे रुजबे इन द ड्राइव शो। पर अभी के लिए बने रहिए, सुनते रहिए, बहुत ही खूबसूरत गाना ये मैं प्ले करता हूँ। एंड देन आफ्टर दैट इस आर में आपके लिए एक और मैं मौका देने वाला हूँ जो अभी मैंने पिछले आर दिया था। सो अगर आपने मिस आउट किया है, डोंट वरी, इस आर में फिर से बोलने वाला हूँ। एंड येस, एट द सेम टाइम स्पोर्ट्स की खबरें भी मैं लेके आने वाला हूँ। सो यू स्टे ट्यून, बने रहिए और सुनते रहिए आज का इस लंच बॉक्स शो।
2: बचाओ क्या,

वेल एक खबर है लेटेस्ट क्वींसटाउन के वॉल्टर पीक स्टेशन में कल एक लार्ज वेजिटेशन फायर रैपिडली स्प्रेड हो रही थी। फायर माउंट निकोलस के स्टीप स्लोप्स की तरफ तेजी से बढ़ रही थी और इसका थिक स्मोक क्वींसटाउन और लेक वाइकाटिपो के अक्रॉस जैक्स पॉइंट और हेनलीज फार्म्स की तरफ जा रहा था। फायर और इमरजेंसी न्यूजीलैंड ने दो हेलीकॉप्टर विद मॉनसून बकेट्स डिप्लॉय किए वाइल फायर फाइटर्स को एयरलिफ्ट करके फायर ग्राउंड्स पर भेजा जा रहा था। टीम्स का इनिशियल फोकस था वॉल्टर पीक होमस्टेड को प्रोटेक्ट करना और अथॉरिटीज ने स्मोक अफेक्टेड रेसिडेंट्स को डोर और विंडोज क्लोज रखने की एडवाइस दी है बिकॉज स्मोक जो है वो उनके घर तक भी जा सकता है। फायर रिपोर्टेडली लास्ट वेडनेसडे के प्लान बर्न से रीइग्नाइट की गई।

0: केतन
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगी ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
2: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
3: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
2: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
3: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
2: बस इतना ही।
3: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
4: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
5: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right. Get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs with 1% finance and $2,000 off. Experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry! Limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
6: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle कीजिए अपना home loan of 500,000 या उससे ज्यादा Finance World के साथ. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2. 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. हर eligible home loan of 500,000 या उससे ज्यादा automatically आपको draw में enter करता है. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
7: Thinking of switching lines? How about insurers? Switching to Tower is easy. Plus, get $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code EASYSAVE. T's and C's apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
8: My future is still being written. I don't know what I'll be when I grow up, but I know I want the chance to find out. Your investment in children can help me get there. With the right support, I can feel safe, learn, grow, build confidence, and discover what I'm capable of. That's why Barnardos is asking Aotearoa to invest in children. Invest in children at investinchildren.nz. And invest in me.
9: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
10: I need justice.
11: I need justice.
9: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
12: Is baar khatra kab, kaise aur kahan se aayega, batana mushkil hai.
9: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
12: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. Aakhri hissa baki hai.
13: A lot of injuries happen on the weekend. So if you're out and about, or just out in the backyard, have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.

0: विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
0: स्किप या रीप्ले।
3: So yeah, let's replay the one जो लास्ट आर में मैंने आपको बताया था विद द कॉम्पिटिशन। सो ये रहा फिर से, लॉजिक लिखिए और मुझे 5599 पे भेज दीजिए अपने नाम के साथ। मेक श्योर अपना नाम भी हो, स्पेस भी हो लॉजिक और आपके नाम के बीच। एंड यस, आपके पास 5 मिनट ही है अभी से टू टेक अ पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन। ये विनर आपको बना सकता है $1,000 वर्थ ऑफ न्यू वर्ल्ड वाउचर्स का। जी हाँ, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंटोला, household name in finance and insurance industry, call 0800-LOGIC-G. याद रखिएगा Logic Finance and Guru Kendola. साथ में of course Fortune की तरफ से आपको एक से बढ़कर एक मौके मिल रहे हैं. And as you all know that Fortune with whole grains, essential vitamins, Fortune fuels everyone, big or small, bring home the fortune. उसके लिए आप पार्ट लीजिए इस कंपटीशन में भी। आप मुझे फॉर्च्यून लिखिए और 5599 पे अपने नाम के साथ भेज दीजिए। मेक श्योर फॉर्च्यून की स्पेलिंग और आपके आपका नाम उसमें लिखा हो, 5599 पे भेज दीजिए। $1,000 कैश जीतने का आपको यहाँ पे मौका है। सो यस, ये कंपटीशन जो है वो फेस्टिव फॉर्च्यून, विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस दिस दिवाली विद हम। और इसका जो स्लो शो होगा, यानी कि विनर कौन है वो बताया जाएगा ऑन फ्राइडे 30th October को। एंड यस, टर्म्स एंड कंडीशन डू अप्लाई हो। तो अभी आपके पास 5 मिनट ही है टू बी द टू टेक पार्ट इन दिस।
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

Well, former star, Kiwi star Dallin Wattan, ab officially Tonga ke liye 2026 Rugby League World Cup mein khelenge. Warriors winger Tonga के 24 men squad में named हैं और ये उनका Tonga के लिए international debut होने वाला है. DWZ ने पहले New Zealand के लिए 13 test खेले और 2018 में Kiwis को captain भी किया था. उन्होंने कुछ साल पहले अपनी international alliance Tonga को switch करने का decision लिया था, लेकिन injuries की वजह से Tonga के लिए खेल नहीं पाए थे. Tonga अपने World Cup 2026 campaign 17 अक्टूबर को England के against Perth में start करने वाली है.

Well, it is खबर बता देता हूँ regarding cricket. USA ने Dallas में UAE के against historic ODI win register की है.

0: यूएई ने पहले बैटिंग करते हुए 330 रन बनाए हैं 8 विकेट खोकर, और ये काफी ह्यूज टोटल था। लेकिन यूएसए ने सिर्फ 48.5 ओवर्स में 331 पर 4 विकेट खोकर ये चेस कर लिया है, और इसके साथ ही 6 विकेट विक्ट्री भी हासिल की। मिलिंद कुमार ने ब्रिलियंट 116 रन बनाए हैं 84 बॉल्स की इनिंग खेली, और इस परफॉर्मेंस के साथ वो यूएसए के ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिक्सेस मारने वाले बैटर बन चुके हैं। यूएसए का ये ओडीआई हिस्ट्री का हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेस था, और इस विन के बाद यूएसए लीग 2 टेबल में टॉप पर आ चुकी है और 2027 वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की रेस में स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे है। व्हाट डू यू थिंक, यूएसए बनेगी 2027 वर्ल्ड कप की कंपटीशन के लिए, क्वालिफाई कर पाएगी? व्हाट डू यू थिंक? वैसे ये साउथ अफ्रीका में हो रहा है, आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? लंच बॉक्स विद केतन, मुझे पसंद है लड़का। हम
1: ड्राइविंग यू होम, ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो।
3: ये गलत बोल दिया यार।
2: और पहनता भी नहीं उसको।
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी, वो ब्रांड हो गया ना
2: रुस्बे के बाल लगे उस।
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Poke Koi, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Poke Koi, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J Crew.
5: At Bunnings, spring really does start in the garden. Come into Bunnings, bring the tamariki down, find something that we can all get involved in. Nothing better than getting outside to do your gardening.
6: Get watering with a Pope 30-meter True Blue garden hose, only $48.17. Tidy up the backyard with a Nazito PXC 18-volt cordless line trimmer kit, $209. And grab some Yates 4-liter hose on weed and feed, just $30.46.
5: We've got what you need for less. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
7: Weber barbecue sales almost never happen, so don't miss this one. Join us at Auckland's only Weber store for our massive birthday sale this weekend. Get hands-on with the complete 2026 range, the new Weber Spirits, the upgraded Genesis range, and every colour of New Zealand's favourite barbecue, the Weber Q. The grills are blazing, the savings are real. See you at Weber store, 86 Lun Ave, Mount Wellington. Sale finishes Monday.
8: Welcome to Kebabs Kitchen. I am Chef Alex, and this is my guest, Sarah.
9: What do you make in kebab's special, Chef Alex?
8: Perfect blend of spices, tender meat, and fresh vegetables. Har kebab banta hai with love and passion.
9: Wow, these kebabs are amazing. Spices ekdam right, and meat is so juicy.
8: Yeh hai Amma's Kebabs promise, delivering happiness bite by bite. Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
9: 100% authentic and pure as mother's love.
10: Non-stop Bollywood.
11: Hum.
10: Playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
12: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
10: इसके पीछे
11: हम।
10: TikTok.
0: फिटनेस ऐप की खबर लेके आया हूँ। एक लोकल न्यूज आर्टिकल की इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया है कि स्ट्रेवा फिटनेस ऐप पर NZDF स्टाफ की मूवमेंट पब्लिकली ट्रैक की जा सकती है। जनवरी से इन्वेस्टिगेटर्स ने 565 स्ट्रेवा यूजर्स आइडेंटिफाई किए हैं जो न्यूजीलैंड डिफेंस फोर्स बेसिस और कैंप पर एक्टिविटीज रिकॉर्ड कर रहे थे, और इनमें 488 प्रोफाइल्स पब्लिक थी। डेटा न्यूजीलैंड के बेसिस के साथ साथ 13 ओवरसीज कंट्रीज और टेरिटरीज तक ट्रेस हुई है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिविजुअल रनिंग या साइकिलिंग एक्टिविटीज हार्मलेस लग सकती है, लेकिन मल्टीपल वर्कआउट को कंबाइन करके किसी पर्सन की डेली रूटीन, वर्कप्लेस मूवमेंट और ओवरसीज पोस्टिंग का पैटर्न समझ में आ सकता है। NZDF को इस रिस्क के बारे में पहले से वार्निंग मिलती रही थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक अभी तक इसके लिए स्पेसिफिक पॉलिसीज नहीं थी जो फिटनेस ऐप यूज को डायरेक्टली स्टॉप कर सके।
10: दिल से दिल तक,
4: unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: 800 रचना, इधर उधर जाने से बचना। कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बहुत ही बढ़िया रहा आज की बातें, आज के जो मैसेजेस थे, आज के मौके जो मैंने आपको दिए हैं और आपने जिस तरह से पार्ट लिया उस पे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बस बने रहिए, सैंडी विल बी जॉइनिंग शॉर्टली इन द कॉफी ब्रेक, बट यस आई विल टेक अ लीव एंड आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव।

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं. शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है यार. सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m.
6: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए. Hi, मैं हूँ गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस. जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूँ. लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं.
7: टर्म्स कंडीशन फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई. कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी विच इज 0800 564424.
8: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका. लोटस मैनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश. साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट. बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो. फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November. टीज एंड सीज अप्लाई.
0: Time check.
9: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tires on 0800 000010.
0: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
10: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. Changeable winds and steep slopes are making it harder to control the 1,200-hectare fire near Queenstown. About 15% of the Walter Peak perimeter has been secured. Fens warns there is a significant amount of work still to be done, with the focus including protecting livestock. Police fear mixed loyalties are at play as they investigate a suspicious death on Waiheke Island. They believe a select few may have information about Chantal McLaughlin Middlemiss's final day on June the 2nd. Officers had visited her address to confirm she was alive after being told the opposite. But people known to the family found the 32-year-old in bed unresponsive less than an hour later. ACT wants to scrap the cap on tax benefits from charitable donations. Leader David Seymour doesn't agree with recent changes.
11: It was a very mean and foolish thing for the government to do, and that's why the ACT Party will be campaigning to reverse it, because for some of the kindest and most generous people in our society, this was a new tax.
10: US death row prisoner Krista Pike is reportedly awake and speaking after her botched execution. Her lawyers say she remains shackled to a hospital bed while continuing to receive critical medical care. They note her recovery is unprecedented medically and her prognosis remains unclear. To sport, New Zealand cricket has conceded its decision to go with the NZ20 League went against independent Deloitte analysis. NZC has detailed how that process unfolded after criticism from high-profile members of the cricket community. And football superstar Lionel Messi has played his last game in Argentine colours. Argentina has beaten Benin 3-0 this afternoon, and of course Messi was among the goal scorers, converting a 71st-minute penalty.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
12: मौसम के हालचाल मेड सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 17.7 डिग्री है और आज को ओवरनाइट 11 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है. मौसम आज का सनी ब्राइट गुड वेदर. सनसेट आज का 7:31 पर.
0: द बीट ऑफ बॉलीवुड
13: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Coffee break with Sandy.
12: 3:03 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी और अभी से लेकर 4 बजे तक मेरा और आपका साथ रहने वाला है. चार बजे के बाद मेरे साथ यहाँ पे हो जाएगा रुजबे के साथ. सो हाउ आर यू डूइंग, कैसे है आप, आपका डे आज का कैसा जा रहा है? इट्स अ वेंसडे, हम डे पे हम यहाँ पे आ चुके हैं. 7th October है, अगर आज आपका बर्थडे है, अ वेरी वेरी हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू. वैसे आज का जो दिन है हिस्ट्री में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. सो 7th October 1959 को दुनिया में पहली बार मून का फार साइड देखा गया था. 1949 में आज के दिन ईस्ट जर्मनी बना था. एंड 1571 में एक मैसिव नेवल बैटल हुई थी और न्यूजीलैंड का कनेक्शन भी है. 1769 में जेम्स कुक वो सेलिंग ऑफ द कोस्ट ऑफ न्यूजीलैंड, जहाँ पे उसने अराउंड दिस ये जो लैंड है सबसे पहले उसने साइट की थी, जो बाद में इसको उन्होंने बोला कि ये न्यूजीलैंड है. सो या आज के दिन उन्होंने न्यूजीलैंड को ऐसा साइट किया था. सो बेसिकली 7th October इज बीन अबाउट बैटल्स, बॉर्डर्स, द मून एंड ऑफ कोर्स लिटिल बिट अबाउट न्यूजीलैंड हिस्ट्री. वैसे आज का जो दिन है ये वर्ल्ड कॉटन डे भी बहुत सारी जगह पे सेलिब्रेट किया जाता है फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉटन एंड द पीपल एंड द कम्युनिटीज बिहाइंड द ग्लोबल कॉटन इंडस्ट्री. आपका डे आया सो फार कैसा जा रहा है अभी यहाँ पे ज़रूर शेयर कीजिएगा. अगर किसी को शाउट आउट देना चाहते हैं, उनका बर्थडे है, उनकी एनिवर्सरी है, तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं. 5599 इज़ अ नंबर.

शहनाई खुशियों की बजेगी, सुन लो उम्मीदें दुल्हन से सजेंगी, सुन लो काली सी शब के पार से, देखो चंद

0: 3:14 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं एंड हमारे पॉडकास्ट सुनना ना भूलेगा. हमारे डिफरेंट पॉडकास्ट है जो आप जाके सुन सकते हैं ब्रेकफास्ट कैचअप में, जो ब्रेकफास्ट शो में बिटवीन विजय एंड पूजा के बीच में वार्तालाप होती है. ये सारी की सारी आपको ब्रेकफास्ट कैचअप में मिलेगी. अगर आप BF लिख के भेजते हैं 5599 पर तो ऑटो रिप्लाई में आपको ये लिंक मिल जाएगा. एंड अनफिल्टर्ड हमारा पॉडकास्ट है जिसमें मैं और रुजबे ऐसी बातें करते हैं जो हम कई बार रेडियो पे कह सकते हैं कि एट द लेंथ हम डिस्कस नहीं कर सकते. तो वो सारी डिस्कशंस वहाँ पे होती है और कुछ स्पेशलिस्ट के साथ होती है. एंड इसमें हमने डिफरेंट स्पेशलिस्ट को बुलाने की कोशिश की है, चाहे आपके विल्स के बारे में बात हो. जैसे कईयों को होता है कि जाने के बाद तो सब कुछ फैमिली का ही है, लेकिन वो एग्जैक्टली फैमिली का होता है कि नहीं होता है इन न्यूजीलैंड, इसके बारे में भी हमने पब्लिक ट्रस्ट के एक मेंबर से बात की है एंड बहुत इन्फॉर्मेशन हमें पता चली. तो ये सारे के सारे पॉडकास्ट आपको अनफिल्टर्ड में मिलेंगे. इफ़ यू गो ऑन रोवा या फिर स्पॉटिफाई या फिर एप्पल म्यूजिक पे, तो अगर आप सर्च करते हैं अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुजबे तो ये सारे के सारे एपिसोड्स आपको मिलेंगे. सो आप सुनेगा. एंड आने वाले दिनों में किस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट करें वो भी आप यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं. कॉफी ब्रेक विद सैंडी.
1: March 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
2: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए.
3: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है.
2: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
3: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
5: हेलो एवरीबॉडी.
1: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
6: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
1: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे ओनली ऑन हम.
2: रुजबे, 2026 में ना बहुत काम कर लिया है, अब तो ब्रेक बनता है.
3: बिल्कुल, तो लेते हैं एक लग्जरियस हॉलिडे ब्रेक बाली और बैंकॉक.
2: और आप भी चलिए सन टूर्स के साथ ईस्टर 2027 में.
3: बाली 6 दिन और बैंकॉक 5 दिन, कंप्लीट लग्जरियस हॉलिडे पैकेज. बुक कीजिए टिल दिवाली और पाइए फ्री 2 nights 3 days सिडनी टू सिडनी क्रूज पैकेज.
2: 2027 ईस्टर को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल. बाली, बैंकॉक और फ्री क्रूज.
3: बुक नाउ विद सन टूर्स.
2: कॉल करें 0800 478686.
7: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
0: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
8: अब हमारा क्या होगा?
9: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
0: तो क्या करें?
10: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
11: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
12: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
13: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right. Get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off, experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry! Limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
14: It's New Zealand Wool Month, so don't miss sheepishly good deals on wool carpet at Flooring Extra. Shop the wool sale now and save on a range of luxurious New Zealand wool carpet. Warm, durable and beautifully sustainable. Plus, you can enjoy 36 months interest-free. So discover the comfort and style of wool that suits your space and budget. Visit your local Flooring Extra showroom today. For expert advice you can rely on, TC's fees and credit criteria apply.

0: 3:19 हो चुके हैं, कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं। इन एक आर्टिकल आया है अबाउट अनपेड हेल्थ केयर बिल्स, $70 million आर अनपेड हेल्थ केयर बिल्स, एंड इसमें टूरिस्ट एंड माइग्रेंट्स आते हैं। सो टूरिस्ट एंड माइग्रेंट्स ओ हेल्थ न्यूजीलैंड मोर देन $70 million इन अनपेड पब्लिक हेल्थ केयर कॉस्ट। हेल्थ एनजेड ने एस्टिमेट किया है कि 25-30% ऑफ जो डेट है मे नेवर बी रिकवर्ड दो, मीनिंग कि पोटेंशियली $17.5 to $21 million कुड बी रिटर्न ऑफ। सो जो दो अनपेड अमाउंट है ये सिग्निफिकेंटली राइज हुआ है फ्रॉम 45.6 million इन 2022 and 2023 टू $18 million इन 2019 and 2020 अंडर द फॉर्मर DHP सिस्टम। एंड हेल्थ न्यूजीलैंड का कहना है कि इंक्रीज में पार्टली रिफ्लेक्ट हायर ट्रेवल एंड माइग्रेशन फॉलोइंग द पेंडेमिक। नाउ मोस्ट विजिटर्स जो कि वीज़ा पे होते हैं ऑफ लेस देन 12 months, कई बार वो एलिजिबल नहीं होते हैं पब्लिकली फंडेड हेल्थ केयर के लिए। सो दे आर जनरली एक्सपेक्टेड टू हैव ट्रेवल इंश्योरेंस। ऑल दो इंश्योरेंस जो है ये हर एक वीज़ा कैटेगरी के लिए मैंडेटरी नहीं है। सो हेल्थ न्यूजीलैंड ये स्टिल प्रोवाइड करती है ट्रीटमेंट रिगार्डलेस कि समवन एलिजिबल है या फिर इमिजिएटली पे कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो हेल्थ न्यूजीलैंड फिर भी जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं। सो इट देन ट्राइज टू रिकवर द मनी थ्रू इनवॉइसेस जाते हैं, पेमेंट प्लान जाते हैं एंड स्पॉन्सर्स होते हैं या फिर देन डेट कलेक्शन एजेंसीज होती है इवेंचुअली। लेकिन इसमें से कई बहुत एक्सपेंसिव केसेस भी है, लाइक वन ऑफ द पेशेंट का एक्यूमुलेट हुआ है मोर देन $174,000 का बिल आफ्टर रिसीविंग ट्रीटमेंट फॉर सीरियस किडनी डिसीज एंड देन लेटर कैंसर एज वेल। एंड ही हैड रिपोर्टेडली फेल टू डिस्क्लोज उसकी एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन एंड क्रिमिनल कन्विक्शंस व्हेन अप्लाइंग फॉर अ वीज़ा। तो उसने वो सब चीज़ें नहीं बताया था कि उसमें क्रिमिनल कन्विक्शंस है या एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है। सो देवर ऑल्सो केसेज इसमें लिस्टेड है जिसमें सम पीपल दे रिक्वायर्ड लाइफ लॉन्ग डायलिसिस, जिसमें विजिटर्स भी है फ्रॉम अदर कंट्रीज जहाँ पे ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता है, मतलब उस कंट्री में वो ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता है। एंड ऑफिशियल्स ने आइडेंटिफाई किया है 7 people हु सॉट अर्जेंट डायलिसिस और रेनल फेलियर ट्रीटमेंट विद इन अ ईयर ऑफ अराइविंग ऑन विजिटर वीज़ा। सो एटलीस्ट 2 ऑफ दोज पीपल वर फाउंड टू हैव नोन अबाउट द मेडिकल कंडीशन बिफोर अराइविंग, लेकिन बाकी जो है उनका कहना है कि उनको इस कंडीशन के बारे में नहीं पता था। लेकिन यहाँ पर जो बिगर इशू है वो ये है न्यूजीलैंड का इमिग्रेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम कि समवन इज़ अराइविंग ऑन टेम्प्ररी वीज़ा एंड उनको एक एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट लेना पड़ता है एंड दे कैनॉट पे, देन हु शुड अल्टीमेटली फुट द बिल। ये यहाँ पे एक बिगर क्वेश्चन आता है। हेल्थ न्यूजीलैंड का कहना है कि जो क्लिनिकल डिसीशंस है वो किसी की अबिलिटी को पे के ऊपर नहीं होते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी को कोई डिफ़िकल्टी है तो वो ट्रीटमेंट रिफ्यूज़ नहीं हो सकता है बिकॉज समवन इज़ इन एलिजिबल फॉर पब्लिकली फंडेड केयर, या कंसर्न्स है अबाउट लिमिटेड डायलिसिस कैपेसिटी एज वेल। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ये भी है कि जो ACC कॉस्ट है दे आर नॉट इंक्लूडेड इन $70 million का ये जो फिगर है। इफ़ अ विजिटर और माइग्रेंट इज इंजर्ड इन एक्सीडेंट, ACC जनरली कवर करता है ट्रीटमेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर वीज़ा स्टेटस। सो या $70 million गाइज अनपेड हेल्थ केयर बिल में अभी भी है, जिसमें पोटेंशियली $17.5 million to $21 million जो है ये रिटर्न ऑफ ही होने वाला है।
1: Hollywood's most wanted.
2: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
3: मैं लाऊं अपना A game.
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

3:31 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। फिलहाल कॉफी ब्रेक आप यहाँ पे सुन रहे हैं। यू नो, एक सीरीज है जो कि इस समय पर बड़ी वायरल जा रही है, यूट्यूब पे है। आपको किसी स्ट्रीमिंग चैनल पे ये देखने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सीरीज जो है, इसे 20 ईयर ओल्ड ने बनाया इन 2019 जीरो बजट के साथ। जीरो बजट की खुद ही शूटिंग कर रहे थे अपने फ़ोन के साथ। अबाउट देयर रियल लाइफ, अबाउट देयर फ्रेंडशिप, देन लव, एंड देन उसको अपने वन प्लस फ़ोन के ऊपर इन्होंने शॉट किया। एंड कट टू 2026, ये जो सीरीज़ है अभी वायरल हो चुकी है, यूट्यूब पे है। इसके डिफरेंट सीजन्स हैं। सो ऐसा नहीं कि एक नाम है सीरीज़ का, उसके डिफरेंट सीजन्स है। हर एक सीज़न का डिफरेंट नाम है। फॉर एग्जाम्पल,

0: हिट हो रही है। कई बार होता है ना कि समय जो है ये कईयों के लिए सही होता है, उस समय पर चीज़ें जो है थोड़ी हिट वायरल होती है, कई बार टैलेंट की कदर थोड़ी लेट में होती है, तो इसके साथ भी ये हुआ है। सो अगर आप देखेंगे इस सीजन्स को, इस सीरीज़ को, तो शुरू होती है अ समर स्टोरी सीजन वन से। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको फुल एपिसोड्स मिलेंगे।
1: इश्क का दस्तूर ही कुछ ऐसा, जो इसको जान लेता है ये साला उसी की जान ले लेता है।
2: Yo, yo, honey sing.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: 19 मिनट बाकी है 4 बजने में. फिलहाल कॉफी ब्रेक आप यहाँ पे सुन रहे हैं. यू नो सितंबर मंथ वाज फुल ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स. बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बने एक्चुअली में. सो सितंबर में टेक्सास में 71,000 ड्रोन्स को लॉन्च किया गया था जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. एंड देन देयर वाज अनदर वन. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. सो अमेरिकन डॉक्टर स्टीफन ही रैन अ माइल इन 4 minutes 17 seconds pushing his 1 year old daughter in a pram. So he knocked almost 10 seconds off the previous record. And aur bhi bane jaise David Jackson, he ran at least 50 kilometer every day for 100 days. 100 days ke liye 50 kilometer, 50 kilometer wo daude hain. So previous record 20 dinon ka tha. Inhone 100 days ka banaya hai. इंडिया में भी एक रिकॉर्ड बना चेन्नई में. वहाँ पे 12,211 क्रोशे की जो हेड्स एंड कैप्स है इन्हें डिस्प्ले किया गया था. सो ये जो डिस्प्ले का है ये बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड था. जो हेड्स थे दे वर इंटेंडेड फॉर डोनेशन टू हॉस्पिटल्स एंड रूरल कम्युनिटीज एज वेल. और ये बहुत अजीब रिकॉर्ड बनाया एक ने. सीरियल रिकॉर्ड ब्रेकर है डेविड रश. इन्होंने 19 वेट गीली टी शर्ट्स इन्होंने पहनी इन 60 सेकेंड्स. भाई ये क्या रिकॉर्ड था यार. मैं गीले कपड़े पहन के रिकॉर्ड बनाऊंगा. तो या इन्होंने 19 वेट टी शर्ट्स पहनी इन 1 मिनट. दिस इज समथिंग वी कैन ट्राई एक्चुअली. बाकी तो मुझे नहीं लगता कि हम ट्राई कर सकते हैं, बट दिस इज समथिंग मेरे को लगता है ट्राई कर सकते हैं एट योर ओन रिस्क. तो सो या ये रिसेंटली रिकॉर्ड बने हैं. और या कुछ वेजिटेबल्स का रिकॉर्ड भी बना है. जाइंट वेजिटेबल्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड एट वन इवेंट. ये यूके में एक शो हुआ था, ऑटम शो उनका वहाँ पे हुआ था, जहाँ पे 26.02 केजी ऑफ बीट रूट इसका रिकॉर्ड बना. सबसे बड़ी बीट रूट जाइंट वेजिटेबल्स में 7.598 एम की कुकम्बर प्लांट. एंड या डेंडलिन रूट भी 27 मीटर की, बट बीटरूट 26.02 केजी की.
1: Let's go.
2: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: 3:47 एट द मोमेंट हो चुके हैं फिलहाल कॉफी ब्रेक आप यहां पे सुन रहे हैं। दिवाली के मौके पे यहां पे आपको $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस जीतने का मौका मिल रहा है। फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए हम लेके आए हैं। सो फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में आपको एवरी डे एवरी शो में यहां पे वीकडेज में चांस मिल रहा है टू विन समथिंग वर्थ ऑफ $1,000। सो टोटल $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस है यहां पे। आज ड्राइव शो में आपको मिलने वाला है मौका जीतने का $1,000 वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर, यानी कि किसी एक पर्सन को दिवाली के टाइम पे, दिवाली से पहले एक्चुअली में मिलने वाला है $1,000 वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर। मतलब $1,000 का फ्यूल भरवा के कहाँ कहाँ, कितना डिस्टेंस, कितने किलोमीटर्स आप कवर कर सकते हैं। एंड फ्यूल तो आजकल वैसे भी बहुत महंगा है, कोई आजकल $10 का भी फ्यूल वाउचर देता है तो वो भी काम आ रहा है कि चलो इतना तो बेनिफिट हो रहा है। बढ़िया, वी आर गिविंग अवे $1,000 वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर। एंड ऑल्सो आज आपको चांस मिलने वाला है एक और कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए ड्राइव शो में, जहाँ पे $1,000 वर्थ ऑफ हैरिंगटन लिविंग का वाउचर आपके नाम हो सकता है, जिसमें होम डेकोरेशन या फर्नीचर आप खरीद सकते हैं। तो ये जो मौका है आज आपको ड्राइव शो में मिलने वाला है, जब आपको बोला जाएगा उस समय पर आपको यहाँ पे मैसेजेस करने होंगे। और इसकी इन्फॉर्मेशन ड्राइव शो में, आपको इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका एक्चुअली में आपको ड्राइव शो में मिलने वाला है। ये जो कॉम्पिटिशन्स है इसमें आप जितनी मर्जी एंट्रीज भेज सकते हैं, एट अ टाइम भी, एक दिन में भी, जितनी मर्जी एंट्रीज आप भेज सकते हैं वो आपके ऊपर है। बट रिमेंबर, जब आप 5599 पर मैसेज करते हैं तो 5599 एक शॉर्ट कोड नंबर है, तो स्टैंडर्ड करियर रेट्स डू अप्लाई। तो रिमेंबर कि उसका थोड़ा से सेंस जो है, सेंट ही करते हैं लेकिन जो भी है वो कटते ज़रूर है, तो उसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिएगा। कंपटीशन की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगी, hum.rova.nz पे, वहाँ पे जाके आप चेक कीजिएगा। एंड आज सुनते रहेगा, किसी टाइम पर भी आपको मौका मिल सकता है ड्राइव शो में टू एंटर इन द ड्रॉ टू विन $1,000 वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर या फिर $1,000 वर्थ ऑफ हरिंगटन लिविंग का वाउचर। Throwback.
1: Brought to you by 0800 रचना, इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, that's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 17.9 डिग्रीज और आज को वो नाइट 11 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है। मौसम आज का सनी ब्राइट गुड वेदर रहा, कल का वेदर भी ऐसा ही रहेगा। सनसेट आज का 7:31 पर।
2: Drive show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusbe.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
1: चार बज के दो मिनट हो चुके हैं। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। ड्राइव शो आपके लिए शुरू हो चुका है। यू हमिंग अलोंग विद सैंडी। रुज़बे बस थोड़ी देर में यहाँ पे ज्वाइन कर लेगा। कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा गया है? इट इज़ 7th October। कल आपने लीडर्स की डिबेट देखी या फिर नहीं देखी? क्रिस हिपकिंस वर्सेस क्रिस्टोफर लक्सन था कल, एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग विल से कि दोनों ने फायर अप किया ओवर कॉस्ट ऑफ लिविंग, ट्रस्ट के ऊपर, रेसिज्म के ऊपर। ये तीन चीज़ें एक्चुअली में हाईलाइटेड थी कल की डिबेट में। सो एट द एंड ऑफ द 90 मिनट जो डिबेट हुई दोनों के बीच में, 49% जो पैनल था उन्होंने बोला कि क्रिस हिपकिन वन देयर वोट कंपेयर टू 24% फॉर लक्सन, एंड अनदर जो 27% था दे रिमेन अनडिसाइडेड। दो जो पैनल था वो 100 वोटर्स का था, जिन्हें रफली ऐसा इवनली किया गया था बिटवीन टू पीपल। डिबेट में वैसे क्रिस हिपकिंस ही सेड कि मैनी थिंग्स लक्सन ने बोली है, उन्होंने वो एक्यूज़ किया क्रिस्टोफर लक्सन को, ये काफ़ी चीज़ें उन्होंने जो बोली है वो ट्रू नहीं है। वाइल क्रिस्टोफर लक्सन जो थे, इन्होंने लेबर को एक्यूज़ किया ऑफ मेकिंग अनफंडेड प्रोमिसज एज वेल। सो बाद में वैसे क्रिस्टोफर लक्सन ने रिपोर्टर्स को ज़रूर बोला कि अंदर सिर्फ 100 लोगों के वोटिंग के हिसाब से वर्डिक्ट हुआ है कि इस डिबेट को कौन जीता है, एंड लिटरली 100 पीपल इन द स्टूडियो डजन डिसाइड। जो एक्चुअली डिसीजन है ये तो 7th November को होने वाला है, जो कि इलेक्शन डे है। सो या अगर आपने ये डिबेट देखी है तो इसके बारे में आप भी शेयर कर सकते हैं। कल हम किससे बात करने वाले हैं इलेक्शन स्पेशल में, इसके बारे में थोड़ी देर में आपको हम यहाँ पे अपडेट देने वाले हैं। बट अगर आपने डिबेट देखी है तो आपको कैसे लगी डिबेट, आपका क्यों व्यू क्या है, इसके बारे में आप भी यहाँ पे ज़रूर शेयर कर सकते हैं 555 पर।

0: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
1: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
0: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
1: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
0: बस इतना ही।
1: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
3: रुजबे, 2026 में ना बहुत काम कर लिया है, अब तो ब्रेक बनता है।
4: बिल्कुल, तो लेते हैं एक लग्जरियस हॉलिडे ब्रेक, बाली और बैंकॉक।
3: और आप भी चलिए सन टूर्स के साथ ईस्टर 2027 में।
4: बाली 6 दिन और बैंकॉक 5 दिन, कंप्लीट लग्जरियस हॉलिडे पैकेज। बुक कीजिए टिल दिवाली और पाइए फ्री 2 nights 3 days सिडनी टू सिडनी क्रूज पैकेज।
3: 2027 ईस्टर को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल, बाली, बैंकॉक और फ्री क्रूज।
4: बुक नाउ विद सन टूर्स।
3: कॉल करें 0800 478686।
5: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए। हाय, मैं हूं गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस। जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूं। लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं।
6: टर्म्स, कंडीशन, फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई। कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी, विच इज 0800 564424।
7: MediaWorks Complaints. How can I help?
8: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
7: Nice.
8: And you talked me into creating this funny character.
7: Right.
8: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
7: Are you?
8: Yes.
7: Are you Bobby the Baker?
8: Yes.
7: What's that thing you do again?
8: Stop it.
7: You bring the mouth.
8: Stop it.
7: I'll bring the pie.
8: Stop it, please.
7: Okay.
8: Yeah, sure. I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
7: So what's the problem?
8: My name's Bruce.
9: Advertise with MediaWorks.
7: New Zealand listens to us.
10: Buy a birthday bundle at Macca's and get a birthday bonus. Choose between 35% off toys online at The Warehouse or free 30-minute time play at Time Zone. The more the merrier at Macca's 50th. T's and C's apply. Birdie.
11: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
12: No particularly justice to you.
13: Mujhe justice nahi, badla chahiye.
11: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
14: Is baar khatra kab, kaise aur kahan se aayega, batana mushkil hai.
11: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
14: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. Aakhri hissa baki hai.
15: Shop fresh deals at New World North Island this week. Get skinless chicken thigh cutlets, $11.99 per kilo. Or avocado, 2 for $2.50. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
16: Are you ready to go home?
17: The Drive Show with Sandy and Ruzbe. Brought to you by Beds R Us, Manuku and Pukekohe. Where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuku and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group. The home of GWM Havel and Omura Jaiku.
18: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
19: Masti karenge, mauj katenge, garda paad denge.
20: 4:16 Drive Show aap sun rahe hain with Sandy and Rizbe. Good afternoon, Sandy.
21: Good afternoon, Rizbe. Kaise ho to?
20: Main bahut hi badhiya.
21: First class.
20: How are you doing?
21: I'm doing good as well. I have few topics today. So, मेरे पास दो तीन चीज़ें हैं और फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून भी हमें करना है. I have 3 types of friendship जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं थोड़ी देर में.
20: अच्छा.
21: And then listeners can let us know कि उनका इस 3 type में कौन सी type की friendship फिलहाल चल रही है या फिर we'll talk about it.
20: Nice,
21: more.
20: Interesting, yeah.
21: Yeah.
20: Okay.
21: But for now, new alternatives to LOL. काफी तो आजकल की जो
20: लव आउट लाउड
21: या अब जनरेशन का कहना है कि यू नो जब कई बार होता है ना कि सेंटेंस के एंड में हम लॉ लिख लेते हैं टू मेक इट लाइट या फिर हा हा लिख देते हैं टू मेक इट लाइट स्टॉप डूइंग इट बिकॉज वी आर नॉट जजमेंटल
20: अच्छा ऐसा बोल रहा हूँ
21: या कि वो टाइम निकल चुका है द टफ टाइम हैज पास्ड
20: ऐसा बोल रहा हूँ
21: सो अभी लॉल हाहा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है
20: विंक इमोजी
21: वो सब अब जरूरत
20: नहीं है जरूरत
21: यू विल राइट समथिंग वी विल जस्ट अंडरस्टैंड इट
20: क्या क्या लिखना है ऐसा
21: तो लेकिन न्यू अल्टरनेटिव जरूर आए हैं जैसे LAL Laughed a little.
20: अच्छा
21: ज्यादा नहीं क्योंकि थोड़ी हंसी आती है ना कई बार आपको लेकिन फिर भी आप लॉल लिखते हो So laughed a little, LAL.
20: मैं तो काफी बार लॉल लिखता हूँ जब मुझे हंसी नहीं भी आ रही है
21: वही ना
20: कि मतलब लाइक फॉर एग्जांपल कोई जोक मार रहा है और हम उसको लॉल बोलते हैं
21: तो वहां पे तुम LBO लिख सकते हो
20: क्या
21: LBO
20: उसका मतलब क्या है
21: लाफिंग बाय ऑब्लिगेशन तो ये वहां पे सूट करेगा LBO लाफिंग बाय ऑब्लिगेशन So other things are like
20: काफी लोगों को laughing by obligation करना पड़ता होगा ना
21: yeah वो भी करना पड़ता है and then we have
20: like for example Sandy
21: and मेरे को तो वैसे भी हंसी आती है
20: but laughing by obligation भी आपको काफी बार करना पड़ता है
21: हाँ
20: करना पड़ता है क्या भी हंसना पड़ेगा इन्हें तो ये छुपने बैठेगा
21: yeah जैसे एक और है LSIDC laughing so I don't cry
20: काफी लोगों के साथ ये होता है ना नर्वस होते तभी वो लोग का लाफ्टर निकल आता है
21: लाफ्टर निकलता है या ये भी होता है सो दीस काइंड ऑफ न्यू थिंग्स अभी आई है जैसे WTHS व्हाट द हेल श्योर व्हाट द हेल श्योर ऐसा
20: अच्छा
21: अगर लिखना है तो पता नहीं यार लेट्स सी मतलब ये अलग ही ऐसे आए हैं तो कुछ तो मैं पढ़ने ही नहीं वाली हूँ इतने वो है ये
20: हाँ फिर एक कुछ तो भी एक बहुत बड़ा वाला है IYKYK कुछ तो
21: If
20: भी
21: you know, you know.
20: हाँ हाँ हाँ ये कुछ तो भी है
21: वो मेरे को लगता है इफ यू नो यू नो बोलना बेटर है देन IYYK वो जो अब फिगर आउट करने में होता है उससे ज्यादा एब्रीविएशन मुझे लगता है इफ यू नो यू नो उसका एब्रीविएशन
20: आपने कौन सा ऐसा एब्रीविएशन देखा है जहां पे आपको ऐसा लगा है कि भाई ये क्या है और आपको गूगल करना पड़ा है आप यहाँ पे 5599 पे मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल करके भी बता सकते हो हमें 0800
21: अभी तो वो भी होता है ना राइट नाउ की जगह RN
20: ये तो मेरे को सच्ची में समझ में नहीं आता है मेरे को लगता है RN मतलब रजिस्टर्ड नर्स
21: रजिस्टर्ड नर्स तो स्मॉल कैपिटल्स में मतलब स्मॉल लेटर्स में अगर RN लिखा इट्स राइट नाउ
20: GBU क्या होता है यार
21: गॉड ब्लेस यू
20: ओ तो GBY होना चाहिए ना
21: हाँ लेकिन अलग है ना जनरेशन GBU लिखती है
20: GBU गॉड ब्लेस यू
21: या आई थिंक सो ये वो है बट आप ही बताइए यहाँ पे और कौन सा एब्रीविएशन है जो आपको जैसे रुजबे ने बोला कि गूगल करना पड़ा यू हैव टू फाइंड आउट कि यार ये जो मुझे लिख के भेजा है इसका मतलब क्या है सो Yeah.
20: You can give us a call over here. 0800-004-866 is the number. एक गाना सुनते हैं
21: स्लैंग भी हो सकता है एक्चुअली में नॉट नेसेसरी एब्रीविएशन स्लैंग भी हो सकता है
20: स्लैंग भी हो सकता है कुछ जो आपने ऐसा सुना और बोला कि भाई इसका क्या मतलब है ठीक है भेजिए यहाँ पे
21: मैं जब नई आई थी यहाँ पे ये मीडिया वर्क्स में सिंग आउट को मैंने किया था गूगल
20: सिंग आउट
21: सिंग आउट
20: मतलब जब भी कुछ पूछना
21: कुछ
20: है तो
21: हेल्प चाहिए ये वो ऐसे तो पहले मैं सोचती यार सिंग आउट क्यों
20: और फिर आप सडनली कॉन्शियस हो गए अरे मैं तो गाना आपने गाना तो नहीं शुरू कर दिया ना कहीं
21: ऑब्वियसली नो
20: क्या हाँ सिंग आउट रुको गाती हूँ गा के सुनाती हूँ हाय स्वागत है आपका
0: हाय लोकेश
21: हाय लोकेश
20: कैसे हो
21: बढ़िया बढ़िया
0: अच्छा क्या है
21: क्या चीज
0: SSA
20: SSA
21: SSA
20: सीसॉ
0: सत्रिकाल
21: ओह क्या यार
20: ओह माय गॉड
21: ये तो मैं लिखती हूँ फिर भी नहीं पता है
20: अच्छा SSA लिखते हो आप
21: SSA ही लिखती हूँ मैं
20: क्या बात कर रहे हो
21: हाँ
20: सच्ची में सत श्री अकाल को आप ऐसा एसएसए बोलते हो?
21: एसएसए ही बोलते हैं, हर कोई एसएसए ही बोलता है। मेरे को मतलब मेरे नोट में जितने भी है एसएसए जी या फिर एसएसए नाम लिखना है जो
20: वाले। ओह वाओ, आई डिडंट नो दिस यार। हे थैंक्स लोकेश यार।
21: और लोकेश को जवाब ही नहीं दे पाई मैं। मुझे लगा होगा कुछ हाई फाई।
20: नाइस,
21: सही है, गुड वन यार।
20: एक भी एक और आया यहाँ पे एसएफएलटीआर।
21: सॉरी फॉर लेट रिप्लाई,
20: ये मेरे को रखना चाहिए सेव करके।
21: बट या कोई सोचेगा अगर एसएफएलटीआर भेजोगे ना तो कोई सोचेगा कि भाई
20: ये गलत है। एसएफएलटीआर कैसे? सॉरी फॉर लेट रिप्लाई, सॉरी फॉर एसएफएलआर होना चाहिए
21: या
20: फिर एसएफटीएलआर, सॉरी फॉर द लेट रिप्लाई।
21: वो तो मतलब आप भेजोगे ना किसी को तो वो पहले भूलेगा कि इसने कोई टाइपो की है, वो ये भी नहीं सोचेंगे कि एब्रीवेशन है। ये क्या लिखना चाहते थे?
20: ये क्या है? KBN
21: KBN KBH पता नहीं, कभी खुशी कभी गम में ऐसा टाइप ऑफ साउंड हो रहा है। KBN KBH क्या है? G10 सिंह पापटोए।
20: इतना क्यों टाइम लगा आपको बोलने में?
21: नहीं मैं सोच रही क्या G10 क्या है, जीतेन है ये क्या?
20: पर्सनालिटी है G10
21: या G10 बताओ, ये KBN KBH क्या है? आपको सिर्फ एब्रीवेशन ही लिखने है, साथ में मतलब ही बताना है। हमें गूगल करना पड़ेगा अभी। अब एक और आया है OMW,
20: ऑन माय वे।
21: ये तो मैं लिखना चाहिए।
1: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
12: मैं लाऊं अपना ए गेम।
22: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: स्ट्रॉ में शामिल होने के लिए, जहाँ पे $1,000 वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर आपके नाम हो सकता है।
1: $1,000 का फ्यूल वाउचर, क्या बात है। फ्यूल ऐसी
0: कितने किलोमीटर आप जा सकते हैं $1,000 में? कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चल सकती है $1,000 में? डू यू नो तुम्हारी गाड़ी? हाँ,
1: $1,000 में कितने किलोमीटर?
0: हर किसी का डिफरेंट होगी, बट
1: हाँ मैं अंदाजा बता सकता हूँ आपको। रफली अगर मैं $1,000 ना मैं पकड़ू, 7 लीटर आएंगे ना? नहीं, 7 बार फुल टैंक हो सकती है शायद से मेरी गाड़ी, या 10 बार फुल टैंक हो सकती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल। और
0: 10 बार ले लो एवरेज,
1: लेट्स से 600-700 किलोमीटर भी अगर पकड़े, 7,000 किलोमीटर,
0: 7,000 किलोमीटर यू कैन कवर विद दिस फ्यूल वाउचर। सो दिस इज एक्चुअली अ गुड वन। सो स्पेशली जब फ्यूल इतना महंगा है तो
1: साउथ आइलैंड जा सकते हो आप।
0: हाँ,
1: 7,000 किलोमीटर ना,
0: या
1: रिटर्न,
0: ओके, या रिटर्न।
1: बट एनीवे,
0: अभी ये जीतने के लिए
1: बहुत फ्यूल है,
0: बहुत फ्यूल है भाई। ये इनडेलिबल होम्स की ओर से आपको मिल रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको IH यानी कि इनडेलिबल होम्स IH लिख के भेजना है अपने नाम के साथ 5599 पर, सो दैट आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाए, ताकि ये फ्यूल वाउचर आपके नाम हो सके। और रिमेम्बर, ये $1,000 हम डिवाइड नहीं करने वाले हैं वेरियस विनर्स में, एक ही विनर को $1,000 का फ्यूल वाउचर मिलने वाला है। सो इट्स क्वाइट अ गुड वन। टर्म्स एंड कंडीशन इस कॉम्पिटिशन की हमारी वेबसाइट पे है, एंड स्टैंडर्ड करियर रेट्स डू अप्लाई जब आप मैसेज करते हो 5599 पर। अपने हिसाब से 10-20 जितनी मर्जी एंट्रीज भेज लो आप, बट या स्टैंडर्ड करियर रेट अप्लाई वहाँ पे।
1: डिबेट हुआ, बहुत बड़ा डिबेट, और उसके ऊपर अगर आपने देखा है, पता है आपने तो आपको पता रहेगा, बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बाहर आया है, एंड दैट इज अबाउट दीज वर्ड्स दैट हैव बीन यूज्ड अगेन एंड अगेन।
0: कौन से?
1: 116 टाइम्स ये लीडर्स डिबेट में ये वर्ड्स यूज हुए हैं। मैं कोशिश करने वाला हूं कि मैं उसको यहां पे प्ले करूं। आई डोंट नो हाउ इट विल साउंड, बट लेट्स ट्राई।
0: एक्चुअली सुनाई दे रहा है हर जगह पे,
1: एक्चुअली और गोना, एक्चुअली और गोना, ये जो है ये 116 टाइम्स यूज हुए कल के डिबेट में।
0: ओह माय गॉड, किसी ने तो प्रॉम्प्ट दिया एआई को।
1: क्या प्रॉम्प्ट दिया?
0: ये कि इसमें सबसे ज्यादा वर्ड कौन सा यूज हुआ है इस पूरी वीडियो में।
1: नहीं, जब आप सुनते हो तभी भी आपको ऐसा रियलाइज होता है ना कि यार, लाइक फॉर एग्जांपल हम भी जब अभी हमारा शो करते हैं तो हमारे भी कुछ वर्ड्स हैं जो हम रिपीट करते रहते हैं काफी बार, एंड इट गेट्स क्वाइट कॉमन अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट इट्स क्वाइट।
0: एक्चुअली में हुआ क्या क्रिस्टोफर लक्सन एंड क्रिस हिपकिंस के बीच में, इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग वन जितनी मैं अभी न्यूज पढ़ रही हूँ। So, you know, they are out and about right now. Both are out and about right now because jo campaigns hai ye zoro shuru se chal rahi hai usbe. Chris Hipkins was out at a mall in Auckland. This time Sylvia Park. He was there. And Christopher Luxon jo hai wo bhi kafi jagah pe actually mein ja rahe hain. Wo kafi jagah pe ja ke apni presence de rahe hain. He was at Northwest Mall, by the way.
1: Oh, he was in Northwest Mall?
0: Yeah, he was in Northwest Mall. ऐसे ओवर द वीकेंड ही वाज एट दिवाली एज वेल, जहाँ पे हम गए थे
1: जी।
0: एंड सो या अभी तो चल रहा है ये सब कुछ, ये काफ़ी और चलेगा, बट लेट्स सी कि इलेक्शंस गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो तुम्हें पता है ना कि वहाँ पे जो बाद में पोलिंग होती है ना कि किसने डिबेट जीती, जो वहाँ पे 100 लोग बैठे होते हैं जो कि वोट करते हैं, उसमें मैक्सिमम वोट गई क्रिस हिपकिंस को।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: या विद एंड कम वोट गई ऑफ कोर्स क्रिस्टोफर लक्सन को, एंड 27% समथिंग ने बोला दे कांट डिसाइड, बट क्रिस्टोफर लक्सन ने ये बाद में बोला कि 100 लोग क्या डिसाइड करेंगे, 7 नवंबर को पता चलेगा क्या होने वाला है।
1: अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस।
0: सो या इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखते हैं क्या होता है।
1: क्या बात है, चलो ठीक है, वील नो मोर इन द कमिंग डेज। लेकिन हाँ, कल एक सेगमेंट आपके लिए लेकर आने वाले हैं हम। कल थर्सडे है, कल थर्सडे को हम आपके लिए इलेक्शन स्पेशल लेकर आते हैं।
0: और इस बार इलेक्शन स्पेशल में लेबर पार्टी से किसी को हम लेके आ रहे हैं
1: जी। लेबर पार्टी का मौका है इस बार आपसे बात करने का, उनको सवाल पूछेंगे हम रिप्रेजेंटेटिव को, एंड लेट्स सी क्या जवाब आते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है तो आप जरूर भेजिए हमारे पास यहाँ पे,
0: ड्राइव कीवर्ड के साथ लिख के भेजिए। अगर आप

0: लेबर पार्टी से उनके एक स्पोक्स पर्सन को हम रिप्रेजेंटेटिव को हम लेके आने वाले हैं. अगर आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे लेबर पार्टी से, वो क्या सवाल होगा? लिखिए, भेजिए 5599 पर,
1: फटाफट भेजिए.
2: From the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local developer.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आपके लिए एक से गाने यहाँ पे लेकर आते हैं. And आज Wednesday evening hump day. यार एक time पे ना Wednesday मतलब ऐसा party day होता था, student day बोलते थे ना.
1: Oh yeah.
0: But पता नहीं अभी भी कोई करता है कि नहीं parties यार Wednesday को.
1: If you're a student out there, do you still do student day?
0: Student nights. Wednesday को होता है कि नहीं होता है?
1: Yeah.
0: And अगर आप
1: still the culture or not?
0: Like अगर आप actually मेरे को भी realize हुआ कि अब मैं student भी नहीं रहा ना.
1: तो कैसे पता होगा तुम्हें ना, इसलिए तो पूछा.
0: इसलिए मैं बोला अभी नहीं होते parties, but होते रहेंगे. Yeah.
1: तो उससे याद आया मुझे वो मैं बोल रही थी ना article मैंने देखा 3 types of friendship.
0: हाँ.
1: Leaves जो पत्ते होते हैं.
0: हाँ.
1: Branches and roots. ऐसा समझ में आ ही रहा है कि इसका मतलब क्या होगा. जो लीव्स होते थे वेरी ब्यूटीफुल, गुड फ्रेंडशिप आपकी लाइफ में आती है ब्यूटीफुल, द मेक द ट्री फील फुल. आपके बर्थडेज में रहते हैं, आपकी पार्टीज में, वोकेशंस में, लेट नाइट ड्रिंक्स, न्यू बिगनिंग्स, एवरीथिंग. बट देन जो लीव्स है वो झड़ने लगते हैं.
0: ओह,
1: दे बिगिन टू फॉल.
0: So just leaves, like leaves are ones that वो हाँ मतलब वो सब इसमें होते हैं. ठीक है.
1: They begin to fall. So they're not always the bad people. ये कह सकते हैं कि सीजनल है.
0: सीजनल होते हैं लीव्स.
1: या तो आपकी वो फ्रेंडशिप है अभी लाइफ में.
0: hmm.
1: या फिर ब्रांचेस, ये थोड़ी डीपर जाती है फ्रेंडशिप सम. सो दे हैव सीन यू स्ट्रगल, दे नो योर हिस्ट्री एंड कुछ स्टॉर्म्स में तुम्हारे साथ रहते हैं. जैसे ब्रांचेस रहती हैं तो इजीली
0: जड़ में रहते हैं वो, मतलब
1: हाँ, हाँ. जड़ में नहीं, ब्रांचेस होती है.
0: ओ ब्रांचेस, सॉरी, हाँ ब्रांचेस, रूट्स नहीं है ये.
1: हाँ, सो जस्ट नॉट टू हार्ड बट दे हैव देयर लिमिट्स. तुम उसके सहारे कितनी चीजें कर सकते हो, ब्रांचेस की लिमिट होती है.
0: ज्यादा लटकोगे उसके ऊपर तो टूट जाएंगे.
1: दे लव यू, दे केयर, दे जस्ट कांट कैरी यू.
0: राइट.
1: रिमेंबर, सो वो बिट्रेयल नहीं होता है, वो उनकी कैपेसिटी कह सकते हैं कि right. वो फ्रेंडशिप की तुम्हारी उतनी कैपेसिटी है. एंड देन देयर इज अनदर फ्रेंडशिप, रूट्स.
0: रूट्स, वाह.
1: यू डोंट सी देम, दैट्स द पॉइंट.
0: या
1: सो दे आरंट constantly announcing their presence, कि हम हैं. और मे बी अब तुम हर हफ्ते हर महीने मिलते भी नहीं हो उनसे, यू नो, उनको तुम्हें हर डिटेल बताने की जरूरत नहीं होती है. तुम्हारे कई बार जस्ट एक फेक हंसी से समझ लेंगे वो
0: कि क्या,
1: क्या
0: चल रहा है
1: लाइफ में. या सो व्हेन योर लाइफ लुक्स नथिंग लाइक यू इमेजिन, देन दे आर देयर. सो या तुम्हारे सुख में हो ना हो, लेकिन तुम्हारे दुख में जरूर होते हैं.
0: क्या बात है. तो आप
1: दीज आर द रूट्स.
0: कौन से टाइप के फ्रेंड्स के अराउंड है एट दिस स्टेज?
1: लीव्स, ब्रांचेस या रूट्स?
0: राइट. तो ये आप यहाँ पे हमें मैसेज करके बता सकते हैं. बहुत डीप है यार सैंडी.
1: या
0: इट्स गोइंग क्वाइट डीप राइट नाउ.
1: या तो और ये मेरे को लगता है कि या तीनों टाइप हो भी सकते हैं आपके आसपास.
0: तीनों टाइप हो सकते हैं, बट व्हाट, व्हिच टाइप आर यू मोस्ट कनेक्टेड विद राइट नाउ?
1: I am connected with right now roots.
0: Roots.
1: Yeah. मैं हर फ्रेंड से ऐसा नहीं होता है कि लिमिटेड फ्रेंड्स है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उनको हर हफ्ते मिलना है, तो कई बार महीने भी हो जाएंगे.
0: लीव्स बहुत कम हो गए ना, लाइक मुझे लगता है जैसे जड़ गए लीव्स. विंटर आ गया ना, अब होपफुली समर में नए लीव्स आए फिर से.
1: या सो व्हाट अबाउट यू, आर यू, मुझे लगता है तुम्हारे अराउंड तो तीनों टाइप होंगे.
0: हाँ, तीनों.
1: लीव्स भी है, ब्रांचेस भी है, रूट्स भी है.
0: कम है मुझे लग रहा है.
1: लीव्स कम है,
0: ब्रांचेस है अभी भी थोड़े बहुत.
1: या
0: रूट्स है,
1: ब्रांचेस भी रहेंगे. या इवन आई विल करेक्ट दैट, मेरे में भी ब्रांचेस हैं.
0: मेरा गोल अक्सर ये होता है, आई एंड ये मेरा पहले होता था बट गलत है शायद, पता नहीं सही है कि नहीं है, बट माय थिंग वाज आई यूज्ड टू कंसीडर एवरीवन रूट्स.
1: या ये हर कोई करता है.
0: सेग्रीगेशन बहुत आगे चल के लाइफ में समझ में आता है कि नहीं एक्चुअली में देयर आर सर्टेन लीव्स, सर्टेन ब्रांचेस एंड सर्टेन रूट्स. सो थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट सैंडी.
1: ऑल गुड.

0: Show with Sandy and Rizvi.
1: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा फाड़ देंगे.
2: पांच बज चुके हैं, पावर ड्राइव एट फाइव आपके लिए हम लेकर आते हैं पांच से छह के बीच, और पावरफुल बातें होती है इस पावर ड्राइव एट फाइव में.
3: या एंड बहुत सारी और डिस्कशंस होने वाली है पावर ड्राइव एट फाइव में. आज सिचुएशनशिप भी आपके लिए हम लेके आएंगे, एक ऐसे सिचुएशन में आपको डालेंगे, अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, इसके बारे में बताएंगे.
2: ये फन टेक है, इतने यहाँ पे आप मस्ती कर सकते हो कॉल करके. और हम ये क्यों लेकर आते हैं सेगमेंट आपको बताते भी है, क्योंकि देखो क्या होता है, काम करके आप थके हारे घर पे जा रहे हो एंड everyone likes a good laugh.
3: Yeah.
2: बहुत टाइम ना आप ऐसे underestimate करते हो रेडियो को, लेकिन ये रेडियो आपका मूड इतना चेंज कर सकता है,
3: वो भी फ्री में.
2: कि हाँ, कि आपको ऐसा लगेगा कि यू नो आप घर जाओगे एक फ्रेश माइंड के साथ, कि अरे क्या हुआ काम पे, भूल ही गए सब.
3: Yeah.
2: और वही हमारी कोशिश भी होती है, तो आज ऐसी सिचुएशन में आपको डालेंगे.
3: या तो एक सिचुएशन आपके लिए हम लेके आएंगे, तो उसका ऐसा जस्ट फन हमारे साथ आप खेल सकते हैं यहाँ पे कॉल करके थोड़ी देर में 0800 00 हम पर. एंड ऑल्सो रुजबे विल गेट अ चांस फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में पार्टिसिपेट करने के लिए थोड़ी देर में ही. $1,000 वर्थ ऑफ हैरिंगटन लिविंग का वाउचर किसी के नाम हो सकता है.
2: कौन सा लिविंग?
3: हैरिंगटन लिविंग, जहाँ पे होम डेकोरेशन एंड फर्नीचर मिलता है.
2: अच्छा, क्या बात है.
3: दिवाली इज अ परफेक्ट टाइम टू बाय समथिंग फॉर योर हाउस.
2: या आई नीड टू बाय अ सोफा सैंडी. तो मैं $1,000 का मिल रहा है.
3: $1,000 का,
2: अरे क्या बात है यार.
3: तो इसके बारे में खैर और भी डिटेल्स आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे. एंड आपके आसपास क्या हो रहा है ये भी आपको बताएंगे. वैसे जो फायर है क्वींसटाउन में, सर्जेस टू कवर 1200 एकर्स बिकॉज विंड की वजह से जो फ्लेम्स है ये थोड़ी फ्यूल्ड अप हुई है. फायर फाइटर्स अभी भी बैटल कर रहे हैं वहाँ पे इस फायर को अंडर कंट्रोल करने के लिए. 15% ऑफ पैरामीटर सिक्योर्ड है. सो या चेंजेबल विंड जो है ये थोड़े एडिशनल चैलेंजेस ज़रूर क्रिएट कर रही है वहाँ पे, ऐसा फायर एंड एमरजेंसी ने बताया है.
2: बहुत ही भयानक, जो फोटोज भी देख रहे हैं ऐसा बहुत ही डेंजर लग रहा है वो देख के. फायर स्प्रेड बहुत फास्ट हो रहा है, एंड यही होता है फायर का ना, कि विंड के कारण काफ़ी बार वो बहुत ही क्विकली फैल जाती है. हम लोग को ऐसा लगता है यार, बचपन से हमने सीखा है कि फूक मारेंगे फायर पे तो बुझ जाती है.
3: एयर क्वालिटी डेफिनेटली अफेक्ट होने वाली है. हेल्थ न्यूजीलैंड ने बोला है टू कीप द विंडोज एंड डोर्स क्लोज्ड, अगर उस एरिया में है आप, सेट एयर कंडीशनिंग सिस्टम टू रिसर्कुलेट या फिर उनको टर्न देम ऑफ. Air out homes once smoke conditions have improved and check out on children and elderly people as well, जो कि इसके वजह से जिनको प्रॉब्लम आ सकती है.
2: Most times fire, कोई भी incident होता है तो most times जो भी मतलब ये होती है deaths या कुछ भी होता है, that always happens due to suffocation.
3: Yes.
2: And that is because of the smoke. तो make sure कि जो भी वहाँ पे है वो अपना संभाल के रखिए, ध्यान रखें. एनीवे और भी बातें करेंगे आपके साथ, लेकिन वेलकम टू पावर ड्राइव एट फाइव.

0: आप सुन रहे हैं हम एंड दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर. आपको यहाँ पे मस्त से प्राइज जीतने का मौका मिल रहा है.
1: यहाँ और अभी आपको चांस मिल रहा है यहाँ पे जीतने के लिए. हरिंगटन लिविंग मैनकाउ की स्प्रिंग सेल ऑन है बाय द वे, और उनकी ओर से $1,000 का वाउचर. सो ये आपके नाम हो सकता है. हरिंगटन लिविंग मैनकाउ में जो लोकेटेड है ना रुजबे, वहाँ पे ब्यूटीफुल फर्नीचर्स होते हैं. आपको 60 months इंटरेस्ट फ्री में मिलते हैं. 60 months इंटरेस्ट फ्री. टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कोर्स अप्लाई. सो हरिंगटन लिविंग मैनकाउ में आप विजिट कर सकते हैं फॉर डिटेल्स. बट यहाँ पे $1,000 का ये जो वाउचर आपके नाम हो सकता है, आपको करना क्या है, HL यानी कि हरिंगटन लिविंग, HL स्पेस अपना नाम लिख के भेजना है 5599 पर. बस आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा और सिर्फ 5 मिनट का समय है आपके पास.
0: सो 5 मिनट में आपको यहाँ पे फटाफट मैसेज भेजना है. और कीवर्ड क्या है सैंडी, एक और बार बता देना.
1: HL
0: HL लिखकर भेजिए.
1: HL आप उसे कहना चाहेंगे तो हरिंगटन लिविंग का शॉर्ट बेसिकली एब्रीवेशन.
0: ओए अभी कुछ हेच बोलते हैं कुछ एच बोलते हैं, दोनों टाइप के लोग अपने पास हैं यहाँ पे. आप हेच बोलते हो, मैं एच बोलता हूँ.
1: तो HL स्पेस योर नेम एंड द नंबर इज, अपना नाम लिखना ना भूलेगा, एंड द नंबर इज 5599 जहाँ पे स्टैंडर्ड करियर रेट्स टू अप्लाई.
2: थोड़ा सा हॉल बना दे.
3: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manuko, Mount Wellington and Westgate. Up to 60% off on now.

0: Southwest and slow both directions through Mangere Bridge.
1: Buy a Leap Promoter this month. Pay nothing until 2027 with $2,000 off your finance. Terms apply.
2: 3, 2, 1, rush!
3: The rush is on at BP. Today only, save 20 cents per litre and get double points on fuel and shop. There's more to score at BP. Scan everyday rewards today and instantly save 20 cents per litre, max 50 litres. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewards rush.
4: Busy day. Ah, looks like I'm on dinner tonight. With Woolworths Express Pickup, I can order what I need online and pick it up in under 60 minutes. Easy. That's my kind of Woolies.
5: T's and C's apply.
6: Few things sound better than logs crackling in a fire. Rain on a tin roof. My voice. And the words, you've won a pair of Bose headphones. Be in to win one of 50 pairs when you join Southern Cross Health Insurance by 11th of October. See website for details. T's and C's apply.
7: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
8: नहीं बेटी के लिए justice चाहिए.
9: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
7: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawar, and many more.
10: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है.
7: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
10: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा.
11: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
12: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका. लोटस मेनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी इन नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश. साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट. बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो. फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November. टीज एंड सीज अप्लाई.
13: The Drive Show with Sandy and Rusbain, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura Jaiku.
14: Power Drive at 5.
15: Brought to you by Focus Kitchens, quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
16: आप सुन रहे पावर ड्राइव एट 5 ऑन 104.2 एफएम और रोवा ऐप के जरिए फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. अगर ऑस्ट्रेलिया से भी आप अगर हमें सुन रहे हैं, गुड आफ्टरनून आपको भी.
17: अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड गुड इवनिंग यहाँ पे न्यूजीलैंड में. गुड मॉर्निंग अगर आप इंडिया से सुन रहे हैं.
16: जी, हर जगह से.
17: बाय द वे, अभी आपके लिए हम सिचुएशनशिप लेके आ रहे हैं, लेकिन सिचुएशनशिप से आपको एक क्विकली बात बता दें कि कल लेबर पार्टी के जो कि ताकनिनी से खड़े हैं,
16: जो कैंडिडेट
17: है खड़क सिंह, वो हमारे साथ यहाँ पे शामिल होने वाले हैं टू हैव अ चिट चैट. तो इसके बारे में और भी हम बात करेंगे बाद में.
16: या सो आपके जो सवाल है वो आप हम तक यहाँ पे पहुँचा दीजिए 5599 पे. वी विल मेक श्योर दैट वी आस्क दोस क्वेश्चंस एज वेल. एंड बातें करने वाले हम अबाउट द पॉलिसीज, डिबेट में जो बातें हुई उसके बारे में, पॉलिसीज के बारे में, एंड क्या बेनिफिट होने वाला है बिजनेस ओनर्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, ये सारे, और इकोनॉमी के लिए जस्ट इन जनरल न्यूजीलैंड की, इफ लेबर कम्स इन पावर. सो आपके लिए ये सेगमेंट हम लेकर आ रहे हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले अबाउट द इलेक्शंस, अबाउट द डिफरेंट पार्टीज, एंड यू गेट लिटिल मोटिवेटेड टू गो आउट देयर एंड वोट. बिकॉज वोट करना हमारा राइट है, हमारी ड्यूटी भी है, हमें जाके वोट करना चाहिए. वी शुड एक्सरसाइज आवर राइट.
17: एंड 25th अक्टूबर से पहले पहले अपने आपको रजिस्टर करना है. vote.nz पे जाके आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी. नाउ लेट्स गेट टू सिचुएशनशिप. रुज़बे,
16: ऑलराइट,
17: आप जिस सिचुएशन में हैं,
18: सिचुएशनशिप
16: बताइए क्या हो रहा है सिचुएशनशिप.
17: तो आज की आपकी सिचुएशन है और आपको बताना है कि सिचुएशन में आप क्या करेंगे. आपके घर में कोई दोस्त आते हैं डिनर के लिए.
16: अच्छा,
17: ठीक है, इवनिंग में आते हैं, खाना खाते हैं, डिनर के लिए रुकते हैं. नाउ इट्स मिडनाइट एंड
16: वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं.
17: काफी चले गए बट एक दोस्त जाने का नाम नहीं ले रहा है या ले रही है.

0: एंड वो एकदम कंफर्टेबल हो चुके हैं एंड यू आर लाइक नींद आई है, यू आर लाइक सुपर स्लीपी. उस सिचुएशन में आप क्या करोगे?
1: मतलब
0: ऐसा तो yeah, so do you politely hint ki, you know, I think it's a night, we call it a night, or matlab, ya kya karoge aap? Do you think it will be rude to say ki, bhai, time ho gaya zyada na, ab jao. Kaise kisi ko bolo ki, mere ghar se jao.
1: Mujhe aisa lagta hai ki, agar koi itna ruka hai, matlab wo kafi close hai aapke. Aur agar close hai...
0: But kai baar, yeah, but kai baar aisa nahi hota hai na. Kai baar is just ki the person gets comfortable.
1: Gets comfortable.
0: Yeah. कि कईयों को बातें करने का इतना मजा आता है कि वो जाने का नाम ही नहीं लेते हैं. एंड ये भी हो सकता है ना रुजबे.
1: मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जो भी आप सिचुएशन में लेकर आते हो वो मेरी तरफ ही डायरेक्टेड होते हैं कि ये जाता है और अटक जाता है फिर निकलता नहीं है. ऐसे क्यों यार?
0: नहीं रे. तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? आपका घर है, आपके घर कोई आया है, यू नो, यू इन दैट सिचुएशन, व्हाट वुड यू डू?
1: लेकिन हमारी बीवी अनकंफर्टेबल हो जाती है. वो बोलती है चलो लेट हो रहा है यार निकलते हैं.
0: तो बताओ 0800 हम इस नंबर पे कॉल करके कि किसी को पोलाइटली घर से जाने के लिए कैसे बोलते हैं. मतलब अगर आपने कभी किया है, आपके साथ कभी हुआ है, तो आपने क्या किया उस समय पर?
1: अच्छा, कॉल करने के लिए नंबर है 0800-004-866. मिस्ड कॉल मत दीजिए यहाँ पे. मिस्ड कॉल दोगे आप तो मैं कॉल बैक करूंगा आपको. नहीं मतलब कॉल कीजिए आप, मैं नहीं कॉल करता हूँ. तो फटाफट कॉल कीजिए यहाँ पे, शेयर कीजिए यार. व्हाट डू यू डू सैंडी? व्हाट डू यू डू यार?
0: व्हाट आई डू, मैं तो एक्चुअली नहीं बोल पाऊंगी टू बी ऑनेस्ट कि या सामने यॉनिंग करना शुरू कर दूंगी और क्या है कि नींद आ रही है यार बहुत ज्यादा.
1: बरखा ने
0: कुछ ऐसे,
1: बरखा ने मैसेज किया, बरखा ने बोला है आई विल से अच्छा फिर मिलेंगे.
0: और काफी लोग ऐसे साइन करते हैं ना, कोई खड़ा हो जाएगा,
1: कोई वॉच के पास देखेगा,
0: कोई वॉच बार बार देखेगा, या ये भी होता है
1: काफी लोग वॉच के पास देखते हैं और वो दैट इज अ साइन.
0: और एक सिग्नेचर वो वाला होता है, और मेरे को लगता है वो ज्यादातर मेल्स का होता है कि ऐसा थाइस के ऊपर ऐसे अपने दोनों हाथ ऐसे मारे और खड़े होना. चलो
1: चलो.
0: ये मेरे को लगता है बहुत मेल्स ऐसे करते हैं, उनका ये साइन होता है कि तुम निकलो जा मैं निकलूं.
1: चलो चलो लेट्स गो.
0: चलो ऐसा करना. आई डोंट नो व्हाई दे डू दिस ना.
1: मेरे को लगता है कि मैंने काफी बार लोगों को देखा है ये करते हुए, तो वो बोलेंगे कि अरे शुड आई गेट यू समथिंग.
0: ये हो सकता है, इसका भी बातें कर रही हूँ ना तो रियलाइज हो रहा है कि तुम अभी जा ही रहे होंगे तो तुम ना ये टेकअवे ले लो मेरे घर से, तुम कल के लिए खाना ले लो.
1: ये भी अच्छा है.
0: ये भी कह सकते हो ना, राइट, पोलाइट हो गया ये, और साथ में ये भी बोल दिया कि जाओ.
1: एक्चुअली यार दैट्स राइट,
0: दैट्स एक्चुअली अ गुड वे,
1: दैट मेक्स सेंस. या हाय
2: हाय,
1: क्या नाम है आपका?
2: रश्मि.
0: या बताइए
1: रश्मि, बताइए.
2: जो सिचुएशन आपने दी है ऐसी एक बार हुई थी हमारे साथ. हमने अपने भाई की फैमिली को बुलाया था और मेरी सिस्टर की फैमिली भी आई थी.
0: ओके.
2: तो जैसे 11:30-12 बजे तो वो तो चले गए और उसकी वाइफ बगल में ही, मतलब भाई बगल में रहता है, तो वाइफ ने भी उसको कहा कि मैं भी जा रही हूँ, वो भी चली गई. अब भाई जो है वो थोड़ा मस्ती में था, वो नहीं है. अब मेरे को लगे कि भाई ये जाए, हमने भी सुबह जाना है सही. तो हमने 12 बज गया 1 बज गया, तो जब 1:30 बजे तो हमने उसको बोला, हमने कहा ऐसा है अब निकल लो कल मिलेंगे.
0: बोलने ही पड़ गया.
2: हाँ वो कहता हुआ था, वो एक्चुअली मूड में था, उसने थोड़ी ड्रिंक विंक की थी, अब वो अपना बातें कर रहा था, मस्ती में था, कहता है अभी मैं नहीं जाऊंगा. उसने भी साथ साथ बोल दिया इंडिया फोन मिला दिया वीडियो कॉल, और फिर मेरी सिस्टर को, बड़ी वाली सिस्टर एक और है, तो हमने उसको बोला, हमने कहा देखो इसको समझाओ, इसको बोलो कि घर जाए, ये बहुत तंग हो गया, इसके बीवी बच्चे परेशान हो रहे होंगे, इसको भेजो घर.
0: और इंडिया में तो डे टाइम रहा होगा तो टाइम ही टाइम है.
1: बीवी बच्चे भी खुश है, बीवी बच्चे बोल रहे अच्छा है थोड़ा बाहर है.
2: और मेरी सिस्टर उसको बोल रही है घर जाओ ना, क्या तुम यहाँ पे बैठे हो, जाओ ना। और उसके बाद ना फोन रख दिया, फोन रखा, उसके बाद फिर उसने हमने और मेरा हस्बैंड भी बेचारे देखते रहे कि ये कभी जाएगा तो, खैर वो भी सोने चले गए, बच्चे भी चुपचाप चले गए, हम कैसे जाए, हम तो नहीं जा सकते क्योंकि ये बैठा हुआ है। तो उसने जो मेरे साथ फिर वो वाले काम किए मस्ती की जो हम लोग बचपन में करते थे, उससे मुझे वो मुझे मारना था और हम उसको और
0: मारने पे आ गए।
2: और फिर हमने उसको धक्का दिया, हमने कहा तुम बाहर जा रहे हो,
1: धक्के मार के नहीं कहा।
0: Oh God.
2: खूब मजा आया, खूब मजा आया, लेकिन मेरा आज मन करता है कि वो मोमेंट दोबारा आए और दोबारा मेरे पास ऐसे ही आए और मेरे को ऐसे ही तंग करे, क्योंकि लिटरली मुझे ना वो बचपन चाइल्डहुड वाली सारी बातें याद है, तो मजा आ रहा था ना।
1: आप जब ये सब ये कहानी कह रहे थे ना, मेरे को ऑनेस्टली मैं ऐसे लग रहा था कि यार इट इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव कि लोग घर पे आए और अब नहीं निकल रहे। आई थिंक इट्स सच अ ग्रेट प्रॉब्लम टू हैव कि भाई मतलब लोगों को अच्छा लग रहा है,
0: कंफर्टेबल विद यू दैट उनको जाना ही नहीं है
2: एक्चुअली। और अच्छी बात तो ये थी कि हम लोग अब मैरिड है, बच्चे हम लोगों के, लेकिन हम लोग में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे, जो भी है ना हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे आज भी हम लोगों में वो चीज नहीं है, जैसे बड़े हो गए भाई बहन थोड़े दूर हो जाते हैं ना, वो चीज नहीं, हम उससे बहुत कंफर्टेबल है, मेरी अपनी प्रॉब्लम्स हम उससे शेयर करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आई रियली लव्ड इट और मेरा मन करता है फिर से आए और फिर से हम लोग ऐसे ही करें।
1: दैट्स सो कूल यार, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस ओवर,
0: थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग,
2: थैंक यू बाय,
1: थैंक यू बाय। यार ये एक्चुअली में सैंडी ये ऐसी चीज है ना, ये मेरे को लगता है कि ये हर किसी ने एक्सपीरियंस करनी चाहिए कि आपके घर पे
0: होगी ना,
1: कि आपके घर पे कोई आए और फिर वो नहीं जा रहे, फिर आप उनको यू नो धक्का मार के निकाल
0: रहे। अच्छा होगा किसी का वो अलग भी हो सकता है,
1: बुरा एक्सपीरियंस भी जानना है अगर कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस भी है तो
0: प्लीज वो भी कॉल करके बताओ यहाँ पे आप।
1: मेरे को लगता है अगर बुरा एक्सपीरियंस हो रहा है आपका, देन यू जस्ट हैव टू बी अपफ्रंट ना कि गाइस लिसन अभी लेट हो रहा है, मेरे को सोना है, कल जल्दी उठ के जाना है, तो कल टी बाय बाय। सो दैट आई थिंक दैट इज अ वेरी इजी कन्वर्सेशन ना, क्योंकि वैसे भी बुरा एक्सपीरियंस
0: है। या तो उसके लिए वहीं पे बिस्तर लगा दो कि तू भाई इधर सो ले, हम अंदर जाके सो रहे हैं।
1: हाँ उतना क्यों मेहनत करोगे अगर आप किसी जानना पहचाने तो, मतलब इतना अगर नहीं है क्लोज तो राइट। एनीवे और भी बातें करेंगे आपके साथ। आज ट्रेंड मेकर्स में क्या लेकर आ रहे हो सैंडी?
0: आज ट्रेंड मेकर्स में आंखों से बात करेंगे,
1: आंखों से बातें करने वाले हैं। चलो ठीक है, थोड़ी देर में आपके लिए ट्रेंड मेकर्स, बट फॉर नाउ स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। लेट्स गो
3: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपर।

0: Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
1: Accurate traffic.
2: Your new home awaits in Strathmill, Ottawa.
3: Partly cloudy overnight, a low of 11 on the northern, heavy traffic both directions between Northcote Road and Ottawa. Interchange on the northwestern, delays for westbound traffic just past Carrington Road. The southern's heavy southbound from Newmarket to Sylvia Park and north from Avenue Road to Green Lane. Southwestern heavy heading north from Puhinui Road to Hillsborough. If you can update us, call 0800 44 3322.
2: Strathmill. Discover your new home in beautiful Ottawa. Visit strathmill.co.nz.
4: The big sale is on now at Beds R Us with amazing deals on selected sleepyhead beds like 60% off Swiss Tech Precision Queen Size now 3499. The big sale at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
5: Discover the magic at Go Bananas Childcare, jahan aapke bachche seekhenge in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ye hamesha aapke paas hai. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. To jaldi join karo aur enjoy karo special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
6: Fall in love with your home again with an ANZ Reno loan. A home loan top-up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% equity eligibility lending rules, terms and fees apply. Available for a limited time. ANZ, we do how.
7: When your car needs a service, bringing it into Midas instead of the dealer you bought it from stops your brain going down rabbit holes like, what else are they going to find in there?
8: Lots.
7: Will they word salad me into fixing stuff that doesn't need fixing?
8: Probably.
7: Am I paying for this free coffee?
8: Definitely.
7: Will they talk me into an upgrade?
8: Oh.
7: Ditch the dealer, bring it into Midas. Same great service and mates rates prices. Midas, the peace of mind motoring.
9: Cheers, Midas!
4: Diwali aa rahi hai aur fortune la raha hai aapke liye jeetne ka mauka. Lotus Manukau, Mount Roskill ya Botany and Namaste Indian Supermarket se koi bhi two fortune ya simply products khareediye aur jeetiye $501 ka trolley dash. Saath mein har hafte 10 winners ko $101 ka in-store credit. Bas entry form bharo, receipt lagao aur entry box mein dal do. Fortune Diwali, be in to win. Ends 15th November. T's and C's apply.
10: Shop fresh deals at New World North Island this week. Get skinless chicken thigh cutlets, $11.99 per kilo. Or avocado, $2 for $2.50. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
1: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tires on 0800 00 00 10.
0: Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
11: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 6. Firefighters are working in steep, rugged terrain and battling changeable winds as they try to get on top of the Walter Beck fire in Queenstown. As of mid-afternoon, about 15% of the fire perimeter was secured, with Fens warning there's still a lot of work ahead. An American man has been sentenced to life in prison for child sex abuse thanks to help from Kiwi investigators. A team from Internal Affairs identified harmful material in 2024 and then worked closely with US officers sharing intelligence that helped bring the 21-year-old in. National insists wide-ranging changes to small business laws can be covered by existing funding as it unveils a 47-point plan. Having hammered Labor over alleged holes in its fiscal plan, Christopher Luxon and Deputy Nicola Willis both say the new policies do not require any extra money.
12: We are not in the business of having uncosted policy. So this is this is out of baselines. Very simple.
13: This policy will be committed from within existing agency baselines.
11: America is reportedly having trouble getting more details about the mysterious death of a Russian lab worker involved with dangerous diseases. A source has told CNN that the US has escalated its request for information, issuing a formal diplomatic communication. To sport, the All Blacks matchday squad for the opening Bledisloe Cup clash at Eden Park is due out tomorrow. Richie Mo'unga is highly likely to be wearing the number 10 jersey, although at training yesterday he was pictured wearing trainers rather than boots. And to motorsport with Magan Turbo's 80,000k tyre warranty, for supercars nothing beats the Bathurst 1000. Practice starts tomorrow for Sunday's great race.
1: Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
9: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस
14: सूचित किया जाता है प्रवीणा शैलेंद्र और गेटवे चार्टर्ड अकाउंटेंट के शर्वीन प्रकाश की माँ राखी राखी फीजी के स्वर्गीय श्री राम की पत्नी शांतिबाई राम की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई अंतिम संस्कार कल दोपहर 1:30 बजे एंड्स फ्यूनरल होम 11 बोलवुड प्लेस फेरी में किया जाएगा प्रवीणा शैलेंद्र और गेटवे चार्टर्ड अकाउंटेंट के शर्वीन प्रकाश की माँ राखी राखी फीजी के स्वर्गीय श्री राम की पत्नी शांतिबाई राम की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई अंतिम संस्कार थर्सडे 8 अक्टूबर को दोपहर 1:30 बजे एंड्स फ्यूनरल होम ऑन साइट क्रीमेशंस में किया जाएगा
9: शोक सूचनाएं वीक डेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी
0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
15: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
16: Let's go! 3, 2, 1.
0: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rusbe.
17: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
18: 6:03 ट्रेंड मेकर्स में स्वागत है आपका 7th अक्टूबर आज गुड इवनिंग सैंडी
19: अ वेरी गुड इवनिंग रुज़बे हाउ आर यू डूइंग
18: आई एम डूइंग गुड सैंडी हाउ आर यू डूइंग
19: गुड गुड
18: कुछ कहना है आपको कुछ भड़ास निकालनी है आपको
19: अरे नहीं नहीं
18: नहीं कुछ तो निकालो यार
19: सब सही है यार एवरीथिंग इज ऑल इज वेल
18: अच्छा यार ट्रेंड मेकर्स एक दिन ना सैंडी हम हर दिन अलग अलग थीम लेकर आते हैं अलग अलग चीजें एक दिन आप भड़ा सावर लेकर आओ
19: उसमें सब भड़ास वाले गाने होंगे क्या
18: और भड़ास वाली बातें लोग करेंगे
19: oh, मतलब अपनी कौन से गाने हो सकते हैं उसमें
18: अपनी भड़ास निकालेंगे लोग
19: तो अपना काम बनता भाड़ में चाहे चंदा
18: right.
19: ऐसे गाने लेके आएंगे उसमें
18: और फिर वो भी एक गाना है ना वो वाला I hate you like I love you
19: yeah, yeah.
18: वो वाला
19: तो सुनना चाहेंगे गाइस आपकी वोटिंग चाहिए हमें यहाँ पे या कॉल चाहिए आपकी क्या ट्रेंड मेकर्स में आप भसड़ आवर सुनना चाहेंगे
18: भसड़ मचा वो वाला है ना गाना वो भी एक है फिर वो एक है
19: भड़ास निकालने वाला आवर अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कॉल करके या मैसेज करके बताना है
18: या वन डे वी शुड डू दैट
19: वेंट आउट
18: एनीवे आज क्या सुना रहे हो आप
19: तो आज हम आंखों के ऊपर बातें करने वाले हैं आंखों के ऊपर जो गाने हैं ये हम आपको सुनाने वाले हैं
18: इससे पहले इनसे भी बात कर लेते हैं हाय
20: अरे तुमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया यार मैं तो पिछले सब्जेक्ट नहीं रुक गया था
18: कौन सा पिछले सब्जेक्ट में बोल तो बोलो यार
20: वो भड़ास वाला
18: अरे भड़ास में हो अच्छा हाँ क्या क्या क्या भड़ास निकालनी है बोलो
20: नहीं निकाल ली नहीं वो बोलते अरे रुज़बे तुमने बोला ना अभी एक दिन ऐसा करेंगे कि वो एक घंटा पूरा जितने लोग है वो करेंगे भड़ास की बात और फिर गाने भी सुनेंगे ना
19: वही तो कौन सा गाना सुनना चाहोगे तभी आप
20: वो वही लाइक आई लव यू
18: वो गाना सुनना चाहिए
20: तेरे प्यार ने कर दिया दीवाना
19: इस मूवी के बहुत सारे गाने चल पड़ेंगे उसमें
18: हाँ ओह यस एक्चुअली यू आर राइट
20: तो वो नहीं मांगता अपने को
18: भाग
19: या
18: तो
20: गाने चाहिए अपने
18: हाँ नहीं बहुत अच्छे गाने यार ऐसा थोड़ी है तो मेरे को बताओ कि क्या भड़ास क्या निकालना चाहते हो आज अगर भड़ास कोई है ऐसे क्या निकालना चाहते हो भड़ास कोई है क्या
20: देखो भाई थोड़ा सा क्या होता है मतलब तुम बोलोगे कि क्या अपना ही नहीं बोल रहे हो लेकिन यार
19: कोई बात नहीं
20: होल एज अ हिंदुस्तानी कम्युनिटी की बात अगर कहने चाहे तो यार ये जजमेंट नहीं होना चाहिए यार मुझे लगता है
18: क्या जजमेंट हो रहा है
20: यू शुड नॉट जज मतलब लोग अपने को नाम से जजमेंट करते हैं यू नो आप इस देश से हो तो आप ऐसे रहोगे आप इससे हो तो आप ऐसे रहोगे ऐसे यू कांट जजमेंट आई मीन डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर जो स्टोरी है वो थोड़ा सा मेरे को बुरा लगता है और दूसरी बात ये भी है कि बीइंग यू हिंदुस्तानी आप भी किसी को जजमेंट करो दोनों तरफ से
18: मेरे को लगता है अपन मतलब लोग सबसे ज्यादा जजी है
19: हमारी कम्युनिटी में ही सबसे ज्यादा है
20: मैं वो बात मानता हूँ मतलब गलती सब में है मैं खुद 10 गलतियां करता हूँ दिन में मैं समझता हूँ बात को लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ट्राई करो यार मतलब ऐसा नहीं कि सब हम भगवान तो नहीं है ट्राई तो कर सकते हैं यार थोड़ा सा शुरुआत करेंगे ना
18: बट क्या हुआ क्या है मतलब पहले किस्सा तो
19: कुछ
18: बोलो
19: तो
18: क्या
19: हुआ होगा ना
18: क्या
20: नहीं,
18: जज किया
20: बहुत बातें होती है देखो कि यू नो यू कैन रीड बिटवीन द लाइन समटाइम्स यू नो
18: दैट्स राइट
20: समटाइम्स इट्स इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन दैट not everyone comes and you know tells you, but you read, you know. But by grace of God, so far out of 100%, 95% I got fantastic people. Dekho, आज रुजबे और सैंडी से बात कर रहा हूँ, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ आपसे, और कितना अच्छा बॉन्डिंग है अपना, मतलब पूरे न्यूजीलैंड और फिजी, और मैंने सुना आज हिंदुस्तान से भी लोग सुन रहे हैं आपको. तो इमेजिन दिस व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड दैट वी हैव, यू नो. सो ये अच्छी बात है सब, मतलब आई ऑलवेज इंक्लाइन टूवर्ड्स पॉजिटिविटी एंड ऑप्टिमिज्म. टू मच हो गया ये, लेकिन फिर भी यार आज
18: और काफी बार ना मैं सैंडी को भी बोलता हूँ कि मैं आई एम गिल्टी टू बी एक्स्ट्रा हार्ड ऑन सम पीपल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फियर ऑफ गेटिंग स्टीरियोटाइप्ड. मतलब ओवर कॉम्पेंसेट करने भी जाते कभी कभी कभार, मतलब यू नो कि बंदा सामने वाला तो स्वीट ही रह रहा है, सामने वाला स्वीट है, अच्छा है, लेकिन हम यहाँ पे टेढ़े बन रहे हैं क्योंकि हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि ये टेढ़ा रहेगा मेरे साथ. बट एनीवे,
20: और अपने ही लोग अपने को तो करते वही बुरा है एक्चुअली.
18: हाँ, वो तो अभी क्या ही कर सकते हैं उसमें.
20: वो तो बोलते रहते हैं, मैंने बहुत बार सुना है तुमको बोलते हुए, सो आई अंडरस्टैंड दैट.
18: मैं मेरी फैमिली
19: देखो कितना बोलते हो तुम, कितना वेंट आउट करते हो तुम रुस्बे.
20: नहीं सॉरी, लेकिन लोग बोलेंगे अरे यार हम ऑफिस से घर जा रहे, क्या तुम सुना रहे हो गाना, भी ना जरा एंजॉय सुनो, मजे की बात सुनो. ये क्या,
18: मेरे को लगा ओमकर तुम बोलेगे तुमको हमारी आवाज सुननी है, तुम उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हो. चलो कोई नहीं, थैंक यू सो मच यार ओमकर, थैंक्स फॉर योर कॉल मैन, थैंक यू, अप्रिशिएट,
19: थैंक यू सो मच ओमकर.
18: एनीवे, आज आंखों के ऊपर आ जाते फिर से, आंखों के बारे में आपके लिए हम लेकर आ रहे,
19: आंखों वाले गाने आज हम आपके लिए लेके आने वाले, जो मुझे लगता है कि बॉलीवुड का वन ऑफ द फेवरेट वर्ड है गानों के लिए. बहुत गाने हैं इसके ऊपर, बहुत है,
18: तो सुनते हैं. आंखों के साथ ऐसी ट्यून, ऐसी मेलेडी काफी बढ़ जाती है ना.
19: या सब जाती है, सुनना सुनना.

0: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। वैसे देखो कम्युनिटी में बहुत सारे फेस्टिवल्स हो रहे हैं, दिवाली के तैयारियां हो गई है काफ़ी जगहों पे शुरू, नवरात्रि के सेलिब्रेशंस होने वाली है शुरू बहुत जल्द। सो या फेस्टिव माहौल है, अगर कोई आपके भी लोकल कम्युनिटी में कोई इवेंट हो रहा है तो हमें ज़रूर बताइएगा buzz@humfm.com पे ईमेल करके,
1: या वहाँ पे आप ज़रूर बता सकते हैं कुछ भी जो इवेंट्स आपके आसपास हो रहे हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में आप यहाँ पे दे सकते हैं। आने वाले दिनों में एक बहुत ही बढ़िया स्पोर्टिंग एक्टिविटी भी होने वाली है रुजबे, एक स्पोर्ट्स कल्चरल इवेंट होने वाला है एंड जो कि काफ़ी लोगों के लिए ओपन भी रहने वाला है, जहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा अगर आप कुछ स्पोर्ट्स को खेलना चाहते हैं, जिसमें कि वॉलीबॉल है, कबड्डी है, फुटबॉल है, टग ऑफ वॉर है, तो या इसके बारे में आपको और
0: तो
1: भी डिटेल्स हम देने वाले हैं।
0: ये
1: एक्चुअली में लॉन्ग वीकेंड पे रहेगा, 24th and 25th October को, तो इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन हम आपको ज़रूर देंगे
0: जी। इसके बारे में सुनते रहिएगा, इन्फॉर्मेशन आपको आती रहेगी। लेकिन यार स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ अभी काफ़ी बढ़ने वाली है, यहाँ पे क्रिकेट सीजन शुरू हो जाएगा,
1: वो भी शुरू हो जाएगा एग्जैक्टली। फुटबॉल तो ऑलरेडी खैर चल ही रहा है, सो रग्बी सीजन विल बी देयर एज वेल। बट टुडे आज ट्रेंड मेकर्स में आपके लिए हम आँखों के ऊपर गाने प्ले कर रहे हैं। आँखें जो कि इमोशंस बोलते हैं ना, कि आँखें कभी झूठ नहीं बोलती,
0: दिस इज व्हाट दे से, कभी झूठ नहीं बोलती,
1: आँखें कभी झूठ नहीं बोलती। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि आँखों के ऊपर गाने बहुत ज़्यादा हैं बॉलीवुड में, दे ट्राई टू पोर्ट्रे इमोशन
0: एंड आई थिंक इट्स द सेफेस्ट बॉडी पार्ट टू हैव अ सॉन्ग ऑन ना।
1: नाक के ऊपर गाना कैसे हो सकता है, होठों के ऊपर है या
0: होठों के ऊपर होता है,
1: कानों के ऊपर नहीं हो सकता है, नाक के ऊपर नहीं हो सकता है, बालों के ऊपर हो सकता है
0: वो भी, लेकिन बहुत ही सेंसिटिव मैटर हो जाता है बालों के ऊपर सभी के पास नहीं होते सैंडी।
1: नाउ इट इज अ सेंसिटिव टॉपिक, इट वाज नॉट सपोज्ड टू बी अ सेंसिटिव टॉपिक
0: बट या इट इज आफ्टर 30s।

0: ट्रेंड मेकर्स।
1: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
2: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
1: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
2: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
1: बस इतना ही।
2: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
0: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry, and Fortune, bring home the fortune.
3: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88600.
4: 3, 2, 1, rush! The rush is on at BP. Today only, save 20 cents per litre and get double points on fuel and shop. There's more to score at BP. Scan everyday rewards today and instantly save 20 cents per litre. Max 50 litres. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewards-rush.
5: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
6: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
7: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudema Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor Weekend, 24th and 25th October. Limited tickets available at just $89 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12 half price, under 5s free. Book now at sudemahotels.com/food festival.
8: The Cooperative Bank's home loan crew are in the house. Check it. Got that home dream, but don't know where to start? Little Kiwi Saver and lots of listings bookmarked. LIMS, LVRs, what does it all mean? Been checking out listings since 2019. Deposit, pre-approval. How much can I borrow? Let's make a plan today for your tomorrow. Talk to the Cooperative Bank's home loan crew. From first questions to front door keys, we got you. T's and C's apply.
0: The beat of Bollywood.
9: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
10: Are you ready to go home?
11: The Drive Show with Sandy and Rusbe. Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. Where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuko and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group. The home of GWM Havel and Omura J. Coo.

0: आप सुन रहे हैं हम्पलिंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स ट्रेंड मेकर्स में. आज हम आंखों के थीम के ऊपर आपको गाने सुना रहे हैं. जो भी गानों में आंखों का जिक्र हुआ है,
1: आंखों के बारे में जो बातें हुई है, तो आपका भी कोई गाना है आंखों के ऊपर.
0: तो ये इसमें नैना नहीं इन्वॉल्व है.
1: नैना नहीं है.
0: नैना इज डिफरेंट.
1: नैना नहीं है. सो
0: नैनो नैना का अलग होगा. एक
1: क्या डिफरेंस होगा नैना के बीच में और आंखों के बीच में?
0: वेल वी विल हैव टू आस्क ना
1: कि व्हाट डू यू थिंक गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आंखें एंड नैना?
0: नैना इज कलहो ना हो.
1: मेरे को लगता है कि नैना इज मोर रोमांटिक.
0: हाँ,
1: मुझे ऐसा लगता है कि आंखें
0: कैन
1: बी यूज्ड इन
0: थ्रिलर एंड सस्पेंस
1: और इट कैन बी यूज्ड इन एनी कॉन्टेक्स्ट. आंखों के बारे में, आंखों में गुस्सा, वो सब चीजें. नैनो में गुस्सा नहीं बोल सकते ना हम.
0: हाँ, चलाओ ना नैनो से बाण रे.
1: हाँ, वो बाण जरूर चलेंगे लेकिन वो नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा. नैना तेरे, वो सब चीजें. सो नैना इज मेरे को लगता है मोर ऑफ रोमांटिक वे एंड आंखों इज मोर ऑफ लाइक सिंपल ऐसे ही.
0: बहुत आंखों, देखो मैंने पूछा हमारे इसको AI संवाददाता AI को, उन्होंने कहा है आंखों और नैना ट्रांसलेट टू आईज इन हिंदी एंड उर्दू. दे कैरी डिस्टिंक्ट.
1: उर्दू नैना इज उर्दू.
0: नहीं, नैना उर्दू थोड़ी है. ऐसा कुछ नहीं है. डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत अक्षी. और ये नैना आल्सो इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत नयन.
1: नयन भी है ना.
0: नयन, नयन. हाँ, तो एवरीडे कॉन्वर्सेशनल हिंदी और उर्दू में आंखों यूज होता है एंड पोएटिक लिटरेरी एंड फोक डायलेक्ट में नैना यूज होता है.
1: तो वही रोमांटिक भी थोड़ा हो गया ना.
0: दैट्स राइट. एक्चुअली इमोशनल, इंटीमेट, रोमांटिक, उसके लिए नैना यूज होता है. और न्यूट्रल, प्रैक्टिस एंड फंक्शनल के लिए आंखें यूज होता है.
1: जैसे हम ये नहीं करेंगे ना कि तुम्हारे नैना

0: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. Trendmakers, आप सुन रहे हैं जहाँ पे आपके लिए हम हर दिन एक कुछ अलग शो लेकर आते हैं, अलग थीम लेकर आते हैं. मेरा फेवरेट है यार ये आवो, छः से सात वाला आवो.
1: एक थीम यहाँ पे हम लेके चलते हैं और आज आँखों के ऊपर एक्चुअली में हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं. वेल, आँखों के ऊपर बातें तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ साथ में और क्या क्या हो रहा है आसपास इसके ऊपर भी बातें कर रहे हैं. तुम्हें पता है ऑकलैंड में जो बिन कलेक्टर्स है, बिन कलेक्टर डम्प जो है, बिन कलेक्टर्स जो है, ऑलमोस्ट 2 dozen रबिश ट्रक ड्राइवर्स इन ईस्ट एंड साउथ ऑकलैंड हैव बिन डम्प्ड विद सम ऑफर द ऑप्शन टू बाय देयर ओन ट्रक्स एंड बिकम कॉन्ट्रैक्टर्स इंस्टेड.
0: क्या बात कर रहे हो?
1: या
0: तो उनको बोला जॉब गई तुम्हारी.
1: रीस्ट्रक्चर है वेस्ट मैनेजमेंट में. द प्राइवेट कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड बाय ऑकलैंड काउंसिल, ये कर्ब साइड रबिश जो कलेक्शन होती है ईस्ट एंड साउथ ऑकलैंड में. सो इट वुड मेक 23 ड्राइवर्स रिडंडेंट इन फेवर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स. या 23 ड्राइवर्स रिडंडेंट हो रहे हैं इसमें. वर्कर्स फर्स्ट यूनियन ने बोला है कि जो रीस्ट्रक्चर है ना, ये एक स्कैम है. कि इट वॉन्ट्स की कॉस्ट ऑफ बाइंग द ट्रक कुड पुट वर्कर्स इन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स ऑफ डेट. ट्रक लेना यार बहुत महंगा है, मजाक की बात नहीं है ये.
0: वही तो, एग्जैक्टली.
1: एंड उसको मेंटेन, रिपेयर करना, अपग्रेड करना.
0: एंड फॉर समवन हु इज इन अ डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ, जहाँ पे उनके ऑलरेडी बहुत सारे लाइबिलिटीज है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जहाँ पे दे आर लुकिंग फॉर समथिंग मोर सिक्योर, वहाँ पे आप उनको कॉन्ट्रैक्टर बना रहे हो और बोल रहे हो कि खुद का इन्वेस्टमेंट करो, ट्रक बनाओ. नहीं है हर कोई बिजनेस के लिए सेट.
1: नहीं है.
0: नॉट एवरीवन कैन डू अ बिजनेस.
1: एंड व्हाट हैपन इफ द ड्राइवर इज सिक?
0: हाँ, एग्जैक्टली.
1: मतलब ऐसी चीज़ें भी उसमें आ जाती है. बिग कंपनी माइट हैव स्पेयर ट्रक्स या वर्कशॉप, ये सारी चीज़ें. बट देन वेस्ट मैनेजमेंट ने बोला है कि ये अब आगे जाके हो सकता है, होने वाला है एक्चुअली में. सो 23 ड्राइवर्स, इनकी जॉब जाने वाली है.
0: या वेल, इकोनॉमी स्टिल स्ट्रगलिंग एंड अभी इलेक्शंस आ रहे हैं.
1: और उसे याद है कि कल इलेक्शंस में हमारे साथ यहाँ पे लेबर पार्टी के ताका नेने के कैंडिडेट खड़क सिंह शामिल हो जाएंगे.
0: जी, खड़क सिंह से हम बातें करने वाले हैं कल. तो आप हमारा साथ जरूर देना 5 से 6 के बीच. वी गोना हैव अ चैट विद हिम एंड इलेक्शन स्पेशल आपके लिए हम कल लेकर आते हैं. एओटीआर, सॉरी, आउटरोवा स्पीक्स,
1: ये हम आपके लिए लेके आते हैं. ऐसे में आपका कोई सवाल है उनके लिए तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं ड्राइव कीवर्ड के साथ.
0: With that, it's time for us to say bye-bye. Thank you so much aapke saath ke liye, aapke pyar ke liye. Aap se mulaqat hogi kal. Have a lovely day.
1: Bye.

0: मुलाकात हो गई आपसे।
1: हम ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
2: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very
3: acceleration. That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है, सब चलता है। आधी नींद में हूँ मैं।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Happy Hour on Hum.
1: March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
2: Ruzbe, tickets book ho gaye.
3: To phir der kis baat ki? Bali bula raha.
2: Sunset, beach club aur thoda sa sukoon bhi.
3: Lekin kahani yahi khatam nahi hoti.
4: Fatiha.
3: Bangkok mein hoga hamara asli tashan.
2: Tuk tuk street food aur raaton ki rangeen duniya bhi.
5: Ek baar to jaana hi chahiye Thailand.
6: Hello everybody.
1: Do shehar, ek safar aur yaadein jo rahengi hamesha.
7: Thoda ghume aao, acha lagega aapko, man behal jayega aapka bhi.
1: Text drive on 5599 for the all inclusive tour price. Kyunki ye kahani ab aapke saath likhi jayegi. Bali and Bangkok getaway with Sandy and Ruzbe only on Hum.
8: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
9: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
8: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
10: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
11: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Get there in Apex world-class comfort with Fiji Airways, where the luxuries start from the moment you book. Get fast-track security, extra baggage and priority check-in. Once you're there, enjoy even more time to relax with resort check-in. Complete your flight check-in from various Fiji resorts with your luggage transported securely to the airport. Travel in style with one of the world's top 10 airlines. Visit fijiairways.com.
12: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मैनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November. T's and C's apply.

0: चाहे आप हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Swimming pool heat pumps under $2,000. Outdoor four-piece resin lounge set just $299. Outdoor gazebos just $99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
2: मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ। जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप ओवरवेल्ड हैं या इमोशंस मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं। कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342। अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
3: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right. Get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off, experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry! Limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
4: What could I be? A teacher? A scientist? A builder? But first I need a chance. A chance to feel safe. To learn. To believe in myself. That's why Barnardos is asking you to invest in children. Because when you invest in a child today, you can help them build a future full of possibilities. Invest in children at investinchildren.nz. Because the returns last a lifetime.
5: Time check.
6: Brought to you by Maan Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tyres on 0800-00010.
5: To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
7: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Ryan. Firefighters were working until dusk on this vegetation fire in the high country above Lake Wakatipu. The fire is estimated to have burnt 1,400 hectares of mainly tussock and scrub. It is not yet controlled or contained. Nationals pledging to shake up a host of laws for small businesses. It's unveiled a 47-point plan relating to matters like hiring and licensing. And Labour wants to bring in some big changes to banking. Its pledges include ensuring smaller operators can access essential infrastructure and creating a clearer pathway for existing providers to become serious competitors. In sport, the All Blacks matchday squad of 23 for the opening Bledisloe Cup clash at Eden Park due out tomorrow. With Ruben Love out, Richie Mwanga highly likely to be wearing the number 10 jersey. And in motorsport, with Magan Turbo's 80,000k tyre warranty, in supercars, nothing beats the magic and aura of the Bathurst 1000 weekend. Defending champions Kiwi driver Matt Payne and co-driver Will Davison are favourites to win again in Sunday's great race on Mount Panorama.
8: Sports News.
5: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
9: World's best, hamari good brands nahi hai.
5: Hum. Night Cafe on Hum. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
10: It is Wednesday night. Welcome everyone. Good evening. जितने भी हमारे प्यारे listeners हैं, स्वागत है आपका 7th October Wednesday night को Night Cafe लेकर मैं आ गया हूँ. और आज जबकि Night Cafe आपके लिए होता है Wednesday को, तो कुछ खास होता है जबकि हम आपको connect करते हैं, जोड़ते हैं आपके favourite stars और movie world से, Bollywood की दुनिया से, ताज़ा तरीन खबरें glitz and glamour world से लेकर आते हैं आपके लिए. आपके favourite stars क्या कर रहे हैं, आने वाले फिल्में क्या है, क्या कुछ हो रहा है बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों को लेकर, और आने वाले वाले स्टार्स की जो कुछ इंटरेस्टिंग खबरें हैं वो भी लेकर आए हैं। मैं आते रहता हूं मैं आपके लिए। तो मिडवीक मसाला में आपका स्वागत करने जा रहे हैं, लेकिन नाइट कैफे में 8 टू मिडनाइट तक मैं क्रिश आपके साथ दूंगा। वेलकम एवरीवन।
5: थोड़ा हटके थोड़ा स्पाइसी, ये है मिडवीक मसाला।
10: गुड इवनिंग एंड वेलकम। नाइट कैफे में मिडवीक मसाला हम लेकर आ जाते हैं आपके लिए, जिसमें बॉलीवुड की ताज़ा तरीन खबरें, मसालेदार गॉसिप और बॉलीवुड गपशप तो होते हैं। और आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग खबरें लाया हूँ। अर्जुन दास रिवील कर रहा है कि ही वॉज इन टॉक्स फॉर डोन 3। आयशा कपूर रिटर्न्स टू बॉलीवुड आफ्टर 17 ईयर्स। फतिमा साना शेख ऑन एक्टर्स टेकिंग जॉब्स दे डोंट वॉन्ट। और अक्षय खन्ना का सडन एग्जिट फ्रॉम दृश्यम 3। और विनोद कापरीज की जो थिएट्रिकल रिलीज, उस पर बातें करेंगे। राहुल भट्ट रिग्रेट्स हिज फाइट विद रणवीर शौर्य। दीपिका पादुकोण एंड स्पिरिट, व्हाई शी वॉक्ड अवे, इस पर जानकारी मैं आपको दूंगा। समय रहा तो और भी खबरें हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे, बट फर्स्ट कुछ गाने आपको सुनाता हूँ।

0: मिडवीक मसाला।
1: नाइट कैफे जारी है और इसमें मिडवीक मसाला आपके लिए मैं लेकर आता हूं, जिसमें बॉलीवुड की ताज़ा तरीन खबरें आपके लिए। अर्जुन दास रिवील्स कि उनकी उनको डॉन 3 के लिए इनफैक्ट सोचा गया था। साउथ इंडियन एक्टर अर्जुन दास ने रिवील किया है कि ही वॉज कंसिडर्ड फॉर डॉन 3। प्रोजेक्ट हैज़ अंडरगॉन मेजर चेंजेस इन्वॉल्विंग रणवीर सिंह और फरहान अख्तर। और दास ने इज़ नोन फॉर हिज डिस्टिंक्टिव डीप वॉइस और इनका तमिल सिनेमा में बहुत ही बड़ा नाम है और काम बहुत ही अच्छा इन्होंने कर दिखाया है। तो इन्होंने रिवील नहीं किया एग्जैक्टली विच रोल ही वॉज बीइंग कंसिडर्ड फॉर, लेकिन कहा गया है कि इनको कंसिडर किया जा रहा है डॉन 3 के लिए। और इस रेवलेशन से कुछ इंटरेस्टिंग ग्लिम्स हुए हैं इनटू द कास्टिंग प्रोसेस बिहाइंड द फिल्म। इसके अलावा आयशा कपूर रिटर्न्स टू बॉलीवुड आफ्टर 17 ईयर्स, इस पर जानकारी बहुत ही जल्दी आपके लिए।

0: Night Cafe. Wednesday ka tadka. Midweek masala on Hum.
1: नाइट कैफे मिडवीक मसाला आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। आयशा कपूर काफ़ी फेमस हुई थी एज यंग मिशेल इन संजय लीला भंसाली'स ब्लैक और हर किसी ने इनके किरदार को पसंद किया था। शी वॉज एक्सट्रीमली टैलेंटेड इन हर रोल इन दैट मूवी और शी वॉज ओनली 10 years old जब ये अमिताभ बच्चन के साथ इन्होंने काम किया, लेकिन आफ्टर दैट ब्रेक थ्रू शी अपीयर्ड इन जस्ट वन मोर फिल्म। अभी ये रिटर्न हो रही है टू द बिग स्क्रीन विद ओम काहारी। कपूर का कहना है कि द अटेंशन सराउंडिंग ब्लैक ने इन्फ्लुएंस किया सम ऑफ करियर डिसीजंस और इनको बहुत ही जल्दी इस रोल में हम देखेंगे 17 साल बाद, यानी नाउ शी इज क्वाइट एन अडल्ट, तो अभी इनको एक लीड रोल में शायद देखने का कुछ अलग ही मज़ा होगा जो लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। फ़तिमा शाना शेख ने एक्टर्स के बारे में बातें किया है कि वो जॉब्स वो लेना चाहते वो करते हैं जो वो करना नहीं चाहते हैं और इस पर इनका क्या टिप्पणी रहा है। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम।
2: Yeah!

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स मिडवीक मसाला

0: मंडे का तड़का मिडवीक मसाला ऑन हम।
1: आप सुन रहे हैं आपके नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। फातिमा शाना शेख ऑन एक्टर्स टेकिंग जॉब्स दे डोंट वांट। इन्होंने कहा एक, इन्होंने इनफैक्ट कैंडिडली बातें किया है अबाउट दी फाइनेंशियल रियलिटीज ऑफ एक्टिंग। इन्होंने कहा कि एक्टर्स समटाइम्स एक्सेप्ट रोल्स जो वो पसंद नहीं करते हैं लेकिन उनको करना पड़ता है बिकॉज पैसों की ज़रूरत होती है। दे बिकम मनी ड्रिवन क्योंकि खर्चा चलाने के लिए और इनकम अर्न करने के लिए उनको ये डिसीजन लेना पड़ता है। इन्होंने आर्ग्यू किया कि बॉलीवुड स्टिल ऑफर्स टू फ्यू लेयर्ड रोल्स फॉर वुमेन और इनका खुद का करियर में बहुत कम डिफरेंट रोल्स मिले हैं फ्रॉम गीता फोगट टू इंदिरा गांधी। इन्होंने कहा कि शी इज़ करंटली अपियरिंग इन द सीरीज हुंकार जो काफ़ी आई थिंक मशहूर हो रही है और लोगों की अटेंशन अपनी तरफ खींच रही है। तो सुनते रहो, मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ। कुछ देर में अक्षय खन्ना सडन एग्जिट फ्रॉम दृश्यम 3 पर बातें करेंगे।

0: Cafe on Hum.
1: Hey ChatGPT, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
2: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
1: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
2: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
1: बस इतना ही।
2: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
3: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 एफएम और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
4: From climate change to a lack of loose change, from small changes to changes in global power, change is constant, and so is the news on this station. Your source for everything changing, in association with RNZ News. Change is in the air.
5: Reliance Ventilation System.
6: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
5: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
6: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
5: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
7: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
8: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
9: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
10: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 0927-99439 और विजिट legalassociates.co.nz.
11: At Woolworths, these back-to-school specials are a great way to save. Get half price on the Sistema range. And Dairyworks cheese slices 500 gram are just $8 each. TCs and exclusions apply. Only at Woolworths.
12: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights. Do lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply.

0: financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
1: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
2: Busy subah ho ya shaam ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke nazdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
3: Of Bollywood.
4: World's best. Hamari good brands nahi hai.
3: Hum. Night Cafe on Hum. Thoda hotke, thoda spicy. Ye hai midweek masala.
5: नाइट कैफे मिडवीक मसाला जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने रिकॉल किया है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे आफ्टर अक्षय खन्ना लेफ्ट दृश्यम 3 और खन्ना reportedly exited only 7 days before shooting शुरू होना था। एक schedule का shooting वो begin होना था, लेकिन 7 days पहले अक्षय खन्ना ने कहा कि ये फिल्म में काम नहीं करेंगे। और production was suddenly forced into a race against time। और जयदीप अहलावत eventually joined the cast in his place। और अक्षय खन्ना की जगह अब जयदीप अहलावत को आप देखेंगे, जो अभी सिनेमाज में आई थिंक दृश्यम 3 शुरू हो चुकी है और रिस्पांस भी बहुत ही हिस्टोरिक और एक्सेलेंट आ रहा है। पाठक ने डिस्क्राइब किया द सिचुएशन एज एन एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल मोमेंट फॉर द टीम। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। कुछ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अगर समय रहता है तो आपके लिए हम शेयर करेंगे, लेकिन कुछ और गाने फिलहाल आपको सुनाते हैं।

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. प्यारे गाने आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, जो एक एक करके मैं आपको सुनाऊंगा. लेकिन बॉलीवुड खबरें भी है जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा. दीपिका पादुकोण एंड स्पिरिट वाशी वॉकड अवे, ये स्टोरी पब्लिश किया गया है अबाउट दीपिका पादुकोण एग्जिट फ्रॉम संदीप रेड्डीज रेड्डी वंगज स्पिरिट. और एक्सोस की माने तो दीपिका ने वंगा से मुलाकात किया था ओनली वंस एंड नेवर रिसीव्ड ए कंप्लीट नरेशन. और प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिबेट में आ चुकी थी अबाउट वर्किंग आवर्स एंड रेम्यूनरेशन. तो दीपिका ने रिपोर्टेडली एक 8 आवर वर्किंग डे की मांग की थी आफ्टर बिकमिंग अ मदर. और इसका डिपार्चर बिकेम वन ऑफ द बॉलीवुड्स बिगेस्ट कास्टिंग कॉन्ट्रोवर्सीज जो अभी सुर्खियों में है. आज के लिए बॉलीवुड खबरों में बस इतना ही. अगले घंटे पर मिलते हैं विद 30 मिनट्स ऑफ नॉनस्टॉप म्यूजिक.

0: Krishka moment. Krishka magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hu. Election special jari hai, to aise mein unfiltered drive sunna na bhule. Podcast mein alag alag mundo par baatein hoti hai aur jabki election special jari hai, to aise mein Sunny Kaushal se baatein hongi, Sandy aur Rizbain se baatein karenge, jisme discussion hoga about the pressures facing Kiwi businesses from rising crime, repeat offenders to immigration, workforce shortages or cost of doing business. Aur ye share karenge what he believes the next government should prioritize, chahe whether politicians are truly listening to small businesses, aur kya wo ek sawal hai jo every business owner ko कैंडिडेट से पूछने चाहिए बिफोर कास्टिंग देयर वोट. याद रहे शनी कौशल से बातें होंगी. ये चेयरमैन है एंड सीईओ है इंडिया न्यूजीलैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, चेयरमैन है एथनिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलायंस मिनिस्ट्री ऑफ एथनिक कम्युनिटीज, चेयरमैन है डेयरी एंड बिजनेस ओनर्स ग्रुप और साथ में फॉर्मर चेयरमैन है मिनिस्टेरियल एडवाइजरी ग्रुप गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड फ्रॉम 2024 to 2026. ड्राइव टेक्स करें 5599 पर, फुल एपिसोड आपको मिल जाएगा. मैं कृष आपका साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Night Cafe on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। अगर आज आपका जन्मदिन है, अ वेरी हैप्पी बर्थडे एवरीवन जिनका आज जन्मदिन है एंड दोज़ हु आर सेलिब्रेटिंग। आई एम श्योर आज बहुत कुछ घर पर किया गया है या फिर वीकेंड के लिए भी आपने प्लानिंग बनाकर रखा है, तो फिर टीम हम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू विश एवरीवन अ हैप्पी बर्थडे जो ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं। अगर आप आउटसाइड ऑफ न्यूजीलैंड हो या फिर आउटसाइड ऑफ ओकलैंड हो, आप हमें रोवर के जरिए सुन रहे हैं, तो बिग शाउट आउट टू ऑल आवर रोवर लिसनर्स, क्योंकि आपको हम हमेशा याद करते हैं। आप हमसे दूर होकर भी हमें अपने बहुत ही करीब रखते हैं थ्रू रोवर। तो आपके लिए अगला गाना सुनते रहो हम, मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ।

0: You are listening to number one. हम playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और प्यारे गानों के साथ साथ interesting खबरें. वैसे रोवा पर भी आप हम music stations का मजा ले पाएंगे. हम rewind में आपको मिलेगा Bollywood's golden era, 60s और 70s के hits. 80s jukebox में आपको मिलेंगे 80s era of Bollywood songs और Fiji Bhajans में आप world's first 24/7 free Fiji Bhajan streaming platform को enjoy कर पाएंगे, जिसमें Bhajans from Fiji's best artist anytime, anywhere आपको मिलेगा. चढ़ती कला पंजाबी हिट्स, बैक टू बैक पंजाबी हिट्स ओनली ऑन रोवा. फिजी कीर्तन संग्रह, बिगर चॉइस ऑफ कीर्तन आर्टिस्ट अब हम फिजी कीर्तन संग्रह में आपको मिलेगा. ये भी हमारा एक हम म्यूजिक स्टेशन है ऑन रोवा. यहाँ पर न्यू पूल ऑफ कीर्तन को एड कर दिया गया है जो आप इन्जॉय कर पाएंगे. राहत फतेह अली खान के गाने, लव ऑफ सूफी और कवालीज अगर है आपका तो फिर आप चेकआउट करें म्यूजिक स्टेशन ऑफ राहत फतेह अली खान. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी प्यारे गाने आपके लिए.
1: 80s के रेट्रो गाने

0: Krishka moment. Krishka magic. Only on Hum.
1: आप सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून में आप अपना शेयर ऑफ 5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस जीत सकते हैं दिस दिवाली विद हम. तो ड्रॉ 30 अक्टूबर को होगा. ड्रॉ डेट के और भी नज़दीक हम जाने लगे हैं और आपको बस इसमें पार्टिसिपेट करना है. कीवर्ड टेक्स्ट करें NZPMI. NZPMI अपने नाम के साथ 5599 पर और आप ड्रो में शामिल होकर जीत सकते हैं $1,000 वर्थ ऑफ माइटा 10 वाउचर्स. एक ही विनर होगा जिसको मिलेगा $1,000 वर्थ ऑफ माइटा 10 वाउचर्स. अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स फॉर ए फ्री साइट असेसमेंट. विजिट करें NZPMI.co.nz या फिर कॉल करें 0800-4NZPMI. तो कुछ टाइम के लिए मैं आपको मौका दे रहा हूँ. टेक्स्ट करें NZPMI अपने नाम के साथ 5599 पर $1,000 वर्थ ऑफ माइटा 10 वाउचर्स जीतने का मौका है आपके पास.

0: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
1: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
0: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
1: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
0: बस इतना ही।
1: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु गंडोला, a household name in finance and insurance industry, and fortune, bring home the fortune.
3: रुजबेल, 2026 में ना बहुत काम कर लिया है, अब तो ब्रेक बनता है।
4: बिल्कुल, तो लेते हैं एक लग्जरियस हॉलिडे ब्रेक, बाली और बैंकॉक।
3: और आप भी चलिए सन टूर्स के साथ ईस्टर 2027 में।
4: बाली 6 दिन और बैंकॉक 5 दिन, कंप्लीट लग्जरियस हॉलिडे पैकेज। बुक कीजिए टिल दिवाली और पाइए फ्री 2 nights 3 days सिडनी टू सिडनी क्रूज पैकेज।
3: 2027 ईस्टर को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल, बाली बैंकॉक और फ्री क्रूज।
4: बुक नाउ विद सन टूर्स।
3: कॉल करें 0800 478686।
5: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
6: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advice provider.
7: The beat of Bollywood.
8: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
7: Night Cafe.
9: You're listening to number one. हम playing Bollywood's biggest hits. Krish के साथ है और ऐसे ही हमारा साथ रहेगा all the way till midnight. याद रहे जो मैंने आपसे कहा था, $1,000 worth of Might Attain vouchers जीतने के लिए एक ही विनर को मिलेगा ये. तो फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून के दौरान आप हमारे पास भेजे अपना नाम, पहले तो लिखे NZPMI अपने नाम के साथ और 5599 पर भेजे. जितने भी लोग टेक्स्ट करेंगे आपके नामों को ड्रो में शामिल कर दिया जाएगा. $1,000 worth of Might Attain vouchers जीतने का मौका है. अनलॉक के प्रॉपर्टी true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, aap visit kare nzpmi.co.nz ya call kare 0800 4 NZPMI. Main Krish aapka saath de raha hoon.

0: Coffee on Hum. Aapka Moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: Welcome back, everyone. You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश बिल्कुल तैयार हूँ आपका साथ देने के लिए. अभी से लेकर 12 तक हमारा साथ रहेगा. और जैसे मैंने कहा आपसे, every hour top of the hour पर news and sports update होता है. तुरंत उसके बाद 30 minutes of non-stop music हम लेकर आते हैं, जो कि बहुत ही highlight होता है हमारे इस program का, क्योंकि हर कोई 30 minutes के लिए, आधे घंटे के लिए सुनते हैं अपने फेवरेट नगमे, और वो भी बगैर कोई डिस्टर्बेंस, बगैर कोई इंटरफेरेंस के. तो सिर्फ गाने और हम और आप साथ निभाते हैं. तो ये दौर भी शुरू करते हैं आपके लिए 30 मिनट्स के लिए. आप एंजॉय करो योर फेवरेट सॉन्ग्स, जो कि नॉन स्टॉप आपके लिए बजेगा. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. एंजॉय एवरीवन.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hu. Election special jari hai, to aise mein unfiltered drive sunna na bhule. Podcast mein alag alag mundo par baatein hoti hai aur jabki election special jari hai, to aise mein Sunny Kaushal se baatein hongi. Sandy aur Rizbain se baatein karenge, jisme discussion hoga about the pressures facing Kiwi businesses from rising crime, repeat offenders to immigration, workforce shortages or cost of doing business. Aur ye share karenge what he believes the next government should prioritize, chahe whether politicians are truly listening to small businesses or kya wo ek sawal hai jo every business owner ko कैंडिडेट से पूछने चाहिए बिफोर कास्टिंग देयर वोट. याद रहे शनि कौशल से बातें होंगी. ये चेयरमैन है एंड सीईओ है इंडिया न्यूजीलैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. चेयरमैन है एथनिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलायंस मिनिस्ट्री ऑफ एथनिक कम्युनिटीज. चेयरमैन है डेयरी एंड बिजनेस ओनर्स ग्रुप और साथ में फॉर्मर चेयरमैन है मिनिस्टेरियल एडवाइजरी ग्रुप गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड फ्रॉम 2024 to 2026. ड्राइव टेक्स करें 5599 पर फुल एपिसोड आपको मिल जाएगा. मैं कृष आपका साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: Play. Zabardast hits. Shuru ho jaye to rukte nahi. Playing Bollywood's biggest hits. Hum. Night Cafe on Hum. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: You are listening to number one, Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और प्यारे गानों के साथ साथ इंटरेस्टिंग खबरें. वैसे रोवा पर भी आप हम म्यूजिक स्टेशंस का मजा ले पाएंगे. हम रिवाइंड में आपको मिलेगा बॉलीवुड्स गोल्डन ईरा 60s और 70s के हिट्स. 80s जुक बॉक्स में आपको मिलेंगे 80s ईरा ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स. और फीजी भजन में आप वर्ल्ड्स फर्स्ट 24/7 फ्री फीजी भजन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को एंजॉय कर पाएंगे, जिसमें भजन फ्रॉम फीजीज बेस्ट आर्टिस्ट एनी टाइम एनी वे आपको मिलेगा. चढ़ती कला पंजाबी हिट्स, बैक टू बैक पंजाबी हिट्स ओनली ऑन रोवा. फिजी कीर्तन संग्रह, बिगर चॉइस ऑफ कीर्तन आर्टिस्ट अब हम फिजी कीर्तन संग्रह में आपको मिलेगा. ये भी हमारा एक हम म्यूजिक स्टेशन है ऑन रोवा. यहाँ पर न्यू पूल ऑफ कीर्तन को एड कर दिया गया है जो आप इंजॉय कर पाएंगे. राहत फतेह अली खान के गाने, लव ऑफ सूफी और कवालीज अगर है आपका तो फिर आप चेकआउट करें म्यूजिक स्टेशन ऑफ राहत फतेह अली खान. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी प्यारे गाने आपके लिए.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: नाइट कैफे अपने समाप्ति पर आप पहुंचा दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा। कल मिलते हैं आपके लिए रिदम एंड रोमांस लेकर आएंगे, रोमांटिक गानों का सिलसिला हमारे साथ होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखें, क्रिश का बहुत सारा प्यार, नमस्ते।
3: हर दिन की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

0: सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: माय टिटन मेगा हेंडरसन अब वीकडेज पे सुबह 6 बजे से खुला है। बिल्डिंग सप्लाईज, टिम्बर, पावर टूल्स और ट्रेड एसेंशियल्स सब कुछ साइट पे जाने से पहले ही उठा लो। गेट इन, गेट सॉर्टेड एंड गेट द जॉब डन अर्लियर। ओपन फ्रॉम 6 AM। माय टिटन मेगा हेंडरसन।
3: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए। वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस। बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
4: The big sale is on now at Bazaar Us with amazing deals on selected sleepyhead beds like 60% off Swiss Tech Precision Queen Size now 3499. The big sale at Bazaar Us Manikau and Pukekohe, where dreams begin.
5: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
6: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं।

0: driving you home. Drive show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ
2: ये गलत बोल दिया यार
1: और पहनता भी नहीं है उसको
2: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी वो
2: अभी ब्रांड हो गया ना
1: रुस्बे के बाल लगे उस
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2.
4: Wo Indelible Homes wali kahani sunao na.
5: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
6: And award goes to Indelible Homes.
5: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite Master Builder.
7: Kahani of Indelible Homes.
1: रुस्बे 2026 में ना बहुत काम कर लिया है अब तो ब्रेक बनता है
0: बिल्कुल तो लेते हैं एक लग्जरियस हॉलिडे ब्रेक बाली और बैंकॉक
1: और आप भी चलिए सन टूर्स के साथ ईस्टर 2027 में
0: बाली 6 दिन और बैंकॉक 5 दिन कंप्लीट लग्जरियस हॉलिडे पैकेज बुक कीजिए टिल दिवाली और पाइए फ्री 2 nights 3 days सिडनी टू सिडनी क्रूज पैकेज
1: 2027 ईस्टर को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल बाली बैंकॉक और फ्री क्रूज
0: बुक नाउ विद सन टूर्स
1: कॉल करें 0800 478686 Six.
8: The beat of Bollywood.
9: World's best. Hamari good brands nahi hai.
8: Wow. Night flying.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: सिर्फ रोवा पर।
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: रुजबेर 2026 में ना बहुत काम कर लिए है, अब तो ब्रेक बनता है।
2: बिल्कुल, तो लेते हैं एक लग्जरियस हॉलिडे ब्रेक बाली और बैंकॉक,
1: और आप भी चलिए सन टूर्स के साथ ईस्टर 2027 में।
2: बाली 6 दिन और बैंकॉक 5 दिन, कंप्लीट लग्जरियस हॉलिडे पैकेज। बुक कीजिए टिल दिवाली और पाइए फ्री 2 nights 3 days सिडनी टू सिडनी क्रूज पैकेज।
1: 2027 ईस्टर को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल, बाली बैंकॉक और फ्री क्रूज।
2: बुक नाउ विद सन टूर्स।
1: कॉल करें 0800 478688।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
3: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
4: दिवाली आई खुशियां लाई PFSL स्पेशल ऑफर लेकर आया है अपने ड्रीम होम का सपना सजाएं PFSL के साथ होम लोन करवाएं $400,000 या उससे ज्यादा का एलिजिबल लोन सेटल करें और $250 का गिफ्ट कार्ड घर ले जाएं 50 इंच टीवी के लकी ड्रॉ में भी एंट्री पाएं तो इस दिवाली खुशियां बढ़ाएं PFSL के साथ अपना ड्रीम होम सजाएं सर्च PFSL और कॉल ऑनलाइन 8469934 टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लेंडिंग क्राइटेरिया अप्लाई.

0: ई भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: The beat of Bollywood.
2: World's best, हमारी good dance team.

चाहनी, तू टनाटन मैं धनाधन, मैं दिल में तुझे बसाऊंगा और अपना तुझे बनाऊंगा, लंदन तुझे घुमाऊंगा, वहां पानी पूरी खिलाऊंगा, हनीमून करके आऊंगा, फिर शादी यहाँ बनाऊंगा। मैं रोमियो तू जूलियट, ना समझ तू मुझको इडियट, अरे हाथ छुड़ा कर चली किधर, वो यार मेहरबानी।

0: देख चिल्ली,
1: चुप हो जा भूरी बिल्ली।
0: मैं आफत की पुड़िया,
1: तू भोली भाली गुड़िया।
0: मवाली,
1: मैं हीरो,
0: तू पागल,
1: तू जीरो,
0: आवारा,
1: तुम्हारा, समझ गए इशारा।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम 93.7।

0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast. Play

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: weekdays, 6 to 10
1: a.m. Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि drying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
4: The first time Glenn saved lives was a Thursday. He was wearing odd socks. He crossed his feet. No one seemed to notice. The second time wasn't quite as dramatic. He closed his eyes to see how many dog breeds he could name. 22. Not bad, Glenn. Not too bad. Sit back and save lives at your local NZ Blood Donor Centre or mobile drive. Visit nzblood.co.nz to book your blood or plasma donation appointment.
5: Glad I got my enrolment sorted the other day.
6: See, mate, I told you it was easy.
7: Enrolment for voting? I still haven't done mine. The election isn't until November. I've got time, right?
6: No, not this year. You need to be enrolled by the 25th of October. You can't enroll and vote on the same day.
7: Really? What if I miss it?
6: Well, your vote won't count for this year's election.
7: Achcha, you've convinced me. I'll enroll tonight.
8: Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
9: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
10: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
9: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो.
11: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
0: Time check.
12: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tires on 0800-00-00-10.
0: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
13: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. An operation into child sexual exploitation involving New Zealand investigators has seen a man in the US jailed for 50 years. Internal Affairs alerted Homeland Security about the 21-year-old after flagging abuse material online. Spokesperson Tim Houston says two children were also rescued.
14: Behind every image or video is a real child experiencing sexual exploitation and abuse.
13: An exclusion zone remains around a raging fire at Walter Peak near Queenstown. Two dozen firefighters will again battle the blaze today, along with five aircraft. It has now burnt through 1,400 hectares. Mayor John Glover says people will be on edge.
15: Over the years, I've seen fires that have gone out of control, and they're very spectacular, but never something on this scale.
13: The multi-million dollar compensation conversation has begun for David Tamahiri, who will not be retried for the murder of two Swedish backpackers. Legal expert Scott Optikin says if he can prove his innocence, recent cases suggest he could get a big payout.
16: Alan Hall did 18 years, for example. I think Mr. Tamahiri did 20. I think Alan Hall got something close to $4 million in compensation.
13: Memorial events are being held across Israel to mark 3 years since the Hamas attacks. Around 1,200 people were killed and 250 taken hostage, sparking a deadly response in Gaza. To sport, former wicketkeeper BJ Watling has been appointed Black Caps batting coach. He replaces Luke Ronke, who's taking over as head coach of the Melbourne Renegades in the Big Bash League. Watling will start the role for the four-test tour of Australia at the end of the year. And the tackle technique that broke the leg of rugby league star Nathan Cleary will now be confirmed as illegal by World Rugby. The hip drop tackle will be added to foul play law on November 1st.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
17: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
18: Suchit kiya jata hai ki Praveena, Shailendra aur Gateway Chartered Accountant ke Sharveen Prakash ki maa, Raki Raki Fiji ke swargiya Shri Ram ki patni. Shanti Bai Ram ki mrityu Auckland mein ho gayi. अंतिम संस्कार आज 1:30 PM एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोलोवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा. याद रहे प्रवीणा, शैलेंद्र और गेटवे चार्टर्ड अकाउंटेंट के शर्वीन प्रकाश की मां, राखी राखी फिजी के स्वर्गीय श्री राम की पत्नी. शांति बाई राम की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार आज 1:30 PM एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोलोवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा.
17: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
0: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
19: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
18: सुपर सिटी ऑकलैंड में आज का वेदर अगर देखा जाए तो राइट नाउ बताया जा रहा है इट्स गोइंग टू बी अ फाइन डे, ब्यूटीफुल इनफैक्ट डे रहेगा एज फार एज द वेदर इज कंसर्न्ड। इसी घंटे 6:46 पर होगा सनराइज, 7:32 पर होगा सनसेट, 11.4 डिग्रीज है टेम्परेचर फिलहाल, हाई ऑफ 20 एक्सपेक्टेड है अभी बाद में चलकर, और ओवरनाइट टेम्परेचर आज का 10 डिग्रीज रहेगा।
0: ब्रेकफास्ट कैचअप द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
20: पूरी की पूरी गैंग के लोगों कान के साथ सब कुछ खोल के सुन लो।
18: हेलो कियोरा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। 4 मिनट हो रहे हैं समय हमारे स्टूडियोज में 6:00, दिस इज द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा 104.2 एफएम पर या रोवा ऐप पर। अगर फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमारे नाम करने के लिए।
21: इस सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं हम आपको देना चाहेंगे। होपफुली कल का दिन आपका अच्छा गया होगा और एक नए दिन और एक नई सुबह के लिए आप तैयार होंगे।
18: बिल्कुल, जहां पर हम तो एकदम रेडी हैं आज 8th October को आपके नाम करने के लिए, और ब्रेकफास्ट शो के इस सफर के साथ अगले 4 घंटे आपको एंटरटेन्ड और इन्फॉर्म्ड रखने के लिए।
21: बस आपको करना क्या है, हमारे साथ शामिल रहें ऑन द ब्रेकफास्ट शो, और इस दौरान ज़रूरी खबरें जो हैं जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है वो तो होंगी ही, उसके साथ फन, एंटरटेनमेंट और ज़बरदस्त इनाम जीतने के मौके।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manuka. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manuka.
2: Ladies and gentlemen.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. Kyunki dunya mein already bahut sare perfect, polished, Instagram-friendly stories hain. Aur unka humse koi lena dena nahi. Yahan kahaniyan hoti hain raw. Emotions hote hain real. Aur conversations hote hain bina mask ke.
3: Raja, mantri, chor, sipahi, sab yahan aate hain.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. On Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: My Titan Mega Henderson. Ab weekdays pe subah 6 baje se khula hai. Building supplies, timber, power tools or trade essentials. Sab kuch site pe jaane se pehle hi utha lo. Get in, get sorted and get the job done earlier. Open from 6 a.m. My Titan Mega Henderson.
5: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑनसाइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑनसाइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
6: Mobile Express is here. Our new self-service stations are your own pit stop. So you can fuel up without slowing your day down. And still earn smiles points on every fill. Mobile Express, let's go.
7: You know a restaurant's good when you can't get a table for 3 weeks. Just like it's a great sign if a specialist is booked till next month. And if a builder can't fit you in till the summer, you know it's probably worth the wait. So when we tell you that Diocesan School for Girls is generally booked 2 years ahead, that should tell you everything you need to know. So if you're thinking about what's next for your daughter, join us at our open day on Thursday, the 22nd of October from 9 till 11 a.m. Register at diocesan.school.nz.
8: When you've got roads, rain and traffic, you get potholes.
9: Oh man, potholes are the worst.
8: Yes, we know. That's why we have the Auckland Council Pothole Promise.
9: Huh, how does it work?
8: Well, someone alerts us to a pothole via the website. Then our crews head out, spot the pothole, catch it and release it somewhere where it won't be a nuisance.
9: Really?
8: No. We fill them with an approved asphalt premix, usually within 24 hours. It's how we keep the city moving. Search Pothole Promise. Tāmaki Tūriki. All together, Auckland.
0: The beat of Bollywood.
10: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manuka. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manuka. Global headlines.
11: आज सुबह के मुख्य समाचारों में भारत के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक 4 मंजिला बिल्डिंग गिरने से 2 बच्चों और एक प्रेग्नेंट महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई है दिल्ली फायर सर्विस को दोपहर 3:30 बजे कॉल मिलते ही फायर इंजन स्पॉट पर पहुंचे जहां लोकल लोगों ने भी मलबा हटाने में मदद की डेब्री से रेस्क्यू किए गए 8 घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है ये दर्दनाक हादसा दिल्ली के सत्यनिकेतन में हुए हॉस्टल ट्रेजेडी के ठीक 1 महीने बाद सामने आया है जिसमें 7 लोगों की जान गई थी फिजी में फिजियन टीचर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी पौला मनुमनुतोंगा द्वारा फेसबुक पर डिस्क्रिमिनेटरी और ऑफेंसिव पोस्ट लिखने के बाद कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो गई है फिजी विलेज की एक रिपोर्ट के अनुसार पोस्ट में उन्होंने आम लोगों के खिलाफ गालियां और वायलेंट थ्रेट्स का इस्तेमाल किया था जिसके बाद उन्हें पद से हटाने की मांग उठने लगी है मिनिस्टर शशि किरण ने इस टॉक्सिक भाषा की सख्त निंदा करते हुए मनुमनुतोंगा से तुरंत रेजिग्नेशन मांगा है मिनिस्टर फिलिमनी वसरोंगो ने भी कहा कि सेंसिटिविटी वाले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के दौर में पब्लिक लीडर्स को डेकोरम मेंटेन करना चाहिए फिजी में एफएमएफ आईडीसी के दौरान मुख्य कंपटीशन में रेवा पहली टीम है जो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई हो चुकी है रेवा की जीत कल लंबासा के खिलाफ हुई कल हुए मैचेस की ओर अगर देखें तो लोटोका ने अपने मैच में नांदी को 5-2 से हराया उसके बाद बाकी के जो मैचेस कल खेले गए उसमें सुवा और नसीनू 2-2 गोल से बराबर ठहरे बा और साथ में नावुआ भी दो दो गोल से बराबर ठहरे और उसके बाद रेवा की जीत लंबासा के खिलाफ 3-0 से हुई। अगले राउंड के मैचेस जो हैं ये आज खेले जाएंगे और आज के मैचेस की ओर अगर देखें तो आज HFC बैंक स्टेडियम में 12 बजे किरिम्बास और ननरोंगा के बीच मैच होगा, 2:30 बजे लोटोका वर्सेस नावुआ, 4:30 बजे नसीनू वर्सेस लंबासा, 6:30 बजे नांदी वर्सेस मुंबा और उसके बाद आज रात 8:30 बजे रेवा और सुबह के बीच मैच खेला जाएगा। बिकस पार्क पर दिन में 12 बजे तावुआ वर्सेस फीजी अंडर 17 ये प्रीमियर डिवीजन का मैच होगा, 2:00 बजे सावुसावु वर्सेस नंदोंगो सीनियर डिवीजन का मैच, 4:00 बजे रिकेती तालीवुनित सीरीज से खेलेगा। PGFI एकेडमी ग्राउंड्स में दिन में 12:00 बजे तवियुनी राखी राखी से खेलेगा और 2:00 बजे लामी की भिड़ंत बुआ से होगी। FMF IDC पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आते रहेंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
0: Bollywood's most wanted.
12: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
13: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं 26 minutes after 6 for now और on the Breakfast Show आज आपको ये खबर हम दे दे कि दृश्यम the conclusion इसके बारे में काफी बातें हो रही हैं and this particular movie has now earned or entered 200 crores club.
1: All right, that's a lot of money.
0: Yes, it is. A lot of money, but on the other hand, let me also tell you कि ये फिल्म काफी अच्छी कर रही है in the theatres. अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, आपके पास chance है to check it out. Don't forget रजनीकांत की फिल्म The Jailer 2, इसका जो official हिंदी trailer, ये भी release हो चुका है. अगर आपको याद नहीं है कि Jailer कौन सी फिल्म है, तो ये गाना आपको याद होगा, जो इसमें उसने dance किया था. क्या नाम है उनका? तमन्ना भाटिया ने. एक गाना था. गाने का टाइटल मैं खुद भूल गई. जैसे दिमाग में ट्यून है और मैं वो बोलना नहीं चाहती.
1: वो आपके दिमाग से सब कुछ सुनाई पड़ रहा है.
0: अच्छा, थैंक गॉड. तो मेरे को बोलना भी नहीं पड़ेगा. बट या आपने मेरे ख्याल से देखी है ना जेला?
1: हाँ हाँ, देखी देखी.
0: हाँ, तो अब उसका पार्ट टू आ गया है.
1: ओके, तो ये आप देख सकते हैं. करण जौहर और कॉफी विद करण का जो आखिरी सीजन है,
0: सीजन नाइन,
1: इसको लेकर काफी बातें हो रही हैं. दो दो अनन्यास आ रही हैं इस बार.
0: ओ, सीजन नाइन में दो दो अनन्या, कैसे? एक ही तो अनन्या इंडस्ट्री में, अनन्या पांडे.
1: अनन्या पांडे आ रही है और उनके साथ आ रही है अनन्या बिरला.
0: ये कौन है?
1: You don't know अनन्या बिरला?
0: No, I have no idea ये कौन है.
1: पता लगाओ कौन है, मुझे भी बताओ.
0: मैं कॉफी विद करण का जो वो क्या बोलते हैं टीजर है इस एपिसोड का, वो चेकआउट कर लूंगी.
1: ओके, हाँ, तो अनन्या बिरला जो है ऑब्वियसली बिरला फैमिली से है.
0: टाटा बिरला वाली बिरला. I mean, that's how people say. That's why वो ज़बान पे रह जाता है ना. टाटा बिरला थोड़े ना है.
1: So must be from that family.
0: Okay.
1: तो हालांकि अनन्या पांडे has been on the show before, लेकिन expect किया जा रहा है कि अनन्या बिरला जो है एक fresh equation लेकर आएंगी. दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि एक और expectation है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी आएंगे.
0: ए, by the way, कल उन्होंने announce किया था expecting their second child.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Congratulations. लेकिन कॉन्फर्मेशन अभी कुछ नहीं आया है. और गेस्ट लाइनअप की ओर अगर देखें कॉफी विद करण का ये सीजन जो आखिरी सीजन है, अनन्या पांडे, अनन्या बिरला और अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा अडवाणी हुए और उनके साथ आलिया और शहीन भट्ट, ये आ सकते हैं. विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना.
0: ओके.
1: इब्राहिम अली खान और सारा अली खान.
0: साला अली खान.
1: कल जो आपके साथ हुआ था ना. वेदांग रायना साथ में, शर्वरी वाग
0: साथ में.
1: ये लक्ष्य कौन है?
0: लक्ष्य वो जिन्होंने बेड्स ऑफ बॉलीवुड में काम किया था.
1: अच्छा, वो आ रहे हैं.
0: और किल मूवी में भी थे ये.
1: साथ में करीना कपूर खान, सैफ अली खान एंड कियारा अडवाणी.
0: कियारा अडवाणी तो बता दिया आपने ना.
1: और वरुण धवन साथ में जानवी कपूर.
0: ओके,
1: so these are the names जो है अभी सामने आ रहे हैं. कॉफी विद करण सीजन 9 is gearing up for another season. You know, काफी candid conversations जो है ये होने को है from 14th of October.
0: Very nice. So let's see, आपके लिए ये updates हमने दिए हैं, but once the episode releases तो of course confirmation भी आ जाएगा और enjoyment भी मिलेगा confirming की अच्छा यही लोग हैं जो एक साथ नजर आने वाले हैं. फिलहाल 30 मिनट हो रहे हैं 6 बजकर और on the breakfast show with Vijay and Pooja थोड़ी देर बाद आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं आज का हमारा पहला सवाल. Hopefully you're ready for it and don't forget आज भी आपको बहुत से मौके हम देंगे हमारे साथ शामिल होने के. फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में पार्टिसिपेट करते हुए $5,000 worth of prizes में से अपना शेयर जीतने के लिए. The Breakfast Show
2: with Vijay and Pooja. Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी cute है.
3: Accurate traffic.
4: Better traffic starts now.
5: Should be fine all day, but plenty of cloud as well. Got a high of 21 degrees. Not really slowing down too much so far this morning, but if you're coming in on the northern, a little slow patch of Constellation Drive. 17 minutes from there to the city is very quick though. Northwestern, just slowing down close to the CBD. 18 minutes in from Massey is fine. And southern, 21 in from Manukau. No major issues. Slow Papakura to Manurewa. Southwestern, all good.
4: Want to freeze fuel tax? Vote Labour. Authorised by Rob Salmond to Gilmer Terrace, Wellington.
6: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
7: हाँ, इस बात की मुझे भी.
6: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए.
3: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88-600.
7: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए. Hi, मैं हूँ गुरु खंडोला from Logic Finance. जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूँ. लॉजिक फाइनेंस के गुरु कंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं.
8: टर्म्स कंडीशन फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई. कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु कंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी विच इज 0800-564-424.
9: It's the final days of Carpet Court's Spring Do-Up Sale. Get huge deals throughout the store, including free underlay and free installation on selected Rhino and Feltex carpet. Plus, we'll shout the first $600 of installation free on selected hardfloor. Hurry into Carpet Court today.
10: Save big at Rebel and get the kids sorted for back to school. Grab a huge range of kids' running shoes for just $69. Get 20% off selected bags and bottles. Plus, score an extra 20% off all clearance. Back to school value is on now. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
11: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
12: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
13: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन बिग और स्मॉल. ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एट हैरिंगटन लिविंग मोनाको. बिग ऑन स्टाइल, ग्रेट ऑन प्राइस, परफेक्ट फॉर योर होम. हैरिंगटन लिविंग मोनाको.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा आपके लिए लेकर आ रही है. आज है थर्सडे 8th of October एंड आज की सुबह. अगर आज हमारे साथ आप अभी भी शामिल हुए हैं, आपको याद दिला दे, अभी तक हमने बर्थडे विश नहीं किया है. नॉर्मली हम 7 AM टू 8 AM के बीच हमारा जो मॉर्निंग मैडनेस का प्रोग्राम होता है उस दौरान बर्थडे ग्रीटिंग्स जो है ये लेकर आते हैं. सो इफ यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे या फिर समवन इन योर लाइफ हु होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस, आज ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. कुड बी एनीवन, कुड बी योर फ्रेंड, योर कलीग, कुड बी योर फैमिली मेंबर. तो इनको अगर आप सरप्राइज करना चाहते हैं तो उनके लिए भी आप हमारे पास ग्रीटिंग सेंड कर सकते हैं. अराउंड 7:40 हम विश करते हैं सुबह. और अगर शादी की सालगिरह है भाई, तारीख जो है ये भूल गए हैं, 7th या 8th October याद दिला रहे हैं आपको, ताकि समय रहते याद भी आ जाए, आप खुद भी विश कर दे. और एक स्पेशल सरप्राइज प्लान करना है तो बस हमारे जरिए भी आप अपने स्पेशल समवन को सरप्राइज कर सकते हैं. सो ग्रीटिंग्स हमारे पास, आप टेक्स्ट कर दीजिएगा ऑन 5599 समय रहते, ताकि हम आपको विश कर सके.
1: जैसे आपने कहा आज 8th of October है
0: जी.
1: आज कई चीजें जो है मार्क की जा रही है, सेलिब्रेट की जा रही है. इंटरनेशनल ऑफ रोड डे.
0: ओके,
1: हैव यू एवर बीन ऑफ रोडिंग, एन ऑफ रोडिंग ट्रिप?
0: ऑफ रोड ट्रिप कैसा होता है? रोड ट्रिप पता है, ऑफ रोड ट्रिप क्या होता है?
1: ऑफ रोड जो है ये यू नो अलकतरे लगे रास्ते से हटकर यू गो इनटू द इंटीरियर्स. और वो
0: अलकतरा लगे रास्ता मतलब
1: टासील रास्ता.
0: हाँ तो वो भी बोल सकते हैं ना, लाइक कंट्री रोड टाइप्स.
1: हाँ, ऑफ रोड जहाँ पे 4x4 व्हीकल्स आप लेकर
0: ऐसे अपने पेट में
1: एडवेंचरस होता है,
0: पेट के अंदर जो आपका पूरा काम बन रहा हो वैसे रास्ते पर जाए अगर आप. हाँ, I've been on such trips. I enjoy it. मुझे you know ऐसे रास्तों पे व्यूज बहुत खूबसूरत होते हैं.
1: अच्छा, समझा नहीं पाया लगता मैं अच्छी तरह से.
0: नहीं, आप समझा पाए ना. Like you're talking about gravel road, right?
1: Gravel road, not only gravel road, ऐसे जगह जहाँ पर गड्ढे हो और नदी पार करना हो.
0: वो वैसा वाला? नहीं, वैसा वाला नहीं किया. वो normally ऐसे जंगल सफारी टाइप से अगर आप जाते हो तो हो पाता है ना.
1: ओके, आज इंटरनेशनल बर्थ रजिस्ट्रेशन डे है, साथ में इंटरनेशनल न्यूज पेपर कैरियर डे. आजकल तो ऐसा बहुत कम होता ना.
0: हाँ, I don't know if people still do it or not. आजकल यार newspapers भी कोई पढ़ता है क्या?
1: हाँ,
0: like that's what I want to print me newspapers, printed ones.
1: हाँ, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं.
0: Okay, because I don't know. There was a time जब newspaper was a thing उसमें बहुत सी चीजें आती भी थी, एंड देयर यूज्ड टू बी अ सेक्शन जहां पर लोग नॉर्मली क्रॉसवर्ड्स वगैरह भी खेलते थे ना, आई मीन इन्फॉर्मेशन के अलावा गेम्स, एंटरटेनमेंट, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स जो यहाँ पर होता था, एंड पीपल यूज्ड टू रियली यूज इट टू फुल पर्पस. और कई बार लोग न्यूज़पेपर कटिंग्स वगैरह रखते भी थे, अगर उनके किसी जान पहचान का, इनका खुद का कोई एक आर्टिकल आ जाए या कोई हाँ कोई फोटो आ जाए, समथिंग लाइक दैट. आई डोंट नो इफ पीपल स्टिल डू दैट और नॉट.
1: आज वर्ल्ड ऑक्टोपस डे है.
0: ऑक्टोपस डे, पोल द ऑक्टोपस याद है आपको?
1: हाँ हाँ.
0: ओके.
1: आई नो हिम.
0: ओके.
1: कभी कभी आपने एक जिंदा ऑक्टोपस अपने हाथों में पकड़ा है?
0: नहीं.
1: अच्छा, वेरी नाइस. और आज वर्ल्ड साइट डे है.
0: इंटरेस्टिंग.
1: बर्थडे की ओर अगर देखें, आज समीक्षा अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है. और उनके साथ आज मोना सिंह,
0: ये भी अपना बर्थडे मना रही है.
1: हाँ, राजेश शर्मा.
0: ओके.
1: इन्होंने अभी हाल ही में एक वेब सीरीज में काम किया था.
0: हुनकर में वो अनित पड्डा के डेड बने थे.
1: अच्छा, वो लड़की अनित पड्डा है
0: जी.
1: ओके.
0: आपने पूरा शो देख लिया.
1: हाँ.
0: और जिनके ऊपर मेन सीक्वेंस बना है उनका उनका पता ही नहीं आपको कि वो कौन है?
1: नहीं, मुझे उनका नाम नहीं पता था.
0: अनित पड्डा है डन सैयारा विद.
1: हाँ, मुझे इतना पता कि बहुत बड़ी सेंसेशन ये बनी थी उस फिल्म के.
0: हाँ,
1: बाद
0: सैयारा के बाद.
1: बट मुझे नहीं पता था कि वही है.
0: अनित पड्डा.
1: ओके. और आज क्या बोलते हैं, मन्नत में भी बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है.
0: क्यों?
1: गौरी खान का बर्थडे है.
0: अरे
1: आज.
0: वाह.
1: और साथ में राजकुमार साहब, इनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था.
0: कौन से वाले राजकुमार?
1: जानी वाले.
0: ओ अच्छा, वो वाले, क्योंकि दो है ना, एक राव है एक जानी वाले. तो आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है
1: जी.
0: ओके, इंटरेस्टिंग. सो आज इनके साथ अगर आप भी अपना स्पेशल डे मना रहे हैं, आप जरूर हमारे पास अपने मैसेजेस सेंड कर सकते हैं. 23 मिनट्स अवे फ्रॉम 7 फॉर नाउ. अभी एक बड़ा ही खूबसूरत रोमांटिक सा गाना सुनते हैं जुबिन नौटियाल की आवाज में. और इस गाने के बाद आज का हमारा पहला सवाल आपके लिए हम लेकर आएंगे.
14: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4NZPMI.
0: You know, आज सुबह इस गाने में I'd specially like to remember these five people जिन्होंने हमें अपने good morning messages send किए हैं. And it's a romantic song, but it's a beautiful song, इसलिए आपको मैं dedicate करना चाहूंगी अपनी ओर से. सबसे पहले तो राज है, और उसके अलावा मिस्टर माटामाटा है, उसके साथ परमा महाराज जी है और बॉबी मान जी है. इन चारों ने अपने गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजे हैं. और स्पेशली मैंडी, आज इनको हम याद करना चाहेंगे.
1: बड़े दिनों बाद.
0: हाँ, इन्होंने लिखा ये वर्ल्ड टूर पे गई थी.
1: ये अकेले अकेले चली गई.
0: हाँ, तो हमको लेकर जाती. तो मैंडी, अमेजिंग टू हियर दैट यू आर हैविंग सो मच फन इन योर लाइफ. वर्ल्ड टूर जो है ये आप गई थी, एंड नाउ यू आर बैक एंड यू हैव जॉइंड अस ऑन द ब्रेकफास्ट शो. सो थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए. शी इज़ अ वेरी वेरी वंडरफुल लेडी, और हमेशा जिम जाती है भाई सुबह सुबह. और
1: मिली कभी मैंडी?
0: हाँ, एक बार मिली हूँ.
1: ओके.
0: तो ये जिम जाती है हर सुबह, तो प्रोग्राम सुनती है, उस दौरान बताती है कि जिम से प्रोग्राम सुन रही हूँ ना. एंड शी इज़ एन inspiration if you see her, you know. So there you go, Mandy, thank you so much. Aapka bhi bahut bahut shukriya hamare saath subah subah join hone ke liye.

0: How was the song? Did you enjoy it?
1: Yeah, very nice.
0: बहुत खूबसूरत गाना है ना. और कबीर सिंह का जो एल्बम रहा, जिसके बारे में आई थिंक एक दिन और हमने बातें की थी ऑन द ब्रेकफास्ट शो. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एल्बम. और उसी फिल्म का ये गाना आज आपके लिए हम पेश कर रहे थे. और फिलहाल चलिए, आज का हमारा पहला सवाल जो है ये आपके लिए हम लेकर आए हैं. और आज जो क्वेश्चन है वहाँ पर, बेसिकली व्हाट वी विल डू इज़, आपको फिल्म जो है ये पहचाननी है. और फिल्म जब आप पहचाने तो अपना आंसर हमारे पास आप टेक्स्ट करें. तो ये जो मूवी है, इस नाम की दो फिल्में आई हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में. और एक फिल्म जिसमें काम किया है अमिताभ बच्चन ने,
1: अच्छा,
0: और उनके साथ थी मेरे ख्याल से नीलम कोठारी,
1: हाँ, ओके,
0: और मिथुन चक्रवर्ती थे इस फिल्म में, और डेनी डेंगजोंपा.
1: ओके, अमिताभ बच्चन, नीलम, डेनी
0: और मिथुन.
1: पता नहीं.
0: आए, पता नहीं. That's interesting कि आपको इस फिल्म के बारे में नहीं पता. Apparently अमिताभ बच्चन की ऐसी कई फिल्में हैं जिसमें उन्होंने काम किया, तो अगर कोई डायलॉग उन्होंने बोली हो तो वो लोगों के जहन में छप गई.
1: अच्छा.
0: और दिस पर्टिकुलर मूवी, इसका जो डायलॉग है ये भी ऐसा ही कुछ था. इसमें जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था, पीपल लाइक्ड दैट कैरेक्टर. एज फार एज आई नो, आई थिंक दिस मूवी डिडंट डू वेल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन.

0: सालों बाद जाकर जो फिल्म आई थी वो बॉक्स ऑफिस पर भी चली थी और लोगों ने काफी पसंद भी की थी। नाम एक ही था दोनों मूवीज का, एक नाम।
1: वेरी नाइस, बताइए कौन सी फिल्म है भाई।
0: राइट, तो आप हमारे पास अपना जवाब जो है ये टेक्स्ट कर सकते हैं, आप BF लिखे सबसे पहले, फिर आंसर, फिर नाम 5599 पर भेज दीजिए। देखेंगे थोड़ी देर बाद क्या आपने आज की हमारी बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे पहचानी है या नहीं।
2: Breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Chup ho jao papi ho, chup ho jao.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Accurate traffic.
2: Kitchen Mania free installation.
3: Plenty of cloud, but still mostly fine. 21-hour high today. Coming into the city, Southern Motorway, we're slow Papakura to Manurewa and just building a bit overall. 25 minutes Manukau to the city, 42 from Drury. Fine on the southwestern, the northwestern, 22 minutes in from Massey. Slow patches at Te Aratu, Pātiki and through Greyland. Northern, 18 minutes in from Constellation Drive, slow there to Milford.
2: Order your new Kitchen Mania kitchen and receive free installation. KitchenMania.co.nz. T's and C's apply.
4: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
5: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
6: अब हमारा क्या होगा?
7: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
5: तो क्या करें?
8: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
9: Don't sleep on Briscoe's one-day sale on now with huge one-day 60% off deals plus huge one-day store-wide savings. Stores open late. Briscoe's one-day sale today only. See online for TCs and store hours.
10: At Woolworths, these back-to-school specials are a great way to save. Get half price on the Sistema range. And Dairyworks cheese slices 500 gram are just $8 each. TCs and exclusions apply. Only at Woolworths.
11: The Cooperative Bank's home loan crew are in the house. Check it. Got that home dream, but don't know where to start? Little KiwiSaver and lots of listings bookmarked. LIMS, LVRs, what does it all mean? Been checking out listings since 2019. Deposit, pre-approval. How much can I borrow? Let's make a plan today for your tomorrow. Talk to the Cooperative Bank's home loan crew. From first questions to front door keys, we got you. T's and C's apply.
12: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
12: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
14: आपको याद होगा कुछ दिन पहले, जस्ट अ फ्यू डेज बैक, हमने बताया था कि $30 का एक पेंटिंग जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स में ऑक्शन में बिका था
5: जी।
14: इनफैक्ट इसका न्यूजीलैंड वैल्यू अगर देखें तो इट वाज $50 और न्यूजीलैंड डॉलर्स में ऑक्शन में ये $2.4 million में बिका था।
5: वाओ, $30 में लिया, $2.4 million में बिक गया। बट बेचा इन्होंने खुद नहीं था, वो अलग बात है, जिन्होंने लिया था।
14: इसके अलावा आपको तो पता है कि अगले साल से इन पर्सन सिटीजनशिप टेस्ट
5: जी
14: ये असर में आने वाला है, तो अब एक प्रोवाइडर जो है ये इन्हें सेलेक्ट कर लिया गया है जो इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। कौन है और क्या कुछ है इसके बारे में डिटेल 7:30 न्यूज हेडलाइंस में हम आपको देंगे।
5: थैंक यू। तो डेफिनेटली आप 7:30 न्यूज हेडलाइंस सुनिएगा, डिटेल्स यहाँ पर शेयर किए जाएंगे आपके साथ। और उसके साथ साथ हमने आज जो सवाल किया था, इंटरेस्टिंग आंसर्स हमारे पास आए हैं। द वेरी फर्स्ट पर्सन जिन्होंने आज जवाब दिया, उन्होंने अपना नाम ही नहीं लिखा, पर शुक्रिया अपने मैसेज के लिए। और इसके साथ साथ दवनेश ने अपना मैसेज भेजा है, साथ में क्रिश है, रोनल्ड है, गुंजन है, अमन का मैसेज आया है, रॉन है, नीलेश दयाल है, योगी है, अजय

0: है. एंड अयान का भी मैसेज आया है. हरदीप अ वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आपके भी मैसेज के लिए. हरदीप शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो हमने आज आपसे पूछा है हमारी बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे का जो नाम, और हमने आपको कहा है कि एक नाम से दो फिल्में आई और एक फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन और फिर उसके बाद नीलम कोठारी, मिथुन चक्रवर्ती और डेनी डेंगजोम्पा जो है इन्होंने एक साथ काम किया था. और इसके बाद कई सालों बाद चलकर एक और एक फिल्म आई सेम नाम से और उसमें कुछ और कलाकार थे. इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको एक और एक बताना चाहूँगी, इस फिल्म से आपके नाम का बड़ा कनेक्शन है. तो अगर कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या जवाब है, तो इस फिल्म के जो बहुत से कैरेक्टर्स हैं उनके साथ एक नाम का कनेक्शन है जो आपके नाम से है, जुड़ा है आपसे. Okay. जुड़ा बेसिकली आपके नाम से जुड़ा है. तो लेट्स सी इफ इट मेक्स इजियर फॉर यू. बट ऑन द अदर हैंड एक और एक चीज, इस फिल्म में अर्चना पूरन सिंह जो है इन्होंने काम किया था, द वन विद अमिताभ बच्चन. अर्चना पूरन सिंह जो ये दिखी थी और एक गाना उन्होंने किया था इस फिल्म में जो काफी हिट हुआ था बाय द वे.
1: अर्चना पूरन सिंह और गाना गाने की जब बात आती तो मुझे सिर्फ एक ही गाना याद आता है, फीलिंग हॉट हॉट हॉट.
0: उसमें पता है फराह खान ने डांस किया था बैकग्राउंड में.
1: नहीं मैं मुझे नहीं पता.
0: इफ यू एवर गेट अ चांस टू गो एंड वॉच दैट सॉन्ग फीलिंग हॉट हॉट, जो गाना आपने बताया अभी जिसमें अर्चना पूरन सिंह थी, गो एंड सी. फराह खान ने बैकग्राउंड डांसर के रूप में इसमें डांस किया था और शी हैज बीन सीन इन सम सीन्स लाइक वेरी क्लियरली एंड एविडेंटली. एंड आई थिंक उसमें जावेद जाफरी भी थे हु डांस्ड विद हर.
1: आई एम नॉट रियली श्योर, वो सारी चीजें मुझे नहीं पता. इतना मुझे पता जलवा थी फिल्म ना.
0: यस दैट वाज जलवा.
1: नसीरुद्दीन शाह.
0: यस हां. बट दिस मूवी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, इसमें अर्चना पूरन सिंह थी जिसमें जो पहले आई थी और जो कई सालों बाद बनी थी. एक और एक गाना था उस फिल्म का जो बहुत चला था, उसमें कटरीना कैफ थी. तो देयर यू गो, आई होप आई एम मेकिंग सेंस और आई होप कि आपके लिए थोड़ा इजी हो रहा है टू आइडेंटिफाई आज का हमारा बॉलीवुड मूवी. थोड़ी देर बाद हम सही जवाब जो है ये रिवील करेंगे. अभी किसी ने आपका नाम ही लिखकर भेज दिया, विजय लिखकर भेजा. नहीं ये फिल्म का एक फिल्म है, विजय भी एक फिल्म है बाय द वे, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट मूवी. मैंने कहा कि आज की हमारी जो बॉलीवुड मूवी है उसका इनके नाम से कनेक्शन है.
1: आपने जिस तरह से क्लूज दिए हैं
0: सब कंफ्यूज हो गए, मुझे पता है. मुझे यही पता है कि सब एकदम ये क्या बोल रही है, मतलब एक क्लू दो क्लू ऐसे जंप कर कर जो मैंने बताया है. बट एनीवेज लेट्स सी क्या आपने आज की बॉलीवुड मूवी पहचानी है या नहीं. तो थोड़ी देर बाद सही जवाब आपको हम देंगे. अब बारी है आज के पहले थ्रोबैक की.

0: Excellence Experience. Call 0800-634-234.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Puri ki puri gang ke logo, kaan ke saath sab kuch khol ke sun lo.
3: 3 minutes away here, 7:00. Good morning and welcome to Morning Madness. On Hum playing Bollywood's biggest hits, 104.2 FM aur Rover par aapke saath ke liye. Thank you so much. Is ghante bhi tamam cheeze hongi. Starting off with something jo kai logon ke liye bahut hi emotional hai.
4: Kya?
3: Bahut sare log Lionel Messi ke bahut bade fan hai na.
4: Oh yeah, that way.
3: And he bid farewell to his international career.
4: Mm-hmm.
3: 208 senior caps, the most of any player us team ki history mein. 126 goals unhone Argentina ki or se score kiye, wo bhi ek record hai.
4: Mm-hmm.
3: Aur kal raat Benin ke khilaf एक फ्रेंडली इंटरनेशनल अर्जेंटीना ने खेला और उसमें आखिरी बार
4: इन्होंने अर्जेंटीना को रिप्रेजेंट किया.
3: अर्जेंटीना को रिप्रेजेंट किया. पहले दो गोल्स जो है ये उन्होंने क्रिएट किए और तीसरा गोल जो है एंड हिज लास्ट गोल ऑफ इंटरनेशनल करियर जो है ये भी इन्होंने स्कोर किया. 39 ईयर्स के ही है सिर्फ.
4: वाओ.
3: या और
4: बट ही इज जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल मैचेस ना.
3: हां हां. और इन्होंने अर्जेंटीना के साथ 2022 वर्ल्ड कप, दो कोपा अमेरिका जो है ये जीते हैं एंड 21 इयर्स स्पेंड किए हैं ऑन द इंटरनेशनल स्टेज.
4: वाओ, दैट्स अमेजिंग यार. बहुत ही बढ़िया करियर इनका जो है ये रहा है. इवन एट द एज ऑफ 39 ही हैज प्रूव्ड कि व्हाई ही इज कॉल्ड द गोट फॉर अ रीजन ना. और ऑफ कोर्स इंटरनेशनल फुटबॉल से या फिर यू कहे कि इंटरनेशनल लेवल पर तो ये अवकाश ले चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, बट नेशनली आई थिंक ही विल प्ले फॉर सम क्लब एंड ऑल.
3: नेचुरली जो लोग जो करते हैं ना, आप वो शायद प्रोफेशनल लेवल पर उस तरह से नहीं करें लेकिन उनकी जिंदगी वही बन जाती है ना. एंड दे कंटिन्यू इन वन फॉर्म और अनदर टू being associated with it for the rest of their lives.
4: Very interesting. चलिए आपके लिए वैसे और भी interesting updates जो है ये हम लेकर आते रहेंगे. And interesting updates की बातें हुई तो I'd like to talk about this very very interesting चीज जो होती है Australia में. और अभी season इसका खैर खत्म होने वाला है, but I came across a news जहाँ पर recently ये देखा गया कि ये काफी परेशान कर. आपको पता है magpie क्या होते हैं?
3: Magpies.
4: हाँ. खाने वाला पाई नहीं होता है ये. yeah. किस्म का बर्ड होता है.
3: हाँ.
4: और ये जो बर्ड्स होते हैं ये बहुत डेंजरस साबित हो सकते हैं, स्पेशली जिसे न्यूजीलैंड में स्प्रिंग सीजन इज लाइक लॉट्स ऑफ फ्लावर्स एंड वेजी गार्डन्स एंड कलर्स एवरीवेयर है ना. तो ऑस्ट्रेलिया में मैगपाई सीजन होता है स्प्रिंग में, बिकॉज सितंबर मतलब जुलाई से लेकर अगर देखा जाए टू अगस्त मैगपाई का नेस्टिंग टाइम जो ये शुरू हो जाता है, वो ज़्यादातर टेरिटोरियल जो ये बन जाते हैं. अगस्त टू अक्टूबर बताया गया हाईएस्ट रिस्क होता है बिकॉज दे कैन अटैक पीपल स्पेशली अराउंड नेस्टिंग एरियाज के. और सितंबर यूजुअली पीक मंथ होता है जहाँ पर बहुत सारे इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए जाते हैं अराउंड देम. लेट अक्टूबर टू नवंबर इज समथिंग जहाँ पर जनरली देखा गया है कि स्वूपिंग जो है ये कम होता है, क्योंकि तब तक उनके जो बच्चे होते हैं ये बड़े होकर नेस्ट जो है ये छोड़कर चले जाते हैं. सो मैगपाइज जो बर्ड्स होते हैं इनके बारे में कहा गया है कि ये ऐसे बर्ड्स हैं जिनको हर एक शख्स का स्पेसिफिक जो चेहरा है ये याद रहता है. तो इसीलिए अगर वो किसी के ऊपर बार बार हमला कर रहे होते इट्स मोर लाइक अ पर्सनल अटैक कि दे रिमेंबर. दे ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर नेस्ट. और नॉर्मली नेबरहुड्स जहाँ पर इनके नेस्ट होते हैं वहाँ पर जो साइकिलिस्ट होते हैं या फिर जो रनर्स होते हैं उन पर काफ़ी हमले होते हैं. एंड इफ दे सी योर फेस वंस दे विल रिमेंबर योर फेस, एंड इफ दे सी यू इन द एरिया अगेन एंड अगेन तो आपके ऊपर पर्टिकुलर हमला जो ये करेंगे ही करेंगे. दे क्वाइट डेंजरस व्हेन इट कम्स टू हार्मिंग यू. इनफैक्ट वो आपके आंखें वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं, इसीलिए यू हैव टू प्रोटेक्ट योर हेड अराउंड नेस्टिंग एरियाज जहाँ पर मैगपाइज होते हैं. बट रदर देन दैट जब उनका सीजन नहीं होता है तो काफ़ी चिल बर्ड है वो. बट इमेजिन उनकी याददाश्त
3: वेरी रिस्की.
4: इच्छाधारी नागिनों जैसी होती है, हमेशा याद रहती है.
3: इच्छाधारी वही मैं अभी सोच रहा था जब आप ये स्टोरी बता. क्या सच में उनकी आंखों में
4: छप जाती तस्वीर
3: किन
4: की?
3: अगर कोई उनको कोई नुकसान पहुंचाता है
4: मैगपाइस को
3: नहीं
4: इच्छाधारी नागिन को हाँ। अरे मेरे को क्या पता, मैं थोड़े ना इच्छाधारी नागिन जो मैं आपको बताऊंगी
3: और क्या वाकई में इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं
4: मेरे को क्या पता भाई मेरे खानदान के नहीं है मेरे पास कोई डिटेल्स नहीं है बट आई डोंट नो इफ इट्स रियल और इट्स जस्ट अ मिथ नो आईडिया I can't say anything about it. But anyways, फिल्मों में देखा है हमने कि
3: सांप वो बीन बजाने से सांप वाकई में नाचते
4: हैं। आप बजा के देखो।
3: मुझे नहीं आता।
4: बजा के देखो आपके आसपास कितने लोग नाचते हैं पता चल जाएगा आपको। But anyways, 8 मिनट हो रहे हैं 7:00 इस समय हमारे स्टूडियोज में पिछले घंटे हमने सवाल पूछा था तो आज की हमारी बॉलीवुड मूवी इज नन अदर देन अग्निपथ विजय दीनानाथ चौहान ये नाम था उस किरदार का जो काफ़ी पॉपुलर हुए थे इस पर्टिकुलर फिल्म से जिसे 1990 में अमिताभ बच्चन ने प्ले किया था एंड देन केम 2011 जिसके दौरान ऋतिक रोशन ने इस किरदार को एक बार फिर पर्दे पर जिंदा किया एंड एज आई सेड बॉक्स ऑफिस पर 1990 वाली अग्निपथ जो है कुडंट डू अ गुड बिजनेस लेकिन 2012 में जो अग्निपथ आई थी विद ऋतिक रोशन संजय दत्त एंड ऑफकोर्स प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म ने काफ़ी कमाल किया था We'll be right back.

0: 1234. Rashi Vibes.
1: सबसे पहले मैं शानी एरिस, आज ऑफिस में आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, इसके लिए तैयार रहें। बिजनेस में कुछ तेजी आप नोटिस करेंगे, कस्टमर्स का काफी सपोर्ट मिलेगा और फाइनेंशियली आज का दिन आपका अच्छा रहेगा।
2: वृषणी टोरस, आपके लिए कहा गया है कि कुछ नई शुरुआत हो सकती है आपके वर्क लाइफ में, बस पेशेंस बनाए रखें क्योंकि ये नई शुरुआत आपको कुछ नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। बिजनेस में आप पार्टनरशिप के जरिए काफी फायदा उठा सकते हैं और मैरिड लाइफ भी आपका बहुत ही अच्छा, रोमांटिक और स्वीट बना रहेगा आज।
1: और उसके बाद मिथुन यानी जेमिनी, आज आपके लिए कहा गया है मेंटली काफी फ्रेश आप फील करेंगे, परिवार वालों के साथ आपके रिश्ते जो है ये मजबूत होंगे। बिजनेस में कुछ नए प्लान्स को कार्य रूप देने का ये सही समय है और काम कुछ कठिन आज आपके होंगे लेकिन बहुत ही स्मार्टली आप इन काम ये जो काम है इसको निपटा सकेंगे।
2: और उसके बाद कैंसर, आपके लिए कहा गया है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ये काम के मामले में बन सकती है, आपकी काफ़ी तारीफ भी आज होगी। इनफैक्ट आप जिस तरीके से काम करते हैं इस मामले में, परिवार में जो सदस्य हैं ये साथ देंगे, समय जो है इनके साथ काफ़ी अच्छा भी बीतेगा एंड कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स जो है ये आज आप जीने वाले हैं। अपने हेल्थ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सलाह आज आपको दी गई है।
1: सिंह यानी अलियो, आज निजी जिंदगी में लव लाइफ में कोई नया मोड़ आ सकता है। फाइनेंशियली जो सिचुएशन है इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आप नोटिस करेंगे, अपने काम को लेकर अपनी कैपेबिलिटी साबित करने का मौका आपको मिलेगा।
2: और उसके बाद अगर देखा जाए तो आज कन्या यानी वर्गो, आपके लिए कहा गया है जल्दबाजी ना करें, कोई भी फैसला अगर आपको लेना है थोड़ा पेशेंस के साथ आराम से सोच समझ कर इवेलुएट कर सिचुएशन को फैसले जो है ये आप ले सकते हैं। और आर्थिक यानी कि फाइनेंशियल मैटर्स में समझदारी से काम लेना आज बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: तुला यानी लिब्रा, आज आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका इन्फ्लुएंस जो है ये काम पर बढ़ेगा, सेहत बहुत अच्छा रहेगा और परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।
2: और उसके बाद अगर देखा जाए तो आज वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा गया है कि बिजनेस रिलेटेड कुछ फैसले आप ले रहे हैं, हो सकता है कि आप कुछ नया अपना खुद का शुरू करना चाहते हैं एंड यू थिंकिंग अबाउट वेदर टू गेट इट डन और नॉट, सो दिस माइट बी द राइट टाइम टू टेक अ डिसीजन और उस पर एक्शन लेने के लिए। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, पैसों के मामले में भी आज दिन काफी अच्छा बीतेगा आपका।
1: धन यानी सेजिटेरियस, बिजनेस में कुछ अटके हुए जो काम थे इसमें कुछ तेजी आप देखेंगे, बच्चों की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है और नए प्लान्स को शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है।
2: और मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कहा गया है कि आज परिवार में कुछ समस्याओं का हल मिलेगा जिससे कि आप खुशी भी महसूस करेंगे। शारीरिक रूप से थोड़े थकावट जो है ये आप महसूस कर सकते हैं क्योंकि जिम्मेदारियां भी आपकी बढ़ रही हैं, बेट आपका काम हो या फिर घर, इन दोनों मामलों में आप कुछ एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ये एक्सपीरियंस करेंगे आज।
1: कुंभ यानी एक्वेरियस, आज दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे और आज कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कामयाब रहेंगे, काफी एनर्जेटिक और हेल्थी आज आप फील करने वाले हैं।
2: और इसके अलावा आज अगर देखा जाए तो मीन यानी पाइसिस, आपकी बातों का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा रहेगा लोगों पर आज। इनफैक्ट कुछ ऐसी चीजें आप बोलेंगे जिस पर लोग अटेंशन पे करेंगे, रिएक्ट करेंगे और अच्छा रिजल्ट भी हासिल कर सकते हैं। आपकी फैमिली में कुछ बहुत ही शुभ काम जो है ये होने वाला है और इसमें आपको भाग लेने का मौका जो है ये मिलेगा, अगुवाई भी आप करेंगे इस मामले में, ऐसा आपके लिए कहा गया है। सो दीज वर योर राशि वाइब्स फॉर टुडे। उम्मीद करते हैं कि आज थर्सडे 8th अक्टूबर आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया और कमाल का गुजरे।
3: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
4: चुप हो जाओ पापी, चुप हो जाओ।
5: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
6: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
5: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
6: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
5: बस इतना ही।
6: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
3: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry. And Fortune, bring home the fortune.
7: मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ। जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप ओवरवेल्ड हैं या इमोशंस मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं। कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342। अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
8: Don't sleep on Briscoe's one-day sale on now with huge one-day 60% off deals plus huge one-day store-wide savings. Stores open late. Briscoe's one-day sale today only. See online for TCs and store hours.
9: It's New Zealand Wool Month, so don't miss sheepishly good deals on wool carpet at Flooring Extra. Visit your local Flooring Extra showroom and shop the wool sale today.
10: Flooring Extra. Adore your floor.
11: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle कीजिए अपना home loan of 500,000 या उससे ज्यादा Finance World के साथ. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights. दो lucky winners. हर eligible home loan of 500,000 या उससे ज्यादा automatically आपको draw में enter करता है. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
12: Now there's a better way to a new phone with Spark Upgrader. Combine our huge phone deals with great trade-in savings, plus look out for exclusive offers just for you. See what you could save on a new phone at spark.co.nz/upgrader. Available interest-free, credit criteria and terms apply.
13: Fall in love with your home again with an ANZ Reno Loan. A home loan top-up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% equity eligibility, lending rules, terms and fees apply. Available for a limited time. ANZ, we do have.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manuko. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manuko.
3: Celebrity Alarm.
15: Hit it.
2: तो चलिए अब बारी है कि आज की सेलिब्रिटी अलार्म जो है ये आपके लिए हम लेकर आए, जहां पर एक आवाज़ हम आपके लिए प्ले करेंगे और उस आवाज़ को सुनने के बाद आपको अनुमान लगाना होगा कि ये किसकी आवाज़ है। एंड देन यू हैव टू सेंड अस द आंसर अपने नाम के साथ। आपको हमारे पास जवाब जो है ये टेक्स्ट करना होगा। तो आज जिस सेलिब्रिटी की आवाज़ आपको हम सुनाने जा रहे हैं, दिस इज़ द वॉइस यू हैव टू पे अटेंशन टू।
16: I had a really tough postpartum time and I was just like, I was kind of even considering taking medication, looking at the side effects and all. I decided I was a little wary, although it works for a lot of people. Yeah.
2: तो ये आवाज किसकी है आज आपको हमें बतानी है। आपको क्या लगता है कौन हो सकती है? आपने ना तो देखा है अभी इनको, तो आई बिलीव यू वुड नॉट बी एबल टू से, बट अगर कोई जवाब हो तो बताइए।
1: नहीं, मेरे पास अभी तो कोई जवाब नहीं है। लेट मी थिंक।
2: लेट यू थिंक। अच्छा, ओके,
1: जस्ट गिव मी अबाउट 20 इयर्स।
2: 20 इयर्स, इंटरेस्टिंग। ओके, तो ऐसा करते हैं कि एक बार फिर से आपको ये आवाज़ जो हम सुना रहे हैं आप सुनिए और फिर बताइए कि ये किसकी आवाज़ है। इफ़ यू थिंक यू गॉट द आंसर, BF लिखना है सबसे पहले, फिर उसके बाद अपना आंसर, अपना नाम और हमारे पास 5599 पर आपको सेंड करना है। आई फील लाइक इट्स गोना बी अ बिट डिफिकल्ट टुडे, बट लेट्स सी।
16: आई हैड अ रियली टफ पोस्टपार्टम टाइम एंड आई वाज जस्ट लाइक, आई वाज काइंड ऑफ इवन कंसीडरिंग टेकिंग मेडिकेशन, लुकिंग एट द साइड इफेक्ट्स एंड ऑल। आई डिसाइडेड I was a little wary, although it works for a lot of people. Yeah. So I'm not somebody to.
2: तो जल्दी जल्दी अपने आंसर्स आप हमारे पास टेक्स्ट कर सकते हैं। निक ने कहा है माधुरी दीक्षित। नहीं, माधुरी दीक्षित नहीं है ये।
1: माधुरी दीक्षित की तो आवाज ही बिल्कुल अलग है ना.
2: उनका अंदाज भी ऑफ टॉकिंग इज वेरी डिफरेंट टू दिस. बट हु इज दिस वॉइस, हुज वॉइस इज दिस, यू हैव टू लेट अस नो. आप हमारे पास BF लिखे सबसे पहले, फिर अपना आंसर और फिर अपना नाम, और सेंड करें 5599 पर.
3: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
15: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ, मैं लाऊं अपना ए गेम.
3: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: 0800 634 234.
1: News headlines.
2: आज सुबह के मुख्य समाचारों में फितियांगा में आज तड़के सुबह एक घर में लगी आग के बाद पुलिस या फायर एंड इमरजेंसी क्रूज एक व्यक्ति की तलाश में लगे हुए हैं। इस पर और भी जानकारियां बाद में आपके लिए हम लेकर आएंगे। एक सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि वो बिना पैसे दिए पेट्रोल पंप से गाड़ी भगा ले जाता था और न्यूजीलैंड में इलीगली रह रहा था। पुलिस के मुताबिक गुरलीन बहिया पर दिसंबर 2025 से अब तक 9 बार पेट्रोल चोरी करने के आरोप हैं और वो 2 क्रिमिनल चार्जेस के साथ साथ एक्सपायर्ड वीजा पर भी देश में ठहरा हुआ था। वन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने उनसे अपना कार्ड वापस करने को कहा है। न्यूजीलैंड में लेट 2027 से शुरू होने वाले नए इन पर्सन सिटीजनशिप टेस्ट के लिए एस्पेक लिमिटेड को प्रोवाइडर सेलेक्ट किया गया है। इस 45 मिनट के टेस्ट में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसमें पास होने के लिए कम से कम 15 सही जवाब देना जरूरी होगा। इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर ब्रूक वैन वेल्डन के मुताबिक ये टेस्ट अप्लीकेंट्स के राइट्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की समझ को वेरीफाई करेगा। ऑल ब्लैक्स टीम शनिवार को ब्रिस्टल कप के पहले मैच के लिए जबरदस्त तैयारियां कर रही है। टीम अभी में कई खिलाड़ी जो हैं इनको चोट लगी है और उनकी जगह कुछ नए खिलाड़ियों को टीम में शायद शामिल किया जाए। ऑल ब्लैक्स और वल्बीज के बीच मैच इसी शनिवार की रात 7 बजे से खेला जाएगा। बीजे वटलिंग को ब्लैक कैप्स टीम का बैटिंग कोच अपॉइंट किया गया है। वो लूक रॉन्जी की जगह लेंगे जो इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद इस पद से हट जाएंगे। वटलिंग जो हैं ब्लैक कैप्स के भूतपूर्व विकेटकीपर बैटर रह चुके हैं और अभी नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स मेंस टीम के हेड कोच हैं। ये 16 नवंबर से ब्लैक कैप्स कोचिंग पैनल में शामिल हो जाएंगे और ट्रांजिशन पीरियड में टीम एनवायरनमेंट के बारे में जानकारियां हासिल करेंगे। वटलिंग ने 178 फर्स्ट क्लास मैचेस ब्लैक कैप्स के लिए खेले हैं। साथ में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स और डरहम के लिए भी उन्होंने खेला है जिसमें उन्होंने 10,000 से भी ज़्यादा करियर रन्स, 18 सेंचुरीज और 450 कैचेस जो हैं ये बनाए हैं। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco. Hum. Accurate traffic.
5: Beauty Mum at Bargain Chemist.
6: Fine spells today. Plenty of cloud as well. A high of 21 degrees. And on the northwestern motorway, we are slow and heavy across the causeway. And the same again from St. Luke's to Grey Lynn. Otherwise, pretty quick elsewhere. 26 minutes messy to the city. Southern 35 in from Monaco. Patchy on and off from Papakura. Slow all the way from East Tamaki. Northern 22 from Constellation. Slow there to Milford at Esmond and Silverdale.
5: Treat yourself to big bargains on your beauty favourites this beauty month at Bargain Chemist.
7: At Bunnings, spring really does start in the garden. Come into Bunnings, bring the tamariki down, find something that we can all get involved in. Nothing better than getting outside to do your gardening.
8: Get watering with a Pope 30-metre True Blue garden hose, only $48.17. Tidy up the backyard with a Nazito PXC 18-volt cordless line trimmer kit, $209. And grab some Yates 4-litre hose on weed and feed, just $30.46.
7: We've got what you need for less.
9: Bunnings Warehouse.
7: Lowest prices are just the beginning.
10: 3, 2, 1, rush!
11: Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewardsrush.
12: Power into summer with Powerball. There's 100 extra prizes of $20,000 that must be won. Get a triple dip at your local Lotto NZ store or online. Prizes drawn 17th October. T's and C's apply.
13: Few things sound better than logs crackling in a fire. Rain on a tin roof. My voice. And the words, you've won a pair of Bose headphones. Be in to win one of 50 pairs when you join Southern Cross Health Insurance by 11th of October. See website for details. T's and C's apply.
0: The big sale is on now at Beds R Us with amazing deals on selected sleepyhead beds like 60% off Swiss Tech Precision Queen Size now 3499. The big sale at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
14: A lot of injuries happen on the weekend, so if you're out and about or just out in the backyard, have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
3: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
3: Birthday greetings.
15: Iska birthday bhai?
16: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
15: Happy birthday to you.
2: आज सबसे पहले विमलेश जैनची वेस्टगेट में अपनी सालगिरह आप मना रहे हैं. खुशी के इस मौके पर आपके जितने भी परिवार वाले हैं सभी शुभकामनाएं और बधाइयां दे रहे हैं. ईश्वर से आपकी लंबी उम्र की कामना और प्रार्थना कर रहे हैं. हम सभी की ओर से भी आज का ये खास दिन आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो.
17: हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आपको हम जरूर विश कर रहे हैं आज यानी 1 अक्टूबर को जहां कहीं भी अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं.

0: 0800-634-234.
1: Breakfast show with Vijay and Pooja aapke liye lekar aa rahe hain, and right now it's around 21 minutes away from 7 ya maaf kijiyega from 8:07 the breakfast show with Vijay and Pooja par jahan par agle ghante rush hour ki shuruaat aap sabhi ke saath hum karne wale hain aur agle ghante aur bhi dilchasp jankari aapke naam hum zarur karne wale hain. But before we do that, aaj ka hamara celebrity alarm, let's have a look kya haal hua hai iska. Gunjan ne apna jawab bheja hai, saath mein Som ne kaha hai Huma Qureshi, uske saath saath hamare paas Nisha ka message hai, Sonu ka message जय और अंजिता इन्होंने कहा है नेहा धूपिया. सो अभी तक वी कैन से निक जिन्होंने माधुरी दीक्षित कहा, उसके बाद सोम ने कहा हुमा कुरैशी और अंजिता ने कहा नेहा धूपिया. ये गलत आंसर्स जो है ये हमारे पास आए हैं, तो आपको बस अनुमान लगाना है कि आज की हमारी सेलिब्रिटी कौन है इन सेलिब्रिटी अलार्म, और इनकी आवाज जो है ये आपको हम सुना रहे हैं फॉर द लास्ट टाइम, जिसके बाद आपको हम देंगे फाइनल 2 मिनट्स एंड देन वी विल रैप इट अप. एंड हियर वी गो, दिस इज द वॉइस यू हैव टू पे अटेंशन टू. Sorry, 1 minute.
2: Time, and I was just like, I was kind of even considering taking medication, looking at the side effects and all. I decided I was a little wary, although it works for a lot of people. Yeah. So I'm not somebody to recommend it or not speak.
1: So talking about this particular voice, ये आवाज नेहा धूपिया की नहीं है, हुमा कुरैशी की भी नहीं है, और साथ में माधुरी दीक्षित की तो हरगिज नहीं है. अब अगर आपने ये आवाज़ सुनी है एंड यू फील लाइक यू नो द वॉइस एंड यू'd लाइक टू गिव इट वन मोर ट्राई, आप हमारे पास अपना जवाब सेंड कर सकते हैं. एक चीज़ हम आपको कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं यू गॉट वन थिंग करेक्ट विच इज़ द प्रोफेशन, बिकॉज द कॉमन थिंग अमंगस्ट जो गलत आंसर्स आपने अभी तक हमें भेजे हैं और आज का जो हमारा सेलिब्रिटी अलार्म के जो सेलिब्रिटी हैं इनके बीच में यही है कि ये चारों के चारों एक्ट्रेसेस हैं. The wrong answers as in Madhuri Dikshit, Huma Qureshi and Neha Dupia, ye actresses hai, aur jo correct answer hai, wo bhi actress hai.
3: Okay.
1: Right. So final 2 minutes and we'll see. Kya aap sahi jawab bata pate hain ya nahi?
0: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZ PMI. Your local

0: बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस। बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
1: रुजबे 2026 में ना बहुत काम कर लिया है, अब तो ब्रेक बनता है।
2: बिल्कुल, तो लेते हैं एक लग्जरियस हॉलिडे ब्रेक, बाली और बैंकॉक।
1: और आप भी चलिए सन टूर्स के साथ ईस्टर 2027 में।
2: बाली 6 दिन और बैंकॉक 5 दिन, कंप्लीट लग्जरियस हॉलिडे पैकेज। बुक कीजिए टिल दिवाली और पाइए फ्री 2 nights 3 days सिडनी टू सिडनी क्रूज पैकेज।
1: 2027 ईस्टर को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल, बाली बैंकॉक और फ्री क्रूज।
2: बुक नाउ विद सन टूर्स।
1: कॉल करें 0800 478686।
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है।
3: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना। Call करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
5: Some very interesting answers आज के हमारे celebrity alarm के लिए हमारे पास आए हैं, जहां पर सोनू ने एक बार फिर कोशिश की। अंशु ने कहा Samantha Ruth प्रभु, नहीं ये भी गलत है। कुणाल का जवाब आया, सोम ने कहा Samantha Ruth प्रभु। जेनिस कुमार ने जेनिलिया डिसूजा देशमुख जो है ये भेजा है। और राजेश ने कहा है नाहिद साइरुसी, तो ये भी गलत है। एंड द करेक्ट आंसर आज के हमारे सेलिब्रिटी अलार्म का, आई थिंक द वेरी फर्स्ट पर्सन गॉट इट राइट वाज गुंजन, फिर उसके बाद निशा का सही जवाब आया था, सोनू ने भी सही जवाब दिया था, और उसके साथ साथ कुणाल का सही जवाब जो है ये आया। सो ओनली 4 पीपल गॉट इट राइट, विच वॉज रिचा चड्डा, आज की हमारी सेलिब्रिटी थी इन सेलिब्रिटी अलार्म।
6: So thank you so much aap sabhi ke answers ke liye on the breakfast show with Vijay and Pooja. Don't forget ki hamara festival of fortune jisme a total of $5,000 worth of prizes jeetne ka mauka hum aapko de rahe hain. $1,000 lagat ke fuel vouchers thanks to Indelible Homes, $1,000 ke home deco ya phir furniture ke liye vouchers, Harrington Living ki aur se $1,000 Mitre 10 ke vouchers, NZPMI ki aur se $1,000 ke New World Vouchers, Logic Finance की ओर से, और $1,000 worth या $1,000 cash Fortune की ओर से जीतने का मौका आपको हम दे रहे हैं।
5: Right, तो ये opportunity since आपने बोली कि हम दे रहे हैं, तो बोल के क्या अभी दे ही देते। और आज की पहली अपॉर्चुनिटी जबकि आपको हम देना चाहेंगे हमारे साथ अपना शेयर ऑफ $5,000 वो तो प्राइजेस में से इनाम जीतने के लिए, तो पहला जो इनाम है जो आज आप जीत सकते हैं द ब्रेकफास्ट शो, ये हैरिंगटन लिविंग की ओर से है। हैरिंगटन लिविंग हमारे स्पॉन्सर्स भी हैं ऑफ द ब्रेकफास्ट शो, और इनकी ओर से जहाँ पर हैरिंगटन लिविंग मैनिकाओ का स्प्रिंग सेल जबकि शुरू हो चुका है, यहाँ पर ब्यूटीफुल फर्नीचर जो है ये आप ले सकते हैं विद 6 months इंटरेस्ट फ्री, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, और ओनली
6: 60 months इंटरेस्ट फ्री।
5: ओह सॉरी, नॉट 6 months, या 60 months, माय बैड, 60 months इंटरेस्ट फ्री, और टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई, एंड दिस इज ऑल अवेलेबल ओनली एट हैरिंगटन लिविंग इन मैनिकाओ। मैं इनका जो यू नो वेबसाइट है चेक कर रही थी, सम वेरी स्टाइलिश ब्यूटीफुल फर्नीचर अगर आप तलाश रहे हैं, चाहे सोफा हो, बेड्स हो, या फिर घर का जो डेकोरेशन करने का कुछ सामान हो, कॉफी टेबल्स वगैरह आप चाहते हैं, तो यहाँ पर ये आप चेकआउट कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ से ले सकते हैं। और हैरिंगटन लिविंग की ओर से होम डेको या फिर फर्नीचर वाउचर जो है ये आप जीत सकते हैं, जो किसी एक शख्स को मिलेगा, एंड इट्स वर्थ $1,000।
6: और ये $1,000 का ये जो वाउचर है ये आपको भी मिल सकता है, प्रोवाइडेड आप कोशिश अपनी ओर से करें, अपनी एंट्री जो है ये हमारे पास भेजें। अभी आपको क्या करना है, आपको लिखना है HL, हैरिंगटन लिविंग का शॉर्ट फॉर्म, उसके बाद अपना नाम और किस सबब में आप रहते हैं।
5: राइट,
6: ये तीन चीजें लिखें और 5599 पर हमारे पास भेज दें, लेकिन टाइम बहुत ही लिमिटेड होगा, और विद इन द लिमिटेड गिवन टाइम आपको हमारे पास अपना जो टेक्स्ट है ये भेजना होगा। रिमेंबर टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, hum.rover.nz आप विजिट कर सकते हैं, और जब भी 5599 पर आप टेक्स्ट कर सकते करते हैं, स्टैंडर्ड कैरियर रेट्स डू अप्लाई। सो हैरिंगटन लिविंग की ओर से $1,000 वर्थ ऑफ होम डेको और फर्नीचर वाउचर ये आप में से किसी एक को मिलेगा, पूरा का पूरा $1,000 आप एक पर्सन को मिल जाएगा।

0: to go and shop at Harrington Living in Manukau.
1: Yes, matlab $1,000 and you decide what you want to buy. You don't have to share it with anyone. Ki acha itna paisa hum isko distribute karenge nahi. $1,000 will be yours and you go to Harrington Living in Manukau aur wahan se $1,000 worth ka jo bhi saman aapko chahiye wo aap le sakte hain. Remember, terms and conditions do apply for this. Aur around the promotion yani ki hamara Festival of Fortune iske around bhi kuch terms and conditions hai aur agar inke bare mein details चाहिए तो हम .over.nz आप विजिट कर सकते हैं. ये भी याद रखिए, व्हेनेवर यू सेंड अस अ टेक्स्ट ऑन 5599 स्टैंडर्ड कैरियर रेट्स डू अप्लाई. सो अभी हैरिंगटन लिविंग की ओर से $1,000 का वाउचर जीतने के लिए HL, फिर आपका नाम और आपका
0: सबब
1: ये आपको
0: लिखकर आपको हमें भेजना है 5599 पर. अब जैसे कि नाज, आई थिंक आपने हाईचेल और नाज ही लिखा है, सबब आपका नहीं आया है. और धीर, आपने तो शायद अपना क्या बोलते हैं पोस्ट कोड लिख कर भेज दिया है.
1: अच्छा, आई डोंट नो.
0: हाँ,
1: काफी मैसेजेस आ रहे हैं ना.
0: यस, तो HL अपना नाम और अपना सबब ये 5599 पर भेजे. जब तक
1: ये थ्रोबैक का गाना प्ले हो रहा है तब तक, यानी 5 मिनटों का ये गाना और 5 मिनटों का ही टाइम आपको मिलेगा.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: धीरे धीरे वी कैन से कि द फील ऑफ समर इज फाइनली हियर, क्योंकि आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड हो सकता है लेटर टुडे इज अराउंड 20 डिग्रीज. आज भी मौसम के लिए कहा गया इट्स गोइंग टू बी अ फाइन ब्यूटीफुल डे. ओवरनाइट टेम्परेचर 10 डिग्रीज रहेगा. करंट टेम्परेचर इज 14 डिग्रीज.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates. Barristers and Solicitors. Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
3: आज ट्रेंड पेट्रोल में हम बातें करेंगे खाने के बारे में.
1: अच्छा, क्या ट्रेंड कर रहा है?
3: ट्रेंड कर रहा है, आई डोंट नो, ये जो डिशेस हैं इनके बारे में मैं जब आपको बताऊंगा तो आप खुद सोचेंगे. स्विस प्रेसिडेंट जो है ये इंडिया के टूर पर गए थे.
1: ओके.
3: और जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने लंच पर होस्ट किया उनको. और कुछ चीजें जो है ये सिर्फ की गई स्विस प्रेसिडेंट और द फर्स्ट लेडी को. जिन चीजों का मैं नाम ले पा रहा हूँ उन चीजों के बारे में मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले तो जो उनको दिया गया वो लंच पर, वो मैं नहीं बता सकता आपको.
1: अच्छा, क्योंकि बोल नहीं पाएंगे.
3: हाँ, वो बहुत हार्ड नाम लग रहा है.
1: ओके.
3: एक स्विस पर्ल बाली सूप है, उसको एक इंडियन टच दिया गया था इन ओडिशा इंस्पायर्ड टेमरी और टेमरिन और जैगरी इन्फ्यूजन के साथ. तो वो मुझसे नहीं हो पाएगा. दूसरी चीज जो है फारुकाबादी आलू कम रेकलेट.
1: क्या?
3: फारुकाबादी आलू कम रेकलेट.
1: ओके.
3: ये लंच में सेव किया गया उनको. फायर रोस्टेड स्किन ऑन पोटैटोज विद स्विस रेकलेट चीज, कोरिएंडर चटनी एंड चाट मसाला.
1: क्या है?
3: खुले ओपन फायर पर.
1: हाँ?
3: आलू जो है.
1: हाँ?
3: उसको रोस्ट किया गया.
1: आलू की टिक्की?
3: नहीं नहीं, फुल पोटैटो विद स्किन ऑन.
1: ओके.
3: उसे रोस्ट किया गया. और एक स्विस चीज साथ में धनिया की चटनी और चाट मसाला के साथ इसको सर्व किया गया.
1: वेरी नाइस.
3: और इसका नाम बना फारुकाबादी आलू कम रेकलेट.
1: क्या बात है भाई.
3: और फिर और जो चीजें जो है, काफी चीजें थी, कुछ कुछ चीजों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ. गोभी मुसल्लम.
1: गोभी मुसल्लम.
3: हाँ,
1: वेरी नाइस.
3: एक पूरा का पूरा फूल गोभी जो है.
1: हाँ?
3: इसे रोस्ट किया गया. और सर्व किया गया कैशू और टोमेटो ग्रेवी के साथ, सेंटेड विद मुगलाई स्पाइसेस.
1: वेरी नाइस.
3: हाँ, फिर बेसनी लौकी लच्छा.
1: बेसनी लौकी लच्छा.
3: हाँ, लौकी का जो छिलका होता है इसको निकाला गया. और जो टोस्टेड चिक पीस फ्लावर है और स्पाइसेस के साथ इस ये लच्छा तैयार किया गया.
1: यू नो, इंडिया इज वेरी अमेजिंग व्हेन इट कम्स टू वीगन एंड वेजिटेरियन फूड. इतने ऑप्शंस और इतनी क्रिएटिविटी कि आप भी खुद हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी कुछ इसका बन सकता है. एंड आई मस्ट से वेरी इम्प्रेसिव वे ऑफ प्रेजेंटिंग दीज वेजिटेबल्स जो स्विस प्रेसिडेंट जो इनके लिए ना.
3: हाँ.
1: तो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका रहा इनका इसको प्रेजेंट करने का. एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लिस्ट ऑल्सो ऑफ डिशेज जो उनको सर्व किया गया. आई मस्ट से
3: तिखट दाल.
1: तिखट दाल.
3: हाँ.
1: मतलब तीखी दाल. नहीं
3: पता नहीं मैंने कहा.
1: तो आई थिंक मराठी में ही बोलते ना, तीखी तीखी चीजों को तिखट बोलते हैं.
3: ओके, तो महाराष्ट्र फ्लेवर जो है ये आया था उसमें.
1: आई जस्ट थिंक, आई एम नॉट 100%.
3: इसके अलावा पनीर सोचिया.
1: ओके.
3: ये भी उनको सेव किया गया.
1: पनीर सोचिया. पनीर खा के सोच रहे थे लगता है वो. एनीवेज, तो दीज आर सम ट्रेंडिंग डिशेस.
3: सबसे इम्पोर्टेंट मसाला चाय आइसक्रीम.
1: चाय और आइसक्रीम का कॉम्बिनेशन? ना, आई डोंट थिंक सो. मसाला चाय फ्लेवर्ड आइसक्रीम. आई डोंट नो. आई हैव माय डाउट्स ऑन दिस. एनीवेज, 7 मिनट हो रहे हैं 8 बजकर. फिलहाल ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा किसी का मैसेज आया, उन्होंने कहा है एंजॉय लिसनिंग टू योर प्रोग्राम 1214. थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. अनफॉर्चुनेटली आपका नाम नहीं है, दैट्स व्हाई वी कांट डू अ शाउट आउट लाइक अच्छे तरीके से. बट लास्ट 4 डिजिट्स आपके. थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए एक बार फिर. फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हुए इस घंटे याद दिला रहे हैं आपको. थोड़ी देर बाद बातें करेंगे, आज थर्सडे है तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु किंडोला के साथ. और आज का वर्ड से टॉपिक ये भी आपके लिए लेकर आएंगे इन अ वाइल.

0: and Pooja.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: Kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
3: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
4: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudhima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor Weekend, 24th and 25th October. Limited tickets available at just $89 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12, half price. Under 5s, free. Book now at sudhimahotels.com/foodfestival.
5: डिब्बा खुल गया
6: भरत भाई टिफिन खुल गए छे
7: संजना का डिब्बा खुल गया
8: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा फिर यही तो होगा
7: डिब्बा खुल गया
8: हल्दी मिर्ची गरम मसाला कशिश मसाले अच्छे वाले बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
9: Flight Centre's UK and Europe sale is on now. Fly return to Europe from Auckland from $2,571 with Lufthansa Group. Book in store or online. Fees, T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
10: Shop fresh deals at New World North Island this week. Get skinless chicken thigh cutlets, $11.99 per kilo. Or avocado, $2 for $2.50. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates. Barristers and Solicitors. Papatoy and Hamilton.
12: What's your take?
13: चलिए द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा पर आपके लिए आज का हमारा व्हाट्स योर टेक हम लेकर आ रहे हैं और आज का व्हाट्स योर टेक टॉपिक आज आपको सुनाते हैं।
14: आई डोंट नो आप में से कितने लोग जो हैं सामने आकर इस चीज के बारे में बातें करेंगे क्योंकि ये हमारी निजी जिंदगी से संबंधित होता है बट हम अपना आपको अपना निजी जिंदगी जो है ये शेयर करने को नहीं कहेंगे जनरल एक्सपीरियंस जो है यही आप बता सकते हैं एक लिस्ट तैयार की गई है ऑफ सम थिंग्स जो कपल्स करना बंद कर देते हैं जब वो कहते हैं कि जेन्युइनली एक दूसरे के साथ खुश होते हैं शायद शुरू शुरू में या फिर जब इनिशियल पीरियड होता है किसी एक रिश्ते का तब वो करते हैं या कुछ समय तक करते हैं लेकिन जब दैट कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई हमारा रिश्ता टिकने वाला है मजबूत है भरोसा है प्यार है सब कुछ है तो कुछ चीज़ें हैं जो करना बंद कर देते हैं
13: तो आपको नेचुरली कौन सी चीज़ें
14: हैं नहीं
13: आप बताएंगे
14: मैं कुछ चीजें बताऊंगा okay. आप भी कुछ चीजें बता सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो अपने रिश्ते में शायद आप पहले करते थे लेकिन अब नहीं होता लेकिन यू आर स्टिल हैप्पी आपको पता है कि वो चीजें हैं अपनी जगह पर
13: सो इवन इफ इट डजंट हैपन दोस थिंग्स जो पहले शायद होती थी बिफोर योर कमिटमेंट इन रिलेशनशिप और मैरिज तो उसके ना होने के बावजूद भी यू नो कि रिश्ते में प्यार है ट्रस्ट है यू नो दैट थिंग इज स्टिल देयर
14: हां वो सारी चीजें
13: स्टिल देयर
14: हां वो चीजें अभी भी हैं हालांकि अब एक तरीके से आप उसको नहीं कर रहे। तो एक चीज जो लिस्ट में आई है वो है कि कपल्स स्टॉप ट्राइंग टू विन एवरी आर्गुमेंट।
13: एवरी आर्गुमेंट,
14: हाँ
13: ओके,
14: यू नो, चाहे वो पैसों के बारे में हो, फैमिली के बारे में हो, कुछ भी हो, तो हर एक आर्गुमेंट को जीतना जीतने की कोशिश करना बंद कर देते हैं।
13: दे लाइक हैव अ कन्वर्सेशन, अगर आर्गुमेंट में बदल भी रहा तो ओके या फाइन फाइन करके एंड दे मूव ऑन।
14: हाँ
13: ओके।
14: दूसरी चीज जो करना बंद कर देते हैं, दे स्टॉप कॉन्स्टेंटली चेकिंग वेदर द अदर पर्सन स्टिल केयर्स।
13: इंटरेस्टिंग,
14: क्योंकि वो जेन्युइनली हैप्पी है।
13: ओके।
14: और वो नहीं चेक करते हैं कि क्या वो अभी भी आपके लिए केयर करते हैं या नहीं।
13: Because they know कि वो केयर करते हैं, but it might not be shown or expressed more in actions.
14: They stop performing the relationship for other people.
13: Is it?
14: जैसे कि not every dinner needs to become a photo.
13: अच्छा वैसे।
14: Not every anniversary needs a long caption.
13: Okay.
14: Not every disagreement needs to be discussed with friends.
13: Ah, interesting.
14: समझ गया ना?
13: हाँ, कि अपनी बातें दूसरों के साथ शेयर करना, सोशल मीडिया पर अपडेट्स डालना, हर जगह पर जाते हुए एक पोस्ट करते हुए फोटो लेना, that you are a loving couple, people stop doing that.
14: हाँ, झगड़ा हो तो अप्रोच करना, किसी और को बताना कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर they stop keeping scores. किसने पहले टेक्स्ट किया, किसने लास्ट टाइम डेट जो है ये प्लान किया,
13: किसने सॉरी बोला,
14: हाँ वो सारी चीजें जो है दे कीप स्टॉप कीपिंग स्कोर्स।
13: ओके।
14: और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, दे स्टॉप बीइंग अफ्रेड ऑफ हैविंग ऑर्डिनरी डेज। ऑर्डिनरी डेज, इसका मतलब ये होता है, ये दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस। पहले क्या होता था कि हर एक मीटिंग जो है, हर एक टाइम जो है साथ में बहुत ही स्पेशल होना जरूरी होता था।
13: राइट।
14: There has to be a plan, a conversation, a date, और कुछ ऐसा जो याद रह जाए। लेकिन समय के साथ naturally वो प्यार अपनी जगह आ जाता है और ये चीजें बंद हो जाती हैं।
13: Interesting.
14: तो ये कुछ चीजें हैं। और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जैसे जैसे रिश्ता मजबूत होता है, आपको लगता है एक कपल का, वो naturally फेड आउट हो जाती है, और लेकिन वो प्यार, वो रिश्ता, वो उसी तरह से कायम रहता है।
13: ओके।
14: या फिर इनमें से कोई एक चीज है जो आपने नोटिस किया है कि हाँ ये तो हम पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते।
13: I don't know if this could be something जो इसमें फिट बैठेगा या नहीं, but I feel like बाहर जाना, डेट्स पर जाना, घूमना फिरना एक साथ, like they don't do that much as couples, like together, बाहर जाना, you know, घूमना, shopping पे जाना एक दूसरे के साथ, या फिर date पर जाना,
14: it could come under that just having ordinary days.
13: हाँ तो अच्छा वैसा।
14: हाँ
13: okay, हाँ तो ये I feel like couples कम कर देते हैं, and they give each other more space, like if they don't wanna go with each other, लेकिन अपने दोस्तों के साथ जाना चाहते, किसी और के साथ जाना चाहते, like relatives के साथ, बच्चों के साथ, so they do that without their partner.
14: Okay.
13: That's what I feel.
14: तो बताइए अब आप हमें कि क्या आप इनमें से कोई एक चीज जो है आपने करना बंद कर दिया है, या और कौन कौन सी चीजें हैं जो इस लिस्ट में शामिल हो सकती हैं?
13: Interesting. I don't know how many of you have something to say about this, पर अगर आपके पास कुछ भी चीज है शेयर करने के लिए तो आप हमारे पास अभी 0800 004866 पर कॉल कर सकते हैं, और अगर चाहे तो 5599 पर टेक्स्ट कर सकते हैं। If you don't wanna come live on and talk about it, आप टेक्स्ट करते हुए भी हमें एक्सप्रेस कर सकते हैं कि अच्छा ये मेरा थॉट है, आई फील लाइक ये चीज है जो कपल जो है करना बंद कर देते हैं। दे माइट बी जेन्युइनली हैप्पी इन अ रिलेशनशिप, लेकिन दे डोंट डू दीस थिंग्स टू प्रूव इट कि यस वी आर हैप्पी।
14: और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो समय के साथ बंद हो जाती है, दैट यू एक्चुअली मिस, आपको लगता है कि यार ये क्यों नहीं कर रहा या कर रही है ऐसा।
13: ओके। तो वो भी आप बता सकते हैं। एक मैसेज आया है। ओके, एक मैसेज आया है, इन्होंने कहा गुड मॉर्निंग, चेकिंग ईच अदर्स बैंक अकाउंट।
14: अच्छा,
13: ये करना बंद कर देते हैं। ओके, ओह शुड यू सेड, आई मीन यू शुड हैव सेड चेकिंग ईच अदर्स फोन्स। ये नॉर्मली लोग करते हैं ना रिलेशनशिप में, बट व्हेन दैट इट्स नॉट द वर्ड ट्रस्ट, इट्स लाइक दैट बिलीफ इज देयर कि हाँ रिलेशनशिप अच्छा है, इट डजंट नीड एनी चेकिंग और एनीथिंग, एंड यू डोंट, यू आर नॉट बोदर्ड। तो वो एक चीज हो सकती है।
14: तो आओ 800-00 हम आओ 800-004-866 हमारा नंबर है। और समय थर्सडे हमने कहा है कि गुरु से भी हमारी बातें इसी घंटे होनी है, तो इट विल बी गुड। मैंने पहले ही कहा था कि आई डोंट नो आप में से कितने लोग होंगे
13: जो शेयर करेंगे,
14: जो सामने आकर शेयर करेंगे, लेकिन क्या है उसमें, जो चीजें होती हैं वो होती है नेचुरली लाइफ में, सभी को पता है।
13: बट इट्स मोर लाइक अ पर्सनल चीज हो जाती है, बिकॉज़ रिलेशनशिप के हिसाब से वो होता है ना कि अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करते हैं, दे आर टेलिंग अबाउट द फैक्ट कि देयर रिलेशनशिप इज लाइक।
14: तो ऐसे और कौन कौन सी चीजें हैं जो इस लिस्ट में जुड़ सकती है
13: जेनेरिक तरीके से, है ना, जनरली आप बता सकते हैं
14: जेनेरिक। हाँ आप बता सकते हैं, जैसे इन्होंने बताया है कि एक दूसरे का बैंक अकाउंट चेक करना,
13: राइट,
14: ये बंद कर देते हैं। आपने कहा फोन्स, वो बंद कर देते हैं एक दूसरे का चेक करना, शायद शुरू में पहले फोन्स जो है चेक करते थे।
13: इट इज नॉट गुड बट आई यूज्ड टू डू इट। नहीं आई मीन इट्स समथिंग दैट पीपल डू, आई मीन इट इज मोर लाइक अ टॉक्सिक थिंग जो लोग रिलेशनशिप के मामले में बोलते हैं। आई डोंट हैव अ हैबिट, आई हैड अ हैबिट कि ऐसे हो जाता था, ऐसा नहीं कि आई हैड सम डाउट्स, बट आई वुड गो एंड चेक लाइक यू नो क्या अपडेट है, क्या चल क्या रहा है इनकी लाइफ में अपार्ट फ्रॉम यू नो द रिलेशनशिप। तो इंटरेस्टिंग होता था मेरे मेरे लिए, नहीं एक्चुअली इंटरटेनिंग बोरिंग होता था क्योंकि ज़्यादा कुछ मिलता नहीं था ना। अच्छा उर्मिला जी ने एक मैसेज किया है, इन्होंने कहा गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, चेकिंग ऑन वेयर अबाउट्स शोइंग ऑफ योर रिलेशनशिप इन पब्लिक और इन फ्रंट ऑफ फैमिली। That we have already mentioned.
14: Exactly. Yeah. This is one of the most important things. कि check out, check करना कि आप कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ पहुँचे,
13: राइट,
14: इतनी देर हो गई, आई क्यों नहीं, इतने बजे बोला था, 5 मिनट देर हो गई।
13: किसी और ने मैसेज किया है, all applies to me in adding buying gifts for all occasions. Yes, this is another thing. Yes.
14: क्या?
13: People stop buying gifts हर एक occasion के लिए, birthday हो, anniversary हो, you know normally ये सब नहीं होता। कई लोग तो हर एक चीज, I mean birthdays are different, but शायद anniversaries भी इतना grand तरीके से celebrate नहीं करते हैं ना। वही चीज, दिस इज अ गुड वन इन फैक्ट, या बाइंग गिफ्ट्स फॉर ईच अदर फॉर एवरी ओकेजन, दैट समथिंग दैट इवन यू नो पीपल स्टॉप डूइंग।
14: आप कॉल करके भी बता सके तो और अच्छा लगेगा, ऐसे कन्वर्सेशन में मजा नहीं आ रहा मेरे को।
13: आई नो बट दे आर सेंडिंग सम रियल गुड आंसर्स। एक और एक मैसेज आया है, इन्होंने लिखा व्हाट टाइम दे कम होम आफ्टर कावा और कॉलिंग एंड चेकिंग व्हाट टाइम दे आर कमिंग आफ्टर कावा।
14: ये तो नहीं खत्म होगा भाई।
13: नहीं नहीं, आई कैन रिलेट टू दिस,
14: आई कैन रिलेट दैट, रिलेटेड टू, वो नहीं खत्म होगा।
13: इंटरेस्टिंग है, मेरा तो घर से निकलने से पहले शुरू हो जाता है, व्हाट टाइम यू कमिंग बैक।
14: मेरा जवाब वही होता है कि भाई पहले
13: जाने तो दो
14: जाने तो दो, फिर वापस आऊंगा।
13: या दैट्स राइट, बट इट्स मोर लाइक अ थिंग कि
14: क्या,
13: हाँ बट आफ्टर दैट कमिटमेंट इज देयर, दैट बिलीफ इज देयर इन द रिलेशनशिप, इट्स मोर लाइक ऑन द नोट कि हंसी मजाक में निकल जाती वो चीज़ें। इट्स नॉट ऑन अ सीरियस थिंग यू नो कि कहाँ हो, कब आओगे, वो सब चीज़ नहीं, बट ऐसे हंसी मजाक में निकल जाती है।
14: स्टॉप शेयरिंग लोकेशन
13: व्हिच इज गुड, ये इन्होंने कहा।
14: ओके
13: ओके इंटरेस्टिंग। तो मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स नहीं आ रहे हैं। आप ऐसा कीजिए, सम वेरी इंटरेस्टिंग मैसेजेस आप भेज रहे हैं हमारे पास, अगर आप और मैसेजेस सेंड करना चाहें। आई हैव नोटिस्ड वन थिंग, नन ऑफ द मैसेजेस अपार्ट फ्रॉम उर्मिला जी हैव रिटन देयर नेम, नंबर्स आए हैं पर नाम नहीं आए हैं, विच इज परफेक्टली फाइन विद अस। सो इफ यू वांट टू डू द सेम, अगर आप भी अपना आइडेंटिटी रिवील किए बिना अपने मैसेजेस सेंड करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। हम आपको दे रहे हैं मौका अगला गाना जब तक प्ले हो रहा है। सो इफ वी गेट सम मोर मैसेजेस आफ्टर द बॉलीवुड मोस्ट वांटेड सॉन्ग, हम उसके बाद जाकर एक बार फिर से जो है ये चेक करेंगे और मैसेजेस आपके जरूर शेयर करेंगे ऑन एयर। पर अगर नहीं आते, विल जस्ट मूव ऑन टू चार्ट बस्टर, ठीक है। सो 5599 पर आप अपने मैसेजेस हमें भेज सकते हैं।
12: Bollywood's most wanted.
15: Gundi khad jao. Ya seedha andar aao.
16: Main laun apna A game.
12: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: तो आज चार्ट बस्टर में आपके लिए ऑस्कर विनिंग गाना हम लेकर आ रहे थे, नाचो नाचो फ्रॉम विच वॉज बेसिकली ऑस्कर विनिंग मिला था नाटू नाटू को ओरिजिनल जो है, तो आर आर आर फिल्म से इस गाने को हम शामिल कर रहे थे आपके लिए.
1: ओके वेरी नाइस, देखा मैंने ये गाना.
0: चार्ट बस्टर, यू कैन यू डू द मूव्स?
1: Yeah, of course not.
0: In your dreams. Yes, you can do it, but in your dreams. Anyways, एक और एक शख्स है जिस पर मुझे पूरा भरोसा है कि ये moves कर सकते हैं. गुरु, आपने देखा ये गाना नाटू नाटू वाला RRR का?
2: देखा देखा पूजा जी, बिल्कुल देखा.
0: मुझे पूरा भरोसा है आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास तो आपका खुद का Oscar है ना. इनको तो पहले से मिल गया
1: है. I'm trying to picture Guru doing the Natu Natu move.
0: It would be very nice, यार. अच्छा लगेगा सच में. तो गुरु, जिस मामले में आप एक्सपर्ट हैं,
2: कभी पार्टी में बुलाओ, फिर आपको
0: इनको सुन लो. पहले हमें तो मिल जाए, फिर आपको बुलाएंगे हम. But on the other hand, इस मामले में एक्सपर्ट नहीं होंगे शायद, no doubt, dancing wise. But there is something that he is an expert in. When it comes to finances, और आपके लिए आपका पहला घर जो हो उसका लोन कराना हो, आपका यू नो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसके लिए लोन आप चाहिए आपको, या फिर चलो आज बातें करते हैं एक सिचुएशन के बारे में. सपोजिटली कि आपके पास एक ऐसा सिचुएशन है where you need a lot of cash or money and you need it instantly. आपको कहीं ट्रेवल करना है, enough पैसे नहीं है, and you're thinking like कि भाई क्या करे कैसे करे. तो अगर पर्सनल लोन चाहिए, इंस्टेंटली चाहिए, उसका क्या प्रोसेस होगा गुरु, दैट यू कैन हेल्प आउट विद?
2: बिल्कुल पूजा, इंस्टेंटली वाली सिचुएशन बहुत बारी आ जाती हैं, एंड देन आई हैव टू गो थ्रू दोज सिचुएशंस जहां पे क्लाइंट्स को सडनली फ्लाई करना है फॉर सम फैमिली रीजंस ओवरसीज, और एकदम से उनको दे नीड लाइक यू नो $5,000-$10,000. नाउ In saying that, that becomes like a personal loan jo we process as a personal loan, the application. So, uske liye, it is a quite fast process as long as aapka credit sahi hai and you getting the income, aapki salary aa rahi hai, loans aapke kafi, agar bahut jyada loans chal rahe hain fir to dekho trouble aa jayega, lekin agar jyada loan nahi hai but you just need an instant funds ki aapko ye wala paisa bhi chahiye, so then their application can be processed within 1 hour to 2 hours, and you will get the money within 3 to 4 hours into your bank account as well, as long as the process is all clean ki aap job kar rahe ho, aapka credit sahi hai, so that we can pick up that information very quickly from you as well, and then we just submit it to the lender and get the approval ASAP. So we have gone through this processes jahan pe humne funds got available करवा दिए clients को within couple of hours.
0: Right.
2: But then there are sometimes as well जहाँ पे अब आपके already loans काफी चल रहे हैं, and then basically now you want to borrow more money. Now in that case the servicing sometimes become an issue as well, कि आप कहीं एक जगह पे loan इतना interest दे रहे हो उसकी term छोटी रह गई है, दूसरी जगह आप कहीं interest कम दे रहे हो उसकी term थोड़ी बड़ी है, मतलब term का मतलब है कि आपका जो लोन आपने 2 साल में पूरा पे करना है या 5 साल में पे करना है या 7 इयर्स में पे करना है, सो देयर इज अ डिफरेंट टर्म्स, सो डिफरेंट टर्म्स का डिफरेंट आपका पेमेंट्स होगा. तो उससे क्या होता है कि जब वो सर्विसिंग टाइट हो जाती है, सो समटाइम्स देन व्हाट वी ट्राई टू डू इज की ओके टॉकिंग टू द क्लाइंट कि ये सबको हम एक साथ ही कर देते हैं, वी जस्ट पुट इट इनटू ऑल इनटू वन जो हम अब आपको लोन देने लगे हैं उसमें कर देते हैं, और वी विल जस्ट add extra that 5-10,000 jo you need it for now as well. So usko jab combine karenge to sabki jo servicing hai, we try to make it work ki it can jo request hai unki wo puri ho sake, but we will just let the client know ki ho sakta hai ki jo aapka 2 saal wala loan tha jo abhi ab kahin se aapka 2 saal mein bacha hua tha, but now we might gonna put it back to 5 years.
0: Right.
2: That means yes, the term badh gaya hai, so term badhne ka matlab hai ki eventually you will pay a little bit extra interest as well, because jo pehle aapne 2 saal mein pay karne tha ab aap wo 5 saal mein pay karoge. But again these are the discussions when we're going to have it with the clients and understand ki ye situation aapke liye baithega sahi hoga ki nahi hoga, and then you know we go from there. Usme ho sakta hai ki within couple of days lag jaye to get that money, but lekin if everything is clean money can be available within 2 to 3 hours into the bank account.
0: Oh wow, तो चलिए, इतना आसान ये सुनने में लग रहा है, आपके लिए प्रैक्टिकली भी हो सकता है, बट यू हैव टू गेट इन टच विद गुरु फॉर दैट. अगर आप भी इंस्टेंटली पर्सनल लोन जो है ये अप्लाई करना चाहते हैं तो, एंड यू कैन डिस्कस योर केस, केस टू केस सिनारियो जो है आपके लिए कितना डिफर करेगा ये भी आप पता कर सकते हैं. एंड टू डू ऑल दैट गुरु, कैसे लोग आपसे बातें कर सकते हैं, हाउ कैन दे गेट इन टच विद यू?
2: सिंपल लॉजिक लगाना है पूजा, लॉजिक फाइनेंस आप सर्च करोगे सो यू विल गेट माय डिटेल्स फ्रॉम आदर गूगल और फ्रॉम द फेसबुक, आपको वहां पे डिटेल्स मिल जाएगा. यू कैन आल्सो रीड माय रिव्यूज देयर. फोन नंबर इज 0800 नंबर व्हिच इज अ फ्री नंबर व्हिच इज 0800 लॉजिक जी. आप 0800 लॉजिक जी जब टाइप करते हो इट कम्स टू मी व्हिच इज 0800 564 424 0800 564 424 इज द नंबर टू गेट इन टच विद मी.
0: Okay, thank you so much Guru for all that information and for your time as well. अब आपसे हम next week Thursday को और कुछ जरूरी बातों पर चर्चा जरूर करेंगे.
2: Thank you.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: चुप हो जाओ पापियों, चुप हो जाओ.
5: Accurate traffic.
6: Leaf motor electric vehicles are unignorable.
7: A bit of cloud should stay mostly fine today. 21 hour high into the city. The northwestern motorway 25 minutes in from Massey, where fine to Pātaki, slow on and off from there. Heavy through Point Chev. Southern 40 minutes Manukau to town. Slow at Manurewa, then all the way from Motahu. Heavy on and off. Southwestern slow northbound at Whitty. The northern 25 in from Constellation. Heavy there. Slow patches to the bridge.
6: Buy a Leaf motor this month. Pay nothing until 2027 with $2,000 off your finance. Terms apply.
8: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
9: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Swimming pool heat pumps under $2,000. Outdoor four-piece resin lounge set just $299. Outdoor gazebos just $99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
10: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
11: Save big at Rebel and get the kids sorted for back to school. Grab a huge range of kids' running shoes for just $69. Get 20% off selected bags and bottles. Plus, score an extra 20% off all clearance. Back to school value is on now. Only at Rebel Sport. See you online for T's and C's.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price, perfect for your home. Harrington Living Manukau.
3: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
13: Let's go.
3: Straight from the heart.
14: Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा पर फिलहाल देखा जाए तो 18 मिनट बाकी है समय हमारे स्टूडियोज में 9 बजने में. ठीक 9 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट जो है ये आपके लिए रहेगा,
1: तो इसकी खातिर आपको तैयार ही रहना है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक रिपोर्ट जो है ये मैं पढ़ रहा था, इट्स अबाउट गुजरात. गुजरात में कोई जगह है, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर्स जो है उन्होंने एक सांप को रेस्क्यू किया है.
0: ओके,
1: ये एक नॉन वेनमस, जहरीला नहीं था, लेकिन ये वुल्फ स्नेक है. और ये ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मलेस होते हैं. लेकिन द जो सरप्राइजिंग एलिमेंट था इस डिस्कवरी में, ये छोटा सा है कि ये एक सांप था, लेकिन इसके दो सिर थे.
0: Oh.
1: हाँ.
0: Oh, okay.
1: Two-headed snake. उसकी फोटो जो है ये भी शेयर की गई and it looks.
0: Very interesting. Very, very interesting. Anyways, अच्छा अगले घंटे टॉप ऑफ द आवर आपके लिए लेकर आने वाले हैं क्या बकते हो. और आज की क्या बकते हो स्टोरी इज वेरी नाइस, फनी एंड इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम.

0: Disco ho ya rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum, accurate traffic.
2: Fragrance and cosmetics clearance sale.
3: A bit of cloud should stay mostly fine today, 21 hour high. Into the city, the northwestern motorway 25 minutes in from Massey, where fine to Pātiki, slow on and off from there, heavy three-point Chev. Southern, 40 minutes Manukau to town, slow at Manurewa, then all the way from Wātahu, heavy on and off. Southwestern, slow northbound at Whitty. The northern 25 and from Constellation, heavy there, slow patches to the bridge.
2: Clearance sale this Saturday. Sacred Heart College, Glen Dowie, from 9 a.m. while stocks last.
4: 3, 2, 1, rush!
5: Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewards rush.
6: I love my job. It's hard, but I love it.
7: The problem is, prices go up, but the pay doesn't match.
8: So, if our nurses and tradies aren't staying, why would I?
9: I'm 27 and still renting. I just want a place of my own.
10: Every day I see families give up before they've even started.
11: 60 years in Aotearoa, and I never worried about it until now.
12: I just want my grandchildren to grow up here.
13: Party vote Labour.
14: Party vote Labour.
12: Party vote Labour.
15: Better starts now.
16: Authorised by Rob Salmond, 2 Gilmer Terrace, Wellington.
17: Bunnings are driving great value on auto essentials with BarsBugs 1 litre windscreen cleaner concentrate only $10, or Armour 1 litre car wash just $7.98. Head in store or online for even more great value. Bunnings Warehouse.
18: Now, when you're in the loop with ANZ and jump on a bus, money loops back. Get 50% cash back on Wednesdays and weekends in October when you tag on and off AT buses with a personal ANZ Visa card. Eligibility terms and conditions, fees and exclusions apply.
19: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
20: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
19: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
21: 10 मिनट बाकी हैं समय हमारे स्टूडियोज में 9 बजने में. अगले घंटे याद रहे आपके लिए लेकर आने वाले हैं आज का क्या बकते हो. बट बिफोर वी डू दैट, एक बहुत ज़रूरी रिमाइंडर आपको याद दिला दें कि इस साल यानी 2026 के जनरल इलेक्शंस में वोट करने के लिए यू नीड टू बी एनरोल्ड बाय मिडनाइट 13 डेज बिफोर इलेक्शन डे. इसका मतलब ये होगा कि अगर आपको इस साल के जनरल इलेक्शंस में वोट करना है, यू कांट एनरोल या यू कांट अपडेट योर डिटेल्स ऑल्सो आफ्टर मिडनाइट 25th ऑफ अक्टूबर.
22: और 25th ऑफ अक्टूबर से पहले आप कर ले तो अच्छा होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड में अगर देखें इलेक्शन जो है ये सैटरडे 7th ऑफ नवंबर को होने को है ना.
21: या 7th ऑफ नवंबर, विच मींस 25th ऑफ अक्टूबर इज द डेडलाइन जहां पर यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ एंड अपने डिटेल्स अपडेट करने हैं अगर आपको इस साल वोट करना है तो. एंड ऑन द अदर हैंड ये भी आपको याद दिला दें कि ड्राइव शो में इलेक्शन स्पेशल आपके लिए लेकर आते हैं सैंडी एंड रूजवे. एंड दिस टाइम अराउंड दे आर पुटिंग इन स्पॉटलाइट टू लेबर्स तकनीनी कैंडिडेट खड़ग सिंह, और वो उनके साथ बिजनेस के बारे में कुछ बातें करेंगे. कॉस्ट ऑफ लिविंग, सुपरमार्केट कंपटीशन, रिटेल क्राइम, पुलिसिंग, ट्रैफिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों पर चर्चा होगी. एंड दे विल आल्सो टॉक अबाउट लेटेस्ट डिबेट्स बिटवीन क्रिस हिपकिंस एंड क्रिस्टोफर लक्सन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड करंटली. आपने देखी है डिबेट जो उनके बीच हुआ था?
22: आई
21: थिंक दिस वाज द फर्स्ट वन फॉर दिस ईयर ना. तो इसके बारे में काफी बातें हुई हैं. एंड सैंडी एंड्रूज भी आर आल्सो गोना हैव अ कन्वर्सेशन इन रिगार्ड्स विद द सेम जो होने वाला है इनके इलेक्शन स्पेशल के तहत, और ये रहेगा आज ड्राइव शो में. तो जरूर चेकआउट कीजिएगा बिकॉज इलेक्शन स्पेशल्स भी ये आपके लिए लेकर आ रहे हैं ऑन द ड्राइव शो, और ये एवरी थर्सडेज को आपके लिए रहता है. बाय द वे फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून, इसके तहत आपके पास मौका है जीतने का.
22: अभी टोटल ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस

0: हैं जो आप जीत सकते हैं, और आज आपको हम अपॉर्चुनिटी एक और देंगे अभी से 10 बजे के बीच, $1,000 वर्थ ऑफ माइटा 10 वाउचर्स, ये आप में से किसी एक को ही मिलेगा।
1: अच्छा,
0: ओनली वन पर्सन विल टेक ऑल द वाउचर्स एंड गो टू माइटा 10 एंड जो अपनी शॉपिंग है ये आप कर सकेंगे ऑल थैंक्स टू NZPMI। तो अगले घंटे ये अपॉर्चुनिटी हम आपको देंगे।
1: राइट, तो आप भी हमारे पास अपने मैसेजेस सेंड करते हुए इसमें जरूर पार्ट ले सकते हैं। एडवांस में हमने बता दिया है क्या जीतने का मौका है और कब जीतने का मौका है, जिसके लिए यू हैव टू बी विद अस। फिलहाल आज का इस घंटे का थ्रोबैक, लेट्स एंजॉय अ वेरी इंटरेस्टिंग फन सॉन्ग, बॉब लाइजा, मीका सिंह, डोमिनिक रेजो और स्टाइल भाई की आवाज में दे दना दन। ये आई थी 2009 में, देखिए आपने
0: या

0: Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
1: Hum, accurate traffic.
2: Everything for gardens, lawns and landscaping at Dalton's Landscape Supplies.
3: High of 21 today, fine enough with just patchy cloud into the city. Northern Motorway easing, 23 minutes Constellation Drive to town. Slow there to Sunny Nook and Waito Valley to the bridge. Southern, 36 minutes in from Manukau, 44 from Drury. Slow from East Tāmaki, heavy on and off from there. Northwestern, 21 minutes in from Massey. Slow from Point Chef to the city. Southwestern, slow northbound through Whitty. Fine the other way.
2: Easy ordering or pick up. Daltonslandscapes.co.nz.
4: India Araha hai Auckland and the Blue Tigers need your voice behind them. Dekhiye India ko All Whites ki against Go Media Stadium Thursday 12th November ko. Ek rare chance apni national team ko New Zealand ki zameen par live dekhne ka. Bring the family, wear your colours and fill the stadium with pride. Adult tickets sirf $20 se shuru, kids $10 se plus booking fees. Book now at Ticketek and be there for a historic night.
5: Don't sleep on Briscoe's one-day sale on now with huge one-day 60% off deals plus huge one-day store-wide savings. Stores open late. Briscoe's one-day sale today only. See online for TCs and store hours.
6: Thinking of switching lanes? How about insurers? Switching to Tower is easy. Plus, get $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code EASYSAVE. T's and C's apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
7: A message for all parents. Kids age 12 and under can now ride their bikes on footpaths, and parents or caregivers can ride with them. Remember to look out for children on bikes when driving in and out of driveways. Learn more at nzta.govt.nz.
8: My Titan Mega Henderson up weekdays pe subah 6 baje se khula hai. Building supplies, timber, power tools or trade essentials, sab kuch site pe jaane se pehle hi utha lo. Get in, get sorted and get the job done earlier. Open from 6 a.m. My Titan Mega Henderson.
9: Hi, I'm Murray Harris, Head of KiwiSaver at Milford. We're delighted to have just won Canstar's KiwiSaver Provider of the Year and Outstanding Value KiwiSaver Scheme Awards for a record 7th year in a row. Canstar recognised us not just for our long-term returns, but also for the support and confidence our members say we provide. And that's another really good reason to choose Milford.
10: Past performance is not a reliable indicator of future performance. Milford Funds Limited is the issuer of the Milford KiwiSaver Plan. Please read the product disclosure statement at milfordasset.com.
0: Time check.
11: Brought to you by Maan Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tyres on 0800 00 00 10.
12: Good morning, Norbert Chuke here. Time for news and sports update.
0: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
13: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. A police scene guard remains outside a house fire on Coromandel Peninsula. An occupant of the Whare Kahol property alerted emergency crews just before 2:30 this morning. Fire and emergency confirmed to RNZ one person had died. A scene examination will take place today. The government is introducing new rules to protect marine life on the Auckland and Coromandel coastlines. It is closing a substantial area of the intertidal zone to recreational fishing of catsides, mussels and limpets. Bag limits are also being reduced for other species. It's in response to community concerns about over-harvesting and the sustainability of marine life. Fire crews, including 5 helicopters, are continuing to tackle a 1,400-hectare blaze at Walter Peak near Queenstown today. Mayor John Glover says local businesses have been utilised.
14: We're very, very fortunate that we've got a fleet of helicopters in this district, obviously 99% of the time, providing services for the tourism sector.
13: The use of stun grenades against protesters in France has been paused after a 15-year-old's hand was blown off. There are conflicting reports about what happened, with the suspension in place while the facts are gathered. To sport, in All Blacks' first five, Richie Mo'unga has suffered a calf tear at training and won't play in Saturday's Bledisloe Cup opener at Eden Park. Stan Sport commentator and former Wallabies lock Justin Harrison says there's something different about the current Aussie side.
15: You know, we've gone from thinking, can we just compete well and hopefully not lose, to genuinely believing.
13: Wing Fehe Finianga-Norfo is also out with concussion and a hamstring strain. The All Blacks name their team at midday.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
16: World's best, hamari koi branch nahi hai.
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
12: तो याद रहे आज का बहुत ही खूबसूरत मौसम बताया जा रहा है. एज फार एज लॉन्ड्री एंड स्टफ यू वांट टू डू ये पॉसिबल है बिकॉज अच्छी खासी धूप जो है ये खिली रहेगी आज. और टेम्परेचर्स इन डबल डिजिट्स एज इन 20 डिग्रीज हाईएस्ट आज रिकॉर्ड किया जा सकता है. ओवरनाइट 10 डिग्रीज टेम्परेचर रहेगा. करंटली 15.5 डिग्रीज तक टेम्परेचर पहुंच चुका है. तो काफी अच्छा मौसम जो ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं आज के दिन और इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं बिकॉज द सनसेट इज गोना हैपन एट 7:30 PM.
0: With Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco. What's going on? Kya bakte ho?
17: Are kehna kya chahte ho?
12: So if you remember, मैंने कहा था कि आज की क्या बकते हो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है.
3: अच्छा.
12: और ये आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे. इट्स इंटरेस्टिंग एंड फन एट द सेम टाइम. आई एंजॉयड इट. आई थरली एंजॉयड इट. तो मुझे लगा कि आप भी इसे इंजॉय करेंगे. सो अपेरेंटली ये स्टोरी है ऑल द वे फ्रॉम चाइना में, चाइना से, जहाँ पर क्या हुआ कि कुछ लोग जो है कि एक जगह पर थे और वहाँ पर जब ये घूम रहे थे तो एक लोकल मार्केट में आई थिंक काफ़ी अच्छी खासी भीड़ थी वहाँ पर मौजूद. और वहाँ पर एक फ्रेंच टूरिस्ट जो है इन्होंने ये पूरा एक्सपीरियंस किया जो कि एक वीडियो के रूप में कैप्चर हुआ एंड इट केम ऑनलाइन एंड आफ्टर दैट इट रीच्ड अस. सो व्हाट हैपेंड वाज शंग्रीला में ये हुआ जहां पर
18: शंग्रीला.
12: हाँ
18: ऐसा लग रहा है अमरीश पुरी का कोई आइलैंड है.
12: शंग्रीला ही बताया गया है तो आई डोंट नो.
18: वो तो रिजोर्ट है पाया ना.
12: नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है शंग्रीला यूनान. तो एक अनविटिंगली स्टार इम्प्रोम्प्टू मोमेंट जो है ये मिला जहाँ पर अपेरेंटली इस पर्टिकुलर स्ट्रीट में एक शख्स को एक मोबाइल फोन मिला.
18: Okay.
12: When they got the phone, तो उन्होंने वो फोन उठाकर ऊपर ऐसे हाथ में लेकर उस पूरे एरिया में ढूंढ ढूंढ कर एक ट्यून टाइप बोल बोलकर whose phone is this Chinese में बोल रहे, मैंड्रिन में बोल रहे थे माफ कीजिएगा. और वो मैंड्रिन में बोलकर ऐसे दिखा दिखा कर बोल रहे थे whose phone is this, ठीक है, मैंड्रिन में. आस पास जो और लोग चल रहे थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पर्टिकुलर सर्च में इस शख्स को ज्वाइन किया. तो जो पहले शख्स जिनको मिला था जो उठाकर whose phone is this बोल रहे थे मैंड्रिन में, बाकी जो घूम रहे थे उन्होंने भी इनको ज्वाइन किया. सब ने साथ साथ एक ही ट्यून में एक ही टोन में बोलना शुरू कर दिया whose phone is this, whose phone is this, हंसते हुए गाते हुए न वे ना लाइक दैट लाइन दे सेइंग. अभी जो फ्रेंच टूरिस्ट है इनको तो पता नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं बिकॉज इट डजंट नो मैंड्रिन. तो उन्होंने भी इनके ग्रुप को ज्वाइन कर लिया. वो भी ऐसे खुश होकर क्लैप कर एंजॉय कर रहे हैं. उनको लगा कोई स्ट्रीट परफॉर्मेंस चल रही है. एंड ही सॉ पीपल अराउंड देम कैप्चरिंग द मोमेंट एंड व्हेन ही सॉ दैट तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जेब में हाथ लगाई और अपना फोन जो ये निकाला मोमेंट को कैप्चर करने के लिए. That's when he realized कि उनके जेब में उनका फोन ही नहीं है.
18: अरे बेचारा.
12: एंड उनको ये पता चला कि जो फोन वो बंदा लेकर पूछ रहा था whose phone is this, whose phone is this, वो उनका खुद का फोन था. So, उनको नहीं पता था कि क्या हो रहा है. He didn't understand the language. But जब उन्होंने वीडियो बनाने के लिए फोन अपना जो है ये ढूंढा और पता चला फोन नहीं है, तब पता चला कि उन्हीं का फोन जो है ये लेकर वहां पर जो लोकल से पूछ रहे whose phone is this.
18: तो वीडियो बनाया किसने?
12: अब बाकी जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने बनाया. दैट्स हाउ इट केम फॉरवर्ड. एंड इस वीडियो में फिर वो जो टूरिस्ट है फ्रेंच टूरिस्ट वो दिखे सामने आते हुए अपना फोन लेते हुए. Now the other interesting thing happened. Everyone cheered for him and they started laughing and enjoying the moment and gave his phone back. लेकिन फिर थोड़ी ही देर में, like while this was happening, थोड़ी देर में एक शख्स को एक कार्ड मिला. He lifted up the card and he started that thing again. Whose card is this? Whose card is this? And then that boy realized, the French tourist, कि कार्ड भी उन्हीं का था. Because when the commotion was happening, जहाँ पर वो enjoy कर रहे थे, वो उनके pocket से गिर गया था. And then people started laughing at him, but enjoyed with him, like not at him. But laughing together, enjoying the moment, na? तो ये पूरा moment जो video में capture हुआ, I don't understand Mandarin, तो of course मुझे नहीं पता कि exactly क्या बोला, but whatever the video translated to, I went and took AI का help, translated the audio as well, तो समझ में आया कि genuinely जिस जो story जिस तरह से post की गई है, वो वैसी ही है. It's not created just to, you know, get the views and hype up, लेकिन real story है, real incident है. तो ये हुआ. इंटरेस्टिंग था और इसे देखने के बाद मेरे भी दिल में आया बोलना कि क्या बकते हो. 7 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर.
18: थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा है इसकी जानकारियां आपको देंगे. और इस घंटे अपॉर्चुनिटी भी होगी फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में पार्टिसिपेट करने की.

0: What's going on?
1: What's up?
0: What's up, Auckland?
2: क्या कुछ हो रहे हैं नवरात्रि के मौके पर, कहां कहां पर आप जाकर हिस्सा ले सकते हैं नवरात्रि की पूजा में, इसकी जानकारियां आपको दे देते हैं। श्री राम मंदिर पर 11 ब्रिक स्ट्रीट हैंडरसन में, याद रखें जो पितृ तर्पण है, सामूहिक पितृ तर्पण ये रहेगा इसी शनिवार को, और शनिवार को सुबह 10 से दिन में 12 बजे तक पितृपक्ष पर प्रवचन, सामूहिक पितृ तर्पण, ब्राह्मण पूजा, ब्राह्मण भोज और लंच जो है ये भी रहेगा, तो आप जाकर इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और फिर रविवार से नवरात्रि का पर्व जो है ये मनाया जाएगा श्री राम मंदिर पर। शाम 6 बजे देवी पूजा, 7:15 बजे से कथा आरती, और रात 8:30 बजे से गरबा जो है ये भी होगा।
3: और इसके अलावा श्री आदि शक्ति दुर्गा माता मंदिर, यहाँ पर भी नवरात्रि का पूजा जो है ये रहेगा 11th अक्टूबर से लेकर 20th ऑफ अक्टूबर तक, हर रात 7 PM टू 9 PM, 38A वॉम्सली रोड ऑटोहू, इसके लिए आप पहुँच सकते हैं।
2: श्री हनुमान मंदिर में भी जो नवरात्रि का पर्व है ये मनाया जाएगा 14 बाई पार्क प्लेस बर्गडेल नोट शो में, जिसमें आप जाकर हिस्सा ले सकेंगे, और खासतौर पर माता की चौकी 13th और 17th अक्टूबर को लगेगी।
3: और इसके साथ साथ आपको याद दिला रहे हैं, दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भी नवरात्रि का जो पर्व है ये मनाया जाएगा ट्यूजडे या संडे 11th अक्टूबर से लेकर ट्यूजडे 20th ऑफ अक्टूबर तक, और एट द होल जो कि नाम है जिसका द केव, और ये है 5/57 कैवेंडिश ड्राइव मैनिकाओ में, इट्स लोकेटेड राइट अपोजिट वेयर हाउस, जहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। याद रहे होल का नाम है द केव, और यहाँ पर हर रात प्रोग्राम जो है 6:30 PM से शुरू होगा, जिसके बाद गरबा, डांडिया और हुड्डा तासा जो है रास है ये डेली रहेगा आफ्टर कथा।
2: श्री राम कृष्ण मंदिर पर 25 ऑनस्लो ऑफ मेनकाओ में भी नवरात्रि का महोत्सव जो है ये रहेगा, इसी शनिवार से या संडे 11th अक्टूबर से ट्यूसडे 20th अक्टूबर तक, और शाम 6 बजे से वेदी स्थापना पूजा जो है ये दैनिक आरंभ हो जाएगी।
3: तो ये रही कुछ जगह जहाँ पर आप जाकर नवरात्रि का पर्व जो है ये ज़रूर मना सकते हैं। पर उसके अलावा आपको हम याद दिला दें, नेक्स्ट वीक सैटरडे एंड संडे यानी कि 17th एंड 18th ऑफ अक्टूबर होने जा रहा है बहुत ही खूबसूरत एक प्रोग्राम, संप्रीति दुर्गा उत्सव, और ये आपके लिए होने जा रहा है जिसका हिस्सा आप बन सकते हैं। एब्सोल्युटली फ्री एंट्री है सभी के लिए। यहाँ पर ट्रेडिशनल दुर्गा पूजा जो है ये रहेगा, और दोनों ही दिन यहाँ पर भोग ये सर्व किया जाएगा। कल्चरल परफॉर्मेंसेज रहेंगे रात 7 बजे से ऑन बोथ द इवनिंग्स, सिंदूर खेला भी होगा, इसके साथ अन्य ट्रेडिशनल सेलिब्रेशंस भी रहेंगे। ये आपका मौका है इसमें हिस्सा लेने का, इसका हिस्सा बनने का, और आप ज़रूर इसमें भाग जो है ये ले सकते हैं और दुर्गा उत्सव जो है ये मना सकते हैं, जिसके लिए फ्रीमैन्स बे होल 52 हेबन स्ट्रीट फ्रीमैन्स बे आपको पहुँचना है। तो इससे जुड़े और भी डिटेल्स आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे।
4: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
5: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
4: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
5: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
4: बस इतना ही।
5: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
6: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 months इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
7: मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आर ओवरऑल हेल्थ। जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप ओवरवेल्ड हैं या इमोशंस मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं। कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342। अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
8: My future is still being written. I don't know what I'll be when I grow up, but I know I want the chance to find out. Your investment in children can help me get there. With the right support, I can feel safe, learn, grow, build confidence, and discover what I'm capable of. That's why Barnardos is asking LTRL to invest in children. Invest in children at investinchildren.nz. And invest in me.
9: Don't sleep on Briscoe's one-day sale on now with huge one-day 60% off deals plus huge one-day store-wide savings. Stores open late. Briscoe's one-day sale today only. See online for TCs and store hours.
10: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मेनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November। टीज एंड सीज अप्लाई।
11: दिवाली आई, खुशियाँ लाई, PFSL स्पेशल ऑफर लेकर आया है। अपने ड्रीम होम का सपना सजाएं, PFSL के साथ होम लोन करवाएं, $400,000 या उससे ज्यादा का एलिजिबल लोन सेटल करें और $250 का गिफ्ट कार्ड घर ले जाएं। 50 इंच टीवी के लकी ड्रॉ में भी एंट्री पाएं। तो इस दिवाली खुशियाँ बढ़ाएं, PFSL के साथ अपना ड्रीम होम सजाएं। सर्च PFSL और कॉल ऑनलाइन 8469934। टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लेंडिंग क्राइटेरिया अप्लाई।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
2: तो चलिए, हमने आपसे वादा किया था कि आज का फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून इसमें आपको पार्ट लेने का मौका देंगे और हमारे साथ ड्रो में शामिल होकर आप इस बार फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में जीत सकते हैं NZPMI इनकी ओर से $1,000 वर्थ ऑफ माइट 10 के वाउचर्स. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, आपको ये याद दिला दे, यू कैन अनलॉक योर प्रॉपर्टीज थ्रू सेल वैल्यू NZPMI के साथ. आपके लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स जो एक फ्री साइट असेसमेंट भी आपके लिए कर सकते हैं. और अगर डिटेल्स आपको चाहिए दैट व्हाट ऑल दे ऑफर, इसके लिए आप nzpmi.co.nz www.nzpmi.co.nz विजिट कर सकते हैं या आप 0800 4NZPMI 0800 4NZPMI पर कॉल भी करते हुए डिटेल्स हासिल कर सकते हैं.
3: तो अब हम पर $1,000 वर्थ ऑफ माइटर 10 वाउचर्स ये जीतने का मौका है आपके पास.
2: अगर मैं आपसे बोलूं कि सपोज, आई नो इट्स नॉट गोना हैपन, बट सपोज अगर आप ये वाउचर्स जीत जाते तो व्हाट इज इट वन थिंग यू वुड हैव बॉट विद दिस $1,000?
3: अभी तो जरूरत बहुत है मेरे को,
2: बहुत जरूरत है ना.
3: I'll just go and जो जरूरत के सामान है वो लूंगा.
2: जैसे एक चीज आप बता दो,
3: टिम्बा.
2: टिम्बा,
3: हाँ.
2: आपको पता है कि माइटर 10 में यहाँ पर जो उनका गार्डन सप्लाई रेंज है वो भी इतना बड़ा है.
3: Oh my God! Remember I told you about the flowers that
2: I saw. It's so beautiful. Planters इतने सारे वहाँ पर है and flowers का रेंज भी बहुत बड़ा है. And the best thing, यहाँ पे आप देखो जिन लोगों को गार्डनिंग का बहुत शौक होता है, when it comes to flowers, I'm not talking about vegetable gardening, I'm talking about flowers वाला gardening. लोग जो अपने gardens में इतने खूबसूरत जो garden decorations है ये भी रखते हैं. If you ever noticed. तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर आपको मिल सकती है. नॉट जस्ट दैट, माइटर 10 में देयर इज लाइक सो मेनी थिंग्स. घर की लाइटिंग अगर आप चेंज कराना चाहते हैं, टाइल्स चेंज कराना चाहते हैं, वैनिटी बदलना चाहते हैं, देयर लाइक हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन चूज फ्रॉम. बट अगर आपको मौका मिले तो आप क्या चूज करोगे या क्या लेना है आपको जिसके लिए आपको माइटर 10 के वाउचर्स चाहिए?
3: क्योंकि वाउचर्स तो हम डेफिनेटली आप में से किसी एक को देंगे. और अगर आप ये जीतना चाहते हैं जो ड्रो 30th of October को होगा, तो अभी आपको अपना जो मैसेज है ये हमारे पास भेजना होगा. उससे पहले बता दें, टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए हम .rover.nz आप विजिट करें. और ख्याल रखें कि जब भी आप 5599 पर टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं, स्टैंडर्ड कैरियर रेट्स डू अप्लाई. इन चीज़ों का भी ख्याल रखें. और साथ में ये भी आपको बताएं, जितने ज्यादा एंट्रीज आप भेजते हैं जीतने के उतने ज्यादा मौके, क्योंकि उतने ज्यादा बार आपके नाम ड्रो में शामिल होंगे ना.
2: बिल्कुल. तो जल्दी जल्दी अपनी एंट्रीज हमारे पास सेंड करें इफ यू वांट टू बी अ विनर विद NZPMI दिस दिवाली हमारे फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून के तहत. और माइटर 10 के वाउचर्स वर्थ $1,000 आप जीतना चाहते हैं. एक और एक जरूरी चीज भी आपको याद दिला दे कि इस बार ये जो इनाम आप जीतना चाहते हैं ये सिर्फ ऑकलैंड के लिसनर्स के लिए सीमित नहीं है. इफ यू आर अ लिसनर एनीवेयर इन न्यूजीलैंड, आप ये वाउचर्स जीत सकते हैं और इस ड्रॉ में अपने नाम को शामिल करा सकते हैं.
3: सलेश, आपकी एंट्री इनवैलिड हो गई है. आपने NZ लिखा, फिर स्पेस दिया, फिर PMI लिखा, फिर स्पेस दिया और अपना नाम लिखा. NZPMI आपको लिखना है, फिर स्पेस देना है और तब अपना नाम आपको लिखना है. और आप कहां से सुन रहे हैं हमें? ऑकलैंड, या आई मीन जिस भी शहर से आप हमें सुन रहे हैं उस शहर का नाम आपको लिखना है, क्योंकि इट्स ओपन टू एनीवन एंड एवरीवन इन द कंट्री. तो हम देखना चाहेंगे कि कहां कहां से एंट्रीज जो है कि हमारे पास आ रही हैं. सो फर्स्ट यू राइट NZPMI, उसके बाद अपना नाम और आप किस शहर से हमें सुन रहे हैं. विच सिटी आर यू लिस्निंग फ्रॉम? ऑकलैंड, हैमिल्टन, क्राइस्ट चर्च, वेलिंगटन, जहाँ कहीं भी हो, यू नो नेपिया या फिर और कौन कौन सी जगह है, गिस्बन, नॉर्थलैंड, फंगरे, जहां भी हो वो आपको लिखना
2: है. कहीं से आप सुन रहे हैं बस आप वो हमें बता दो.
3: सो द फर्स्ट थिंग याद रहे, आपको अच्छी तरह से बता रहे क्योंकि टाइम बहुत कम होगा एंड यू नीड टू मेक श्योर कि यू गेट योर एंट्री राइट. हम रिपीट नहीं करेंगे, गाना खत्म, मौका खत्म. NZPMI, उसके बाद अपना नाम और किस सिटी से आप हमें सुन रहे हैं.
2: राइट, तो जल्दी जल्दी मैसेजेस सेंड करें क्योंकि जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि गाना खत्म मतलब एंट्री खत्म. इट्स 9:25 राइट नाउ, 9:30 शार्प कंपटीशन रैप अप कर देंगे. यू हैव गॉट एग्जैक्टली 5 मिनट्स टू सेंड इन योर एंट्रीज नाउ.
0: Bollywood's most wanted.
4: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
5: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: I absolutely love listening to this song, Romy, और साथ में श्रेया घोषाल की आवाज़ों में मिर्ज़ापुर द मूवी का ये ट्रैक आज आपके लिए बॉलीवुड मोस्ट वांटेड में हम पेश कर रहे थे. अभी आपके पास 30 seconds time बाकी है to send in your entries. Final 30 seconds, as we had said, 5 minutes and that's it. So there you go. अब बाकी है 20 seconds. जैसे जैसे बोलते रहेंगे सेकंड्स कम होते रहेंगे, बट आई रियली वांट टू स्टिक टू दैट 5 मिनट्स टाइम ना, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको.
1: प्रवीण महाराज, आपने अपना मैसेज भेजा, कहीं पर कोई स्पेस नहीं दिया, आपकी एंट्री इनवैलिड हो जाएगी. जब ड्रॉ होगा तो आपका नाम उस ड्रॉ में शामिल होगा ही नहीं. इस तरह से एंट्रीज भेजने से पहले अच्छी तरह से आप चेक कर लें कि आपकी एंट्री सही तरह से आ रही है या नहीं.
0: एंड दैट्स इट, टाइम इज अप.
2: थोड़ा सा हॉल बना दे.
3: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manuko, Mount Wellington and Westgate. Up to 60% off on now.

0: तो आपके लिए लेकर आ रहे थे अरमान मलिक और साथ में यो हनी सिंह की आवाज़ों में पिक्चराइज्ड ऑन नन अदर देन कार्तिक आर्यन. बड़े कमाल के डांसर है मेरे ख्याल से ये. अच्छा डांस करते हैं स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग विद फुटवर्क यू नो. तो आज आपके लिए चलिए ये गाना हम पेश कर रहे थे. बट टॉकिंग अबाउट सम अदर अपडेट्स फ्रॉम बॉलीवुड, कार्तिक आर्यन का नाम मेंशन किया तो उससे पहले याद दिला दें कि अभी बॉलीवुड में भी काफ़ी चीज़ें जो है ये हो रही है और बातें हो रही है अलग अलग फिल्मों के बारे में. तो एक्साइटमेंट है काफ़ी ज़्यादा बिकॉज देयर इज़ अ लॉट दैट्स गोना हैपन इन कमिंग डेज, जिसमें रामायण फिल्म जो है ये भी शामिल है और इसको लेकर भी काफ़ी बातें हो रही है. रामायण इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव पेड प्रीव्यूज़ ऑन November 4th और इसके तहत कहा गया है कि Godzilla माइनस जीरो जो है इनको लिमिटेड शो केस मिले हैं इन इंडिया. आई एम टॉकिंग अबाउट क्योंकि रामायण जो है इज डूइंग देव डन मोर पेड प्रीव्यूज, जिसके चलते ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी है शो केस जो है ये इनको थिएटर्स में मिले हैं. एंड साथ में एक और एक खबर जो है ये आ रही है, गुनीत मोंगा, ये याद है आपको गुनीत मोंगा, अवार्ड विनिंग प्रोड्यूसर रह चुकी है फिल्म
1: yes, yes, yes,
0: तो शी इज़ इनफैक्ट एक वुमेन लेड फिल्म बना रही हैं ये इंडिया में. एंड गूगल फ्लो जो है इन्होंने इनके साथ अब हैंड्स ज्वाइन किए हैं टू एनेबल AI पावर्ड फिल्म मेकिंग फॉर क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज.
1: वाओ.
0: सो इनफैक्ट अब इंडस्ट्री में भी, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी वुमेन इन फिल्म इंडिया जो है ये एक साथ मिलकर गूगल फ्लो के साथ ज्वाइन कर रहे हैं टू एनेबल AI पावर्ड फिल्म मेकिंग. देखते हैं क्या कुछ क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज जो है इसके साथ सामने आती हैं. और AI का इंडस्ट्री में एंटर करना तो कब का हो गया था, बट फिल्म मेकिंग के मामले में क्या कुछ चेंजेस ये कर सकते हैं. तो डेफिनेटली कुछ और डिटेल्स हमारे हाथ लगेंगे, आपके साथ हम शेयर करते हुए चलेंगे. पर फिलहाल के लिए थोड़ी देर बाद आज का डेली राउंड अप.
2: Mornings made better.
3: Two frienda, char toast, butter jam, or a special chai.
2: The breakfast show with Vijay and Pooja.
4: वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ। जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप ओवरवेल्ड हैं या इमोशंस मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं। कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342। अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
5: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
6: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
7: MediaWorks complaints. How can I help?
8: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
7: Nice.
8: And you talked me into creating this funny character.
7: Great.
8: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
7: Are you?
8: Yes.
7: Are you Bobby the Baker?
8: Yes.
7: What's that thing you do again?
8: Stop it.
7: You bring the mouth.
8: Stop it.
7: I'll bring the pie.
8: Stop it, please.
7: Okay.
8: Yeah, sure. I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
7: So what's the problem?
8: My name's Bruce.
9: Advertise with
10: MediaWorks.
7: New Zealand listens to us.
11: It's spring season at Freedom. Save up to 50% off selected sofas and furniture. And for a limited time, take a further 10% off all sofas. Offer ends Monday, only at Freedom.
12: The ultimate pro iPhone, iPhone 18 Pro. With a big leap in battery life, new 48 megapixel Fusion main camera with variable aperture for more creative control, and 4 gorgeous colors. Be the first to unbox it with a great deal at Spark. Plus, save even more with trade-in. Do more with iPhone 18 Pro on an eligible pay monthly mobile plan with Spark. Order online or in-store. Spark terms and credit criteria apply. Delivery times may vary.
13: Buy a birthday bundle at Macca's and get a birthday bonus. Choose between 35% off toys online at the warehouse or free 30-minute time play at Time Zone. The more the merrier at Macca's 50th. T's and C's apply. Birdie.
14: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
15: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
16: What's going on?
17: आज का डेली राउंडअप, सबसे पहले एक व्यक्ति की जान चली गई है और एक जो है ये बचने में कामयाब रहा। जब कोरोमंडल पेनिनसुला में आज सुबह एक घर में आग लग गई, फायर फाइटर्स ने इसकी पुष्टि की है कि 2 फायर क्रूज जो हैं इनको भेजा गया था फितियांगा के करीब सुबह 2:30 बजे के वक्त। फायर एंड इमरजेंसी के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रॉपर्टी पर एक व्यक्ति को मृत पाया गया और फायर इन्वेस्टिगेटर्स जो है अब मामले की तहकीकात करेंगे। सीनियर सर्जेंट क्रिस पेंटा का कहना है कि एक सीन गार्ड जो है रात भर वहां पर था और पुलिस अब घर की छानबीन जो है ये करेंगे, इंक्लूडिंग वर्किंग विद दी फायर इन्वेस्टिगेटर्स।
18: और इसके अलावा एक और खबर आ रही है कि गेटिंग एन ADHD डायग्नोसिस इन न्यूजीलैंड कैन स्टिल मीन अ लॉन्ग वेट। अब कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर टर्निंग टू टेली हेल्थ सर्विसेज ताकि उनका असेसमेंट जो है ये हो सके। सिंस फेबररी GPs एंड नर्स प्रैक्टिशनर्स जो है दे हैव बीन अलाउड टू डायग्नोज ADHD और मेडिकेशन वगैरह जो है ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बट दे डोंट हैव टू स्पेशलाइज इन ADHD। तो सो इस मामले में बहुत से GP प्रैक्टिसेस जो है दे स्टिल अरंट ऑफरिंग द सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि पीपल जो है ऑनलाइन सर्च करते हैं और कहीं ना कहीं से ढूंढते हैं कि क्या उनकी हेल्प या किस तरीके से उनकी हेल्प की जा सकती है। इस मामले में खबर सामने आई है जहां पर एक महिला जिनका नाम निकी ये बताया गया है, शी वेटेड फॉर द चेंजेस ओनली टू फाइंड कि उनके जो पामिस्टन नॉर्थ के जीपी हैं वो ऑफर नहीं कर रहे थे एडीएचडी असेसमेंट्स, जिसकी वजह से शी इवेंचुअली वेंट थ्रू टेली हेल्थ एट द कॉस्ट ऑफ $972। इसका मतलब ये है दैट गेटिंग डायग्नोस्ड हैज मेड अ बिग डिफरेंस फॉर बोथ हर एंड हर टीनेज सन, लेकिन हेल्पिंग देम कॉन्सेंट्रेट एंड मैनेज एवरीडे लाइफ एज वेल, उसके बावजूद कॉस्ट्स की बातें जो है ये जरूर सामने आ रही है।
17: तो जैसे जैसे इलेक्शन और करीब आ रहा है और भी पॉलिसीज अनाउंस किए जा रहे हैं। नेशनल पार्टी ने अनाउंस किया है कि अगर वो सरकार में वापस आती है तो इंट्रोड्यूस करेगी रैंडम ड्रग टेस्टिंग फॉर पीपल ऑन जॉब सीकर सपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग विद 10,000 टेस्ट्स इन द फर्स्ट ईयर। ये पॉलिसी 5-पॉइंट वेलफेयर प्लान का हिस्सा है जिसे नेशनल के सोशल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट स्पोक्सपर्सन लुइस अपस्टन ने अनाउंस किया है। और अंडर द प्लान फर्स्ट test would be recorded with the second triggering a clinical alcohol and drug assessment. Anyone who then failed to meet their obligation would face the normal sanction regime jinme shamil hain cuts to their benefits. Iske alawa logon ko rock pools se चीज़ें जो है या मरीन लाइफ ले जाने से रोका जा सकता है, खासतौर पर ऑकलैंड और कोरमंडल इलाकों में, क्योंकि लोग जो है कुछ लोग जो है ये कई मोआना को ओवर हार्वेस्ट कर रहे हैं। ओशंस एंड फिशरीज मिनिस्टर शेन जोन्स ने अनाउंस किया है द क्लोजर विच कवर्स द इंटरटाइडल जोन द स्ट्रेच ऑफ द बीच रॉकी शो और रॉक पूल बिटवीन हाई टाइड मार्क एंड जहाँ पर वाटर मार्क रीचेस 2 मीटर्स डीप। ये बैन जो है ये कवर करता है ऑकलैंड की ईस्ट और वेस्ट कोस्ट, वही की आइलैंड एंड द कोरमंडल, और ये नवंबर से असर में आने वाला है।
18: राइट, तो डेली राउंडअप में आपके लिए ये डिटेल्स आज हम पेश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद याद रहे हम शो भी रैपअप करने वाले हैं, पर अगर आपके पास भी ऐसे कुछ अपडेट्स हैं दैट यू वांट अस टू टॉक अबाउट और यू वुड लाइक फॉर अस टू शेयर, आप ज़रूर हमें बता सकते हैं। डिटेल्स आपके लिए हम ज़रूर लेकर आएंगे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। बट फॉर नाउ बारी है आज के हमारे स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट की।
9: Lock your property's true sale value with NZ PMI, your local developer.

0: Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction. दो बातें।
2: आज की दो बातें बड़ी दिलचस्प हैं। पहली बात, आंखें बंद करने से मुसीबत नहीं टलती और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती।
3: अच्छा यार, दिस इज नाइस। सो आंखें बंद किए बगैर मुसीबत नहीं टलती।
2: आंखें बंद करने से
3: मुसीबत
2: टलती नहीं,
3: राइट,
2: और मुसीबत आए बिना
3: आंखें खुलती नहीं।
2: जी बिल्कुल,
3: वेरी नाइस।
2: और दूसरी बात, महंगे जूते अक्सर वही खरीदते हैं जिनके भाग में चलना बहुत कम लिखा होता है।
3: ओह अगेन,
2: महंगे जूते अक्सर वही खरीदते हैं जिनके भाग में अक्सर चलना बहुत कम लिखा होता है।
3: वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप भी आज की दो बातों से कुछ सीख ले सकते हैं, कुछ इवेल्युएट कर सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो बदलाव भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। चलिए इन्हीं बातों के साथ बाप से चाहेंगे इजाज़त, जाने का समय हो रहा है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात वो होगी अब कल इस सप्ताह के लिए फॉर द फाइनल टाइम ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। ठीक सुबह 6 पर आपके लिए हम कल का सफर जो है ये लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। एंजॉय योर थर्सडे, हैव लॉट्स ऑफ फन एंड ऑफ कोर्स आज मौसम भी अच्छा रहेगा तो एंजॉय योर आउटडोर टाइम एज़ वेल।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manuka. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manuka.
2: Driving you home.
1: Drive Show with Sandy and Rusby.
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
4: ये गलत बोल दिया यार.
3: और पहनता भी नहीं है उसको.
4: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
3: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया
4: अभी. ब्रांड हो गया ना.
3: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manuka and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuka and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2.
6: Reliance Ventilation System.
7: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
6: Moisture और ventilation का problem लगता है.
7: और पता है मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
6: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
8: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
9: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. 140cc quality lawnmowers just $249. Cordless leaf blower and battery just $70. Cordless weed eater and battery just $70. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
10: 4.95% finance on your next car. Exclusive to West City Auto Group. Right now, get into the Havel Jolion, Havel H6, Tank 300 or Canon Ute range with 4.95% per annum fixed finance for 48 months with just 20% deposit. Whether you're after something stylish, practical, rugged or ready for work, they've got something for everyone. But hurry, this exclusive offer won't last forever. Speak with Jimmy Taylor and team at West City GWM. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
11: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए. हाय, मैं हूं गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस. जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूं. लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं.
12: टर्म्स कंडीशन फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई. कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी व्हिच इज 0800-564-424.
13: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका. लोटस मैनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश. साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट. बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो. फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November. टीज एंड सीज अप्लाई.
14: Check.
15: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tires on 0800-00-00-10.
14: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
16: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 10. Police believe missing Christchurch man Braden Hepworth is no longer alive. Officers have executed a number of search warrants in Lynwood and Edgware today. The last confirmed sighting of the 21-year-old father was September 3rd. Police say they're appealing to anyone with information about his disappearance to come forward. A person is dead after an early morning house fire in Coromandel. An occupant of a home in Wharekaho who escaped uninjured raised the alarm around 2:30 this morning. The body of another person was found inside. Police will be carrying out a scene examination at the house today alongside fire investigators. The National Party will bring in random drug testing for those on welfare if re-elected. It's announced a new 5-point plan with 10,000 tests in the first year before expanding it over time. And 8 new research programs are being undertaken to help prepare the country for natural disasters. It includes mapping out the spread of fires after large earthquakes. Joe Horrocks from the Natural Hazards Commission says the data won't be shelved.
5: Better real-world decisions and ultimately helps New Zealanders be safer, suffer fewer losses and recover faster.
16: And to sport and rugby, Stan Sport commentator Sean Maloney is at a loss to explain why the Wallabies haven't secured the Bledisloe Cup for 24 years. They also haven't beaten the All Blacks at Eden Park since 1986.
17: It's jinx for us. So how do you beat the jinx? Do you go superstition? Do you just have to get lucky for 80? I don't know.
16: The All Blacks named their team for Saturday's test at midday today. Richie Mwanga and Fehi Finianga Nofal are both out injured.
14: News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
18: The highs of 20, overnight temperature of 10. आज का forecast बताया जा रहा है. Southerlies कम होती चली जाएंगी. 7:32 पे sunset बताया जा रहा है. It feels like 15 degrees right now.
14: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
19: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye, kyunki aa rahi hai.
14: My Time with Kashika.
18: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 10:02 हो गए हैं. आपका साथ निभाने के लिए टाइम को बताते हुए, टाइम का अंदाज़ा देते हुए कि ये कितना बहुमूल्य है हमारे लिए, मैं आ जाती हूँ आपकी रिमाइंडर क्लॉक. बातें करते करते 10:03 हो गए. हाउ हैव यू बीन? हाउ इज एवरीथिंग? देखो आज थर्सडे आ गया. जब थर्सडे आ जाता है तो लगता है कि भाई वीकेंड तो ऐसे अभी आज का दिन निकल जाएगा ना, कल तो फिर हमारी मस्ती प्लानिंग सब कुछ चलने वाली है. और ऐसे में इस मस्ती प्लानिंग में आप ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपके लिए हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स में हम तरह तरह के ऑप्शंस आपके लिए लेकर आते हैं, तरह तरह के म्यूज़िक स्टेशंस आपके लिए लेकर आते हैं. जैसे अगर 80s के आपको ट्रैक सुनने हैं तो हमारे जूक बॉक्स है, और भी पुराने गाने सुनने हैं तो 60s 70s के हम रिवाइंड में आप पहुँच सकते हैं. फीजी के भजन का शौक रखते हैं, फीजी कीर्तन संग्रह का, तो ये दुनिया का पहला 24/7 फीजी भजन लिस्टिंग का एक प्लेटफॉर्म आपके लिए रेडी कर दिया गया है. पंजाबी गाने सुनने हैं, ओए हो पैपअप होना है तो पंजाबी हिट्स हमारी चढ़ती कला में आप सुन सकते हैं. एंड राहत फ़तेह अली खान की बात करते हैं तो उनके अमेजिंग सूफी गाने भी आप डेफिनेटली सुन सकते हैं. राहत जी की बात कर रहे हैं तो चलिए राहत के गाने के साथ एक राहत लाने वाला गाना जब आ जाता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है. तो चलिए आपको लेके चलती हूँ उस गाने की तरफ, लेकिन गाने से पहले थैंक यू करना चाहती हूँ कशिश फूड्स को, जिनके सौजन्य से आपके लिए मुमकिन हो जाता है 10 से 12 बजे मंडे टू फ्राइडे का सफर मेरे साथ आपके रिमाइंडर क्लॉक यानी कि काशिका के साथ. बजाओ क्या, चलो
14: बजाओ क्या.

0: What's a duck?
1: एक बात तो है जो वाटर बॉटल्स होती है ना हमारी लाइफ के लिए एवरीडे लाइफ के लिए बहुत बहुत एक इंटेग्रल पार्ट बन चुके हैं स्कूल से लेके काम पे कॉलेज में जिम में ये रीयूजेबल बॉटल्स जो होते हैं हम अपने साथ रखते हैं ताकि हम हाइड्रेटेड रहें इजीली लेकिन कभी हमने सोचा है कि जो पानी हम पीते हैं हाउ इज़ द बॉटल होल्डिंग इट ये बॉटल के अंदर रहती तो है रीयूजेबल बॉटल जो होती है इसमें कितना बैक्टीरिया होता है जो हमारे हाथ से हमारे मुंह में रीफिल स्टेशंस में काउंटलेस सरफेस यू नो उसको टच करते हुए थ्रू आउट द डे उसमें पहुंचते जाते हैं अब जो बॉटल के अंदर का जो मॉइस्चर है ये दरअसल बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करता है स्पेशली जब इसको स्टोर करते हैं ज़्यादा टाइम के लिए इवेंचुअली इससे क्या होता है इट कैन लीड टू बायोफिल्म और जहाँ पे हम कह सकते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मूव ही नहीं करते हैं बॉटल के अंदर से वो उसी में अटक जाते हैं आयुर्वेदा हमेशा ये कहता है कि कॉपर की बॉटल्स एक मिनट म्यूज़िक चलाऊँ थोड़ा सा म्यूज़िक के साथ थोड़ा इफेक्ट ज़्यादा आता है ओके तो कॉपर की बॉटल्स आयुर्वेदा ने कहा है कि वो प्योरिफिकेशन के लिए अच्छा रहता है बट स्टेनलेस स्टील जो है अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता चला जा रहा है सो व्हाट मटेरियल डू यू थिंक यू आर यूजिंग राइट नाउ अपनी हाइड्रेशन के लिए या आपकी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं स्टेनलेस स्टील बहुत ही पॉपुलर चॉइस है इट्स अ गुड रीज़न क्योंकि ड्यूरेबल है रीयूजेबल है रिलेटिवली इसको बहुत ईजिली क्लीन भी कर सकते हैं एक रिसर्च के ज़रिए पता चला कि एक स्टेनलेस स्टील की बॉटल को एक यू नो प्लास्टिक की बॉटल के साथ कंपेयर किया गया सिग्निफिकेंटली पेट की बॉटल जो होती है यानी कि प्लास्टिक टाइप की बॉटल जो होती है यू उसमें जो माइक्रोबायल लोड होता है वो ज़्यादा हाई होता है स्टेनलेस स्टील के हिसाब से तो उसको वॉश करना और उसके अंदर दोनों बॉटल्स में यू नो टेस्ट किया गया था इन अदरवर्स स्टेनलेस स्टील जो है ये एक फेवरेबल शायद इन्वायरमेंट नहीं लेकर आता बट ये होता है दूसरी तरफ कह सकती हूँ कि प्लास्टिक की बॉटल जो होती हैं दे डोंट किल द बैक्टीरिया कैन स्टिल रिमेन इन दैट बॉटल्स को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है दे शुड बी वाइड ओपन ईजिली ज़्यादा स्क्रब कर सकें नैरो बॉटल नहीं होनी चाहिए जबकि एक सिंपल कैप लगाने के बाद उसमें कहीं पर कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए एक स्टडी से जैसे लोगों ने पता लगा पर्सनल स्टील की बॉटल्स में लोगों के बैक्टीरिया पाया गया है और फिर वो उसके ढक्कन के आसपास जो है वो क्लीन नहीं रहता सो व्हाट शुड वन डू हाउ अबाउट कॉपर की बॉटल इज जनरली हैविंग दी एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज अब कॉपर जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डैमेज करता है इसलिए कॉपर जो होता है ट्रेडिशनली एंड मॉडर्न टाइम्स में एक बहुत अच्छा वाटर कंटेनर माना जाता है और कहा जाता है कि आफ्टर यू स्टोर द वाटर इन कॉपर फॉर मोर देन 16 आवर्स रूम टेम्परेचर पे तो कहा जाता है कि इसका इफेक्ट जो है अच्छा रहता है कम्पेयर टू अ ग्लास बॉटल स्टडी के ज़रिए ये भी पता चला है कि कॉपर इज़ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि ऑटोमेटिकली कॉपर बेटर हो गया अब कॉपर का एक्सपोजर और भी हो सकता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट्स आ सकते हैं और कभी कभी यू नो इफ़ यू आर वल्नरेबल तो एक विल्सन डिसीज़ होती है वो भी कॉपर मेटाबॉलिज्म की वजह से हो सकती है कॉपर का जो लेवल है पानी के लिए ये कहा जाता है कि एसिडिटी को रोक सकता है यू नो इट कैन हेल्प यू आउट इन मेनी मेनी वेज सो चूज़ द स्टेनलेस स्टील बॉटल इफ़ यू वांट अ ड्यूरेबल लो मेंटेनेंस बॉटल फॉर डेली हाइड्रेशन इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट चूज़ कीजिए अगर आप कॉपर बॉटल तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इट्स एंटी माइक्रोबायल इफेक्ट और लिमिटेड और एक कंडीशन डिपेंडेंट आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए डू नॉट अज्यूम कि कॉपर का पानी आपकी इम्यूनिटी हेल्प करता है डाइजेशन हेल्प करता है जनरल हेल्थ हेल्प करता है कभी भी एसिडिक ड्रिंक्स जो है कॉपर की बॉटल में मत ऐड कीजिएगा एंड बॉटल को अच्छी तरह ड्राई होने दीजिएगा फिर उसको बंद कीजिएगा डोंट क्लोज द बॉटल व्हेन इट्स अंदर से गीला अपनी बॉटल को अच्छी तरह क्लीन कीजिएगा आफ्टर यूजिंग इट फॉर टी जूस कॉफ़ी स्पोर्ट्स ड्रिंक्स या प्रोटीन शेक्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
0: माय टाइम विद कशिका
2: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज़ में आप ही तो नहीं

0: के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
2: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
1: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
3: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
4: इंडिया आ रहा है ऑकलैंड एंड द ब्लू टाइगर्स नीड योर वॉइस बिहाइंड देम। देखिए इंडिया को ऑल व्हाइट्स के अगेंस्ट गो मीडिया स्टेडियम थर्सडे 12 नवंबर को, एक रेयर चांस अपनी नेशनल टीम को न्यूजीलैंड की जमीन पर लाइव देखने का। ब्रिंग द फैमिली, वेयर योर कलर्स एंड फिल द स्टेडियम विद प्राइड। अडल्ट टिकट सिर्फ $20 से शुरू, किड्स $10 से, प्लस बुकिंग फीस। बुक नाउ एट टिकटेक एंड बी देयर फॉर अ हिस्टोरिक नाइट।
5: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए। हाय, मैं हूँ गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस। जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं।
6: टर्म्स, कंडीशन, फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई। कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी, विच इज 0800-564-424।
7: High five! High five? Anybody? No? Ah, that's right. It's $5 weeks at Pack and Save. Low five! Ah, that's more like it. Although this would make a lot more sense if I had fingers. $5 weeks! On now at Pack and Save!
8: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Get there in Apex world-class comfort with Fiji Airways, where the luxuries start from the moment you book. Get fast-track security, extra baggage, and priority check-in. Once you're there, enjoy even more time to relax with resort check-in. Complete your flight check-in from various Fiji resorts with your luggage transported securely to the airport. Travel in style with one of the world's top 10 airlines. Visit fijiairways.com.
9: Get the bold new flavors of Subway rice bowls, like chicken teriyaki or green goddess falafel, packed with protein, fiber, warm brown rice, and your choice of salads from just $11.

0: ऑफिस शाउटआउट में मेरे साथ विलिंगटन से इतनी दूर कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड से सुन रहे हैं नन अदर देन एश फ्रॉम सुशील मसल शेफ कैफे विलिंगटन. आपने लिख के भेजा वेरी हैप्पी वेरी सनी हैप्पी बहुमूल्य टाइम को बिताते हुए स्ट्रांग एंड हेल्दी रहते हुए वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग काशिका जी स्टे ब्लेस्ड विद अस और लगे रहो ऐसे ही. ओ थैंक यू. बिल्कुल आप भी लगे रहो सुशील जी सॉरी एश जी फ्रॉम सुशील्स मसल शेफ कैफे. थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड इट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. बाय द वे एक बात बताऊँ आपको, मेरे पास कुछ शेयर करने के लिए है. हो सकता है कि आप का लॉजिक चल जाए. अभी आपने गुरु कंडोला को तो सुन ही लिया है. वैसे गुरु कंडोला क्या करते हैं, एक हाउस होल्ड नाम हो चुके हैं फाइनेंस का, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का. इन्होंने मेरी कल इनसे मुलाकात हुई और इन्होंने मुझे न्यू वर्ल्ड के वाउचर्स पकड़ाए जो $1,000 वर्थ के एक विनर लेके जाने वाला है. तो अगर आप भी चाहते हैं लॉजिक लिख के भेजिए. देखो अभी ट्विस्ट आ रहा है, लॉजिक लॉजिक लिख के भेजिए 5599 पे, कीवर्ड है. एंट्री तभी लूँगी मैं. और साथ में आपको मुझे लिख के भेजनी है बच्चों के ऊपर एक 6 वर्ड स्टोरी. ओके, 6 वर्ड्स की एक स्टोरी बच्चों के ऊपर लिख के भेजनी है. जल्दी करो. लेट मी सी हाउ क्रिएटिव यू कैन गेट. देखो यही टाइम होता है और इस तरह से जब हम अपना ब्रेन चलाते हैं ना तो अल्जाइमर बहुत दूर दूर तक नज़र नहीं आता. सिर्फ लॉजिक लिखने से काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त. 3, 5, 5, 6 नो नो नो नॉट एक्सेप्टेड. लॉजिक लिखिए 6 वर्ड की स्टोरी विद अ थीम ऑफ या आई थिंक आइडिया ऑफ अ बेबी और बच्चा या चाइल्ड. ओके किड्स ऑलरेडी चल रहे हैं यार, कुछ बच्चों के बारे में भी समझो ना.
1: Top hit of the hour brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
0: याद रहे हमारी टर्म्स एंड कंडीशन समझने के लिए आपको hum.rova.nz पर जाना पड़ेगा. और ये कॉन्टेस्ट बस अभी समझ लीजिए, मैं गाना चलाने वाली हूँ, इस गाने के बाद वो स्टार्ट होते ही मैं बंद कर दूंगी. ठीक है, चलो जल्दी. देखा मैंने बोला ना कुछ लिखो. क्रिएटिविटी आपकी कहाँ है भाई, सब चुप हो गए.

0: ब्रांच नहीं है।
1: वाकई हमारी कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन एक चीज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, के मार्ट ने बड़ी एक इनएक्सपेंसिव कैमरा ग्लासेस हैं जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड स्टोर से हटा दिए हैं। लेस देन 3 मंथ्स जब इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया, एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ रिगार्डिंग प्राइवेसी कंसर्न्स। एंको के स्मार्ट ग्लासेस ये क्या करते थे, दे यूज टू कनेक्ट टू इंटरनेट एंड अलाउ करते थे फोटोज वीडियोस रियल टाइम शेयर करने के लिए। इट वॉज सेलिंग फॉर $99। ये प्राइस जो था इन ग्लासेस का, काफ़ी जगह पे जे बी हाई फाई वगैरह में जाएं तो $600 में मिलता था, लेकिन केमार्ट के एंकोस जो हैं बहुत जल्दी ऑनलाइन सोल्ड आउट हो गए थे इन द मंथ ऑफ अगस्त। और उसके बाद दे स्टार्टेड वंडरिंग व्हाट टू डू नाउ, दे वर स्पीकर ग्लासेस लुक्स लाइक दैट दे वर अवेलेबल ओनली फॉर $49, बट दे केम विद नो कैमरा, यानी कि जस्ट यू कुड स्पीक टू द कैमरा। कैमरा इक्विप स्मार्ट ग्लासेस जो है एक कंसर्न अराउंड प्राइवेसी जो है ये उठा रहे हैं, और ये इनएक्सपेंसिव वर्जन्स जो है ये मिलने शुरू हो चुके हैं अपीयरेंस ग्लासेस के साथ साथ, और रिलेटिवली ये इजीली आप इसे पहन सकते हैं। नाउ एक कंपनी है यूएस में वो $59 में इस तरह के ड्रैगन लाइट ब्रेक ग्लासेस वो सेल करते हैं, बट ये प्राइवेसी एक्ट्स के ज़रिए पता तो चल रहा है कि ये चीज़ें बिल्कुल डेंजरस हो सकती हैं। रिमेंबर अभी कुछ दिन पहले आई स्पोक टू यू अबाउट कि कहीं चीटिंग भी हो रही थी, और पता नहीं वो कैमरा चल रहा था क्या हुआ क्या नहीं, आई एम श्योर इट मस्ट बी सम वन ऑफ दीज कैमराज। लेकिन द ऑफिस ऑफ द न्यूजीलैंड प्राइवेसी कमिश्नर हैज़ बीन अप्रोच फॉर अ कमेंट एंड वी आर वेटिंग टू हेयर फ्रॉम हिम। बट वुड यू फील कम्फर्टेबल अराउंड समवन वेयरिंग इक्विप्ड कैमरा स्मार्ट ग्लासेस? आई विल बी वेरी वेरी स्केयर्ड ऑफ इट। इतनी क्यूट आप लोगों की सच्ची में स्टोरीज आई है ना, मैं अगले घंटे पर 6 वर्ड स्टोरीज जरूर बताने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड, कीप हमिंग। एंड मेरा ये कहना गलत था कि आप क्रिएटिव नहीं हैं, बाप रे आप तो मुझसे भी ज्यादा क्रिएटिव हो। वेल डन।

0: ईट बेटर लिव बेटर. लेकिन विशाल थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट. आपने बताया स्मार्ट ग्लासेस आर द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ द टेक्नोलॉजी. आई एम टोटली विद यू. आई एम वेरी स्केयर्ड अबाउट इट एज वेल. ओके बट अब चलते हैं बॉलीवुड की तरफ. अगर हम देखें क्या खबर हो सकती है. जस्ट इट्स नॉट इवन अ मंथ जहाँ पे रामायण फिल्म जो है ये रिलीज होने वाली है और एक्साइटमेंट इसका धीरे धीरे बढ़ रहा है. एंड देर इज़ नो क्लैरिटी ऑन द डेट. कहा जा रहा है दिवाली पे रिलीज़ होगी बट कुछ चीज़ें जो है पता चली हैं जहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रॉबेबली द फिल्म इज़ गोइंग टू बी होल्डिंग अ पेड रिव्यू ऑन द 4th ऑफ नवम्बर इन इंडिया एंड द नेक्स्ट डे ऑन 5th इट वुड बी फुल फ्लेज्ड. इट विल बी अ रिलीज डेट. अब ये प्लान जो है इट इज़ स्टिल लॉक्ड. ये फाइनल डिसीजन अभी कंफर्म नहीं हुआ है बट द मच अवेटेड एक फिल्म जो है जापानीज फिल्म गॉडज़िला माइनस ज़ीरो ये इंडिया में रिलीज़ होने वाली है सेम वीक में. अब यहाँ पे भी आई एम श्योर इट विल बी इन द सेम वीक इटसेल्फ. आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट बट आई एम नॉट वेरी श्योर. आई कैन ऑलवेज से दैट. तो वील वेट एंड वॉच की गॉडज़िला माइनस ज़ीरो जो है ये सेम वीक में क्या रामायण की रिलीज़ होगी. आप रामायण देखने तो जाएंगे ही जाएंगे ना. ऐसा लगेगा कि वाकई रामायण फिल्म देख ली, रामायण पढ़ ली और रामायण को जब हम देखते हैं. बट एक पढ़ने का रामायण ओरिजिनल बात ही अलग होती है.
1: मार्च 2027 एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
2: रुज़बे टिकट्स बुक हो गए
1: तो फिर देर किस बात की. बाली बुला रहा.
2: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
1: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
4: हेलो एवरीबॉडी.
1: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
5: थोड़ा घूमे आओ अच्छा लगेगा आपको. मन बहल जाएगा आपका भी.
1: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुज़बे ओनली ऑन हम.
6: At Bunnings, you can make any home spooky this Halloween with our new range. We've got inflatables, stake lights, and even animatronics. Plus, we've got buckets for the kids trick-or-treating. Come and get more Halloween for less.
7: Bunnings Warehouse.
8: 4.95% finance on your next car. Exclusive to West City Auto Group. Right now, get into the Havel Jolion, Havelit 6, Tank 300 or Canon Ute range with 4.95% per annum fixed finance for 48 months with just 20% deposit. Whether you're after something stylish, practical, rugged or ready for work, they've got something for everyone. But hurry, this exclusive offer won't last forever. Speak with Jimmy Taylor and team at West City GWM. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
9: They say there's nothing like a hot bath.
10: Code Interior say there's nothing like a bath that matches perfectly to the basins.
9: Code Interiors is the expert in exclusively designed baths and basins that complement and refine any bathroom on any budget.
10: Don't settle for nearly, settle for exact.
9: Whether it's Cove Concrete, Villa Stone or acrylic.
10: Code Interiors, perfecting baths and basins.
9: Find your nearest stockist at codeinteriors.co.nz.
11: Don't sleep on Briscoe's one-day sale on now with huge one-day 60% off deals plus huge one-day store-wide savings. Stores open late. Briscoe's one-day sale today only. See online for TCs and store hours.
12: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका. लोटस मैनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी इन नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश. साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट. बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो. फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November. टीज एंड सीज अप्लाई.
13: Hi, I'm Murray Harris, head of KiwiSaver at Milford. We're delighted to have just won Canstar's KiwiSaver Provider of the Year and Outstanding Value KiwiSaver Scheme Awards for a record 7th year in a row. Canstar recognised us not just for our long-term returns, but also for the support and confidence our members say we provide. And that's another really good reason to choose Milford.
14: Past performance is not a reliable indicator of future performance. Milford Funds Limited is the issuer of the Milford KiwiSaver Plan. Please read the product disclosure statement at milfordasset.com.
15: Glad I got my enrolment sorted the other day. See, Bhai, I told you it was easy.
16: Enrollment for voting? I still haven't done mine. The election isn't until November. I've got time, right?
15: No, not this year. You need to be enrolled by the 25th of October. You can't enroll and vote on the same day.
16: Really? What if I miss it?
15: Well, your vote won't count for this year's election.
16: Acha! You've convinced me. I'll enroll tonight.
17: Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
2: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
0: ओके मैं ड्रीम डायरी की तरफ जब मैं आती हूँ तो मैं एक ही बात बताना चाहती हूँ. यू नो वी स्पोक अबाउट फायर येस्टरडे. वी वर टॉकिंग अबाउट द फायर विद क्वींसटाउन. तो एक ही चीज़ हो सकती है कि कभी कभी आप ज़्यादा नहीं अगर सोचते हैं बट अगर आपने अपनी ड्रीम्स में कुछ फायर देखी है तो इट्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिन्यूअल एंड एक सेफ्टी हुए जब आप ये फ्लेम्स को अगर देखते हैं. You have the inner strength and then you start getting ready for a very positive life. अब ये लोग देखते हैं कि जो फायर या तो कैंप फायर देख रहे हैं या फिर आप एक फायर प्लेस के अंदर एक फायर देख रहे हैं. ये आपके अंदर की क्रिएटिविटी बता रही है. स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन लव एंड ऑप्टिमिज्म जो आपने इस समय मुझे दिखा दिया है. आई कैन सी देर आर सो मैनी ऑफ यू हु आर सो क्रिएटिव. मैं अभी इतना स्ट्रगल कर रही थी मुझे ये एक्चुअली पहले दिन ही कर लेना चाहिए था. नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट डूइंग दिस ओनली फिर ताकि मैं हफ्ते में आपके मैसेजेस पढ़ सकूं. लेकिन हाँ अभी मैं अगले घंटे पर ये आपके सिक्स वर्ड स्टोरी जो है ये पढ़ूंगी ज़रूर. अभी के लिए एक गाना आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ. ज़रूर ध्यान से सुनिएगा. लेकिन एक चीज़ और है जो आपको ध्यान से सुनिए. हमारे प्रोग्राम्स हमारा इलेक्शन स्पेशल जो है लेबर के टाकानिनी के कैंडिडेट खड़क सिंह जो है इनको स्पॉटलाइट पर लेकर आ रहे हैं नन अदर देन ड्राइव शो के सैंडी एंड्रूज पे. और कोशिश कीजिए अगर इनकी बात पूरी समझ सकते हैं आप तो डेफिनेटली बी नाइस. दिल बी टॉक्स ऑन स्मॉल बिजनेस कॉस्ट ऑफ लिविंग सुपर मार्केट कॉम्पिटिशन एक्सेट्रा. एंड you know there was a debate on Chris between Chris Hipkins and Luxon. There is an election special which is going to go on. Do get in touch with your own phone by dialing actually texting 5599 pe drive aur aapko ye details mil jayenge.
2: Dil se dil tak unlock your property's true sale value with NZPMI your local development experts. For a free site assessment visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: तो जब बातें कर रहे हैं अबाउट इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, तो चलो उनकी तरफ से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रैक मैं अब आपके लिए लेकर आ रही हूँ। और अगले घंटे पर मेरे पास आपको देने के लिए, आपका नाम ड्रॉ में ऐड करने के लिए एक और खूबसूरत सा इनाम है। अब याद रहे, ये जो इनाम आपके लिए फॉर्चून में हम लेकर आते हैं ना, हम के साथ जो अब दिवाली की फॉर्चून आपकी किस्मत एक्चुअली जो अगर जगनी है तो $1000 इकट्ठा एक साथ मिलना है। नो शेयरिंग विद एनीवन, नो केयरिंग विद एनीवन, बट जस्ट शेयरिंग इट विद योर ओन सेल्फ। तो कभी कभी अपने बारे में सोचना पड़ता है, जैसे कि मैं कहती हूँ माई टाइम में अपने बारे में सोचना पड़ता है। अपने लिए पहले अपना ख्याल रखो, तब जाके दूसरे का ख्याल रख पाओगे ना। अरे भाई, ये तो दोस्ती यारी में सब चलता है ना, जहाँ पे मैं आपके साथ इस तरह की बातें करके आपको प्यार से समझा देती हूँ।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Michael. Weekdays 6 to 10 a.m.
1: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल 100% वेजिटेरियन जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए टैंगी डिप्स बनाने के लिए पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए या बस सीधा टब से खाने के लिए क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस ऑलवेज देसी अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन कशिश नेचुरल योगर्ट
2: सुनो आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया घर बेचने को कह रहे थे
3: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है
2: इसीलिए NZPMI से बात कर लो वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं
1: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए NZPMI टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस कॉल पॉल ऑन 0800 4NZPMI
4: The right support can make enrolling and voting easier. Ask someone you trust to help you enroll, find information, and plan how you'll get to a voting place. When you're there, they can also support you to cast your vote behind the voting screen. However you're supported, you make the decisions. Find out more at vote.nz or call 0800 36 7656. Brought to you by the Electoral Commission.
5: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
6: वो इंडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना
7: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
8: And award goes to Indelible Homes.
7: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
9: Kahani of Indelible Homes.
10: Time check.
11: Brought to you by Mann Tires for all kinds of tires and mechanical services. Open 7 days. Call Mann Tires on 0800-00010.
10: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
12: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. The National Party wants to drug test those on job seeker benefits as part of its latest election welfare policy. Spokesperson Louise Upston says it will be wide-ranging.
13: We're starting with 10,000. Someone who fails a second drug test would have a drug assessment. Is their drug use a significant impediment?
12: Two men are appearing in court over an alleged mugging in Auckland's Stanmore Bay. Police accuse the pair of confronting three teenagers on Brightside Road just after midnight, assaulting a victim and running off with personal items. Officers were able to use the tracking system on a stolen phone to retrieve the goods. In the lower south, a cautious sigh of relief as the weather lends a hand to damage control at Walter Peak near Queenstown. Light rain overnight has helped suppress the 1,400-hectare fire there. An early morning flight found it to be significantly reduced with no visible flames around the perimeter. And young researchers who want to safeguard the country are being given a hand. The Natural Hazards Commission is doling out more than $3 million for projects. Spokesperson Joe Horrocks says the next generation is stepping up.
14: We're looking to try and build the capability of New Zealand scientists to contribute in this field for a long time to come.
12: In sport, rugby first, and there's a big question mark at first five, an hour out from the All Blacks team naming. Richie Mwanga has been ruled out of Saturday's Bledisloe Cup test at Eden Park after suffering a calf tear at training on Tuesday. And in cricket with General, formerly Fujitsu, still New Zealand's favourite heir, ex-wicketkeeper BJ Watling feels ready to take over as Black Caps batting coach at the end of the year.
15: Been lucky enough to have 4 years now of some head coaching experience and some assistant experience as well, so that hopefully holds me in good stead.
10: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
16: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस
17: सूचित किया जाता है कि प्रवीणा शैलेंद्र और गेटवे चार्टर्ड अकाउंटेंट के शवीन प्रकाश की मां राखी राखी फिजी के स्वर्गीय श्री राम की पत्नी शांतिबाई राम की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज दोपहर 1:30 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। सूचना दोबारा सुने प्रवीणा शैलेंद्र और गेटवे चार्टर्ड अकाउंटेंट के शर्वीन प्रकाश की माँ राखी राखी फिजी के स्वर्गीय श्री राम की पत्नी शांतिबाई राम की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार 8:30 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा।
16: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: It feels like 17 degrees right now. The highs of 21. High temperature of 10. आज का forecast बताया जा रहा है. कुछ morning में हवाएं जो चल रही थी clouds के साथ suddenly कम होती चली जाएंगी. It feels like 17 degrees. 7:32 पे sunset बताया गया है.
0: My time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Mid morning maza.
3: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithe, kyunki aa rahi hai.
2: My time with Kashika.
1: देखो एक्साइटमेंट कितना है ना आज इतने सारे 6

0: eat better, live better.
1: पता नहीं मुझे क्या हो गया. So sorry Jharna, and I'm very sorry 1921. मैं इतनी ज़्यादा मगन हो गई थी आप लोगों को अपनी कहानी सुनाने में कि मैंने वॉल्यूम ही डाउन नहीं किया. तो आई वॉज टेलिंग यू, यूँ कि मैं बता रही थी कि मैं गई थी कल पापा टोयोटा और इतनी धूप पड़ने लग गई है कि इस धूप की वजह से मैंने सोचा कि क्यों नहीं, म्यूज़िक नहीं चल रहा ना, हाँ तो क्यों नहीं मैं एसी चला लूँ. बट मैं एसी जब चलाने लग जाती हूँ तो सडनली इट स्टार्ट हिटिंग माई थ्रोट एंड माई नोज, तो साइनस स्टार्ट प्लेइंग अप. सो दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही होती है तो ऐसे में क्या करे इंसान, यू नो. तो हाँ, इसको बेयर करो इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू. इसको अगर आप बेयर करोगे तो ही आप ठीक रहोगे, क्योंकि अब एकदम चेंज ऑफ मौसम, ठंड ठंड ठंड, सडनली गर्मी गर्मी गर्मी, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. बट एक चीज़ और है, हमारे संडे से फास्ट शुरू होने वाले हैं और नवरात्रि इज़ वन ऑफ दोज फेस्टिवल्स जहाँ पे यू नो वी बिकम वेरी क्वाइट और हमारा डिवोशन टाइम शुरू हो जाता है. माइक ऑन है, सब कुछ ऑन है, सब कुछ सुनाई दे रहा है ना, ओके. तो इस समय फास्टिंग के टाइम पे वी लिमिट आर थिंग्स की ग्रेन्स नहीं खाने, नो रेगुलर सॉल्ट, नो अनियन, नो गार्लिक. हम किचन में आते हैं 9 days के लिए और ट्राई एंड गेट इन्वेंटिव, और कुछ स्टार्ची रूट्स, कुछ नटी हम आटा और कुछ फ्रूट्स के स्नैक्स वगैरह हम बना लेते हैं. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करती हैं यू नो इन नवरात्रि टाइम, एंड दैट इज़ लाइक साबूदाना टिक्की. मैं आज तक इसको मतलब मास्टर नहीं कर पाई हूँ. आई मेक इट बट आई ब्रेक इट. गरम गरम इसको खाओ और ठंडे ठंडे दही के साथ, अरे बाप रे. ख़ास तौर पे आप मुंबई जब जाओ ना, आपको हर शॉप के अंदर साबूदाना वड़ा मिलता है. वहाँ की तो मतलब अनबिलीवेबल है. बट येस, इन द मंथ ऑफ डिसम्बर जनवरी आई विल बी गोइंग एंड इट्स गोइंग टू बी फन टू गो एंड ईट ऑल दैट कचरा पट्टी. कूटू का चीला. अब ये कूटू जो है, ये आटा, इसका चीला बहुत अच्छा आइडिया है और ये कहीं ना कहीं डोसा और एक पैनकेक के बीच में आप इसको बना सकते हैं. मखाने का चिवड़ा. अब आप ये, आप जो आप मखाने होते हैं इनको आप इनका चिवड़ा बना सकते हो. डू वॉन्ट मी टू डू सम रेसिपीज नेक्स्ट वीक, लेट मी नो. आई एम हैप्पी टू शेयर सम रेसिपीज. और उस मखाने के चिवड़े के ऊपर आप थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया एंड यू आर सॉर्टेड. आलू की चाट व्रत वाली, ये अलग बनती है और बहुत बहुत ज़बरदस्त होता है. कोई इमली नहीं, कोई सेब नहीं, कोई बहुत सारी चीज़ें नहीं है, बहुत कम चीज़ें हैं एंड इट रियली वर्क्स आउट वेरी वेल. सिंघाड़े के पकौड़े, अरे ऑल टाइम फेवरेट है. आपको लगता है कि प्रॉपिट ग्रम्बल कर रहा है तो उस समय आपने लिया और सिंघाड़े के आटे के आपने पकौड़े बना लिए. पूरियाँ भी बनती ही हैं, बनती है. आपने फ्रूट और नट की लस्सी, बहुत कॉमन है, एवरीबडी हैज़ इट, कि उसमें कभी कभी आप फ्रूट्स में दही के साथ एप्पल, बनानास, कभी बादाम, आप ये सब ऐड करके क्रीमी लस्सी पी लेते हैं एंड आफ्टरनून आपकी अच्छी निकल जाती है. और फिर होता है कुमरा, यानी कि जो मीठे आलू होते हैं उनको क्या बोलते हैं, शकरकंदी. इस तरह के जो आलू होते हैं शकरकंदी, ये आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. इनके आप स्वीट पोटैटो के क्रिस्पीज बना सकते हैं एंड या इसके अंदर फाइबर भी है, एनर्जी भी है, स्वीटनेस भी है. थोड़ा सा उसमें आपको व्रत का आप नमक डालेंगे एंड यू आर डन. राजगिरी के लड्डू, यानी कि अमरनाथ या राजगिरी, इसके आप लड्डू जो होते हैं आप डेफिनेटली बना सकते हैं हॉट पैन में एंड यू आर सॉर्टेड एंड यू आर डन. हियर यू गो. हमारे नवरात्रि के लिए हम सॉर्ट हो सकते हैं ना, इसी तरह मेंटली प्रिपेयर कर दिया संडे को. बहुत लोग फास्ट करते हैं.
2: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
3: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ.
2: बढ़िया है. अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए. और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
3: इंटरेस्टिंग. और कुछ?
2: बस इतना ही.
3: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा.
4: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश. फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस. and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry. And Fortune, bring home the fortune.
5: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के
6: सुनो आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया घर बेचने को कह रहे थे
7: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है
6: इसीलिए NZPMI से बात कर लो वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं
8: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए NZPMI टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस कॉल पॉल ऑन 0800-4-NZPMI
9: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right. Get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off, experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry! Limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
10: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free, and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces, first come first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
11: A message to all road users. You must now give way to buses that are leaving bus stops, the roadside or bus lanes in areas where speed limits are 60 kilometres an hour or less. This will help buses rejoin traffic safely. Learn more at nzta.govt.nz.
12: Bunnings are driving great value on auto essentials with BarsBug's 1 litre windscreen cleaner concentrate only $10 or Armoral 1 litre car wash just $7.98. Head in store or online for even more great value. Bunnings way.
4: Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
1: So coming to six word story, thoda music chahiye bhai, ruko. Don't worry, zyada tez nahi hoga, itna hi hai. Okay, so Wahid aapne call kiya tha aur aapne bataya, Mama, Papa won't come home again. This has such a deep meaning, isn't it? Honestly. Oh, it's very, very sad. Mama, Papa won't come home again. Wahid, thank you very much. And iske baad Ashwin aapne likhe bheja. Ashwin Chand. Babies are cute and adorable. True. Phir aapne likha, the smile of the little one makes my day perfect. Chalo, six word nahi hai, but taking it. Karl. Aapka naam aapne Karl hi likhe bheja, lekin aapne logic nahi likha tha us samay. Your first breath, what a wonder. Neelam. आपने लिख के भेजा, 9 months later the world changed. Actually, देखा जाए जब माँ बनते हैं ना तो दुनिया वैसे ही बदल जाती है. हर एक चीज़ सेंट्रलाइज अराउंड योर चाइल्ड. स्मॉल स्टेप्स टुडे, जायंट ड्रीम्स टुमारो. एश फ्रॉम वेलिंगटन, वाओ ब्यूटिफुल, थैंक यू माई दोस्त. सरब जोत, आपने लिख के भेजा, द लिटिल ड्रैगन लर्न टू शेयर हिज टॉयज. द लिटिल ड्रैगन लर्न टू शेयर हिज टॉयज, नाइस. विशाल आपने लिखा है, द लिटिल स्टार फेल अस्लीप शाइनिंग, ओ सो क्यूट. आपने अपना नाम नहीं लिखा, 8118, नर्चर द बेबीज दे ब्लूम. देन आपने लिखा 1547, धीर, बच्चे बड़े ही प्यारे होते हैं, बच्चे बड़े ही प्यारे होते हैं. आई लव इट ऑल, थैंक यू सो मच.
4: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: हॉल बना दे।
1: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manuko, Mount Wellington and Westgate. Up to 60% off on now.
2: वैसे ये जो वाहिद ने लिखे भेजा था ना, इट वॉज अ क्वेश्चन मार्क. मामा वोंट पापा कम होम अगेन. सो देखो इट मेक्स सो मच ऑफ डिफरेंस व्हेन यू से समथिंग. आई कैन टोटली रिलेट टू हाउ इट कुड हैव बीन सेड, बट माय अपोलॉजीज वाहिद. आई होप आपने अब इसको क्वेश्चन की तरह अगर जब पढ़ो तो अलग लगता है. टॉकिंग अबाउट ऑकलैंड कोरोमंडल कोस्ट लाइन, दे विल बी बैंड फ्रॉम टेकिंग मोस्ट ऑफ द मरीन लाइफ. लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा फ्रॉम नेक्स्ट मंथ अलॉन्ग साइड डे लिमिट एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं. सो ओशंस एंड फिशरीज मिनिस्टर शेन जोन्स ने अनाउंस किया इनडेफिनिट क्लोजर, जिसमें कुछ जोन्स को कवर किया गया. द स्ट्रेच ऑफ द बीच, रॉकी शोर, रॉकी रॉक पूल जो हाई टाइड के टाइम पे आ जाता है. और ये बैन जो है ये ऑकलैंड के ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट, वाहिकी आइलैंड एंड कोरोमंडल में 1 नवंबर से लागू होने वाला है. उनका ये कहना है दैट कि कई जनरेशन से हम न्यूजीलैंडर्स जो हैं बीच पे बहुत यू नो इन्जॉय करने लगते हैं, बट द बिहेवियर्स ऑफ पीपल आर एक्चुअली इंडेंजरिंग द इको सिस्टम. अब ये क्लोजर जो है प्रॉबेबली यू नो यू विल प्रॉबेबली नॉट बी एबल टू गो देयर डू सम काइंड ऑफ फिशिंग ऑफ यू नो हार्वेस्ट के टाइम पे लोग चीज़ें यू नो जाके करते हैं. सो या दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी हैपनिंग.

0: Kashika.
1: Wah.
2: How?
1: Adbhut.
3: अद्भुत तो यही है दैट हम आपके लिए फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून यानी दिवाली फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून लेकर आ रहे हैं. $5,000 वर्थ के हमारे पास आपके लिए $1,000 वर्थ के यू नो प्राइजेस हैं. अभी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं. नाउ इज़ द टाइम जहां हो सकता है आपका मन कर रहा है कि हम यू नो $1,000 का क्या कर डालें, क्या हो. ऐसे में आपके फॉर्चून को दिवाली में बदलने के लिए कैश में Fortune itself is there. So Fortune is giving away $1,000 cash. अब ये cash किसी का भी हो सकता है. Fortune जो कि बहुत famous है अपने whole grains, essential vitamins, Fortune, Harvin, big या small में आपके घर में आ ही जाता है. तो आपको क्या करना है, आपको Fortune जो है आपको लिखना है 5599 पे. आपको text करना है कि आप क्या पूछूं आपके साथ यही सवाल कि एनी थिंग दैट यू थिंक यू नीड टू बाय फ्रॉम $1,000. अगर आपके पास $1,000 आ गया तो आप उससे क्या खरीद सकते हैं. तो 5599 पे आप ये टेक्स्ट करें, कीवर्ड है फॉर्चून, क्या खरीदेंगे $1,000 का, और 5599 पे आप टेक्स्ट करें. याद रहे 5 मिनट का टाइम है, यानी अगला गाना जो मैं दिल से दिल तक का बजाऊंगी वहां तक पहुंचते पहुंचते गाना मतलब ख़त्म होने से पहले पहले आई विल मेक श्योर I'll close the text platform. हमारी terms and conditions समझने के लिए हम .rova.nz पर भी आप पहुंच सकते हैं. And your time starts now.
4: Ladies and gentlemen,
5: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: Sandy and Rizvi on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast. TradeDepot.co.nz.
1: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Swimming pool heat pumps under $2,000. Outdoor four-piece resin lounge set just $299. Outdoor gazebos just $99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
2: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए. हाय, मैं हूं गुरु केंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस. जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूं. लॉजिक फाइनेंस के गुरु केंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं.
3: टर्म्स कंडीशन फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई. कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु केंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी व्हिच इज 0800 564424.
4: Don't sleep on Briscoe's one-day sale on now with huge one-day 60% off deals plus huge one-day store-wide savings. Stores open late. Briscoe's one-day sale today only. See online for TCs and store hours.
5: It's New Zealand Wool Month, so don't miss sheepishly good deals on wool carpet at Flooring Extra. Shop the wool sale now and save on a range of luxurious New Zealand wool carpet. Warm, durable and beautifully sustainable. Plus, you can enjoy 36 months interest-free. So discover the comfort and style of wool that suits your space and budget. Visit your local Flooring Extra showroom today for expert advice you can rely on. TC's fees and credit criteria apply.
6: Flooring Extra. Adore your floor.
7: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
8: Weber barbecue sales almost never happen, so don't miss this one. Join us at Auckland's only Weber store for our massive birthday sale this weekend. Get hands-on with the complete 2026 range, the new Weber Spirits, the upgraded Genesis range, and every colour of New Zealand's favourite barbecue, the Weber Q. The grills are blazing, the savings are real. See you at Weber Store, 86 Lun Ave, Mount Wellington. Sale finishes Monday.
9: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका. लोटस मेनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश. साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट. बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो. फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th नवंबर. टीज एंड सीज अप्लाई.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
10: Rescue me, recycle me.
11: रेस्क्यू में रिसाइकल में मैं आपके पास घर में रोटियां ज़्यादा एक्स्ट्रा बन जाती हैं, फिर क्या करें? तो उन रोटियों को या तो लोग दूध में डालकर खा लेते हैं, या फिर आप उसका चिवड़ा बना सकते हैं या उसका पोहा बना सकते हैं. जैसे पोहा बनता है, प्याज व्याज डाल के छोटे छोटे काट के आप उसको बस आप इसी तरह ऐड कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू दी एंट्रीज, तो रोहिणी फ्रॉम वेलिंगटन, ओह वाह क्या बात है. विनू छाबरा, आप अच्छा, रोहिणी ने कहा है कि दे विल बाय फूड ग्रॉसरीज आप लेंगे विनू, एंड साथ में अश्विन आप हाउस आइटम लेंगे, और सोनाली आपने कहा हाउस आइटम, आपने कहा कि आप गोल्ड खरीदेंगी. परवीना क्या बात है, धीर, दिवाली ग्रॉसरीज, दिवाली शॉपिंग, क्या फैंटास्टिक, व्हाई नॉट, डेफिनेटली जो मन रहा है, जो मर्जी आए खरीदो खरीदो.
0: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4 NZPMI.

0: brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: So I've got a few more entries aur ye entries aayi hain. ग्रोसरी आपने बोला सोनाली एंड अश्विन आपने हाउस आइटम्स वीनू छाबरा आपने बोला ग्रोसरीज आई विल बाय फूड फॉर माय लवली फैमिली वेलिंगटन से आप रोहिणी कार सनिल आपने कहा और आपने तो दिया कुछ लिखा ही नहीं बस आपको पैसे चाहिए ठीक है ना हो सकता है इट कुड बी ए रिटर्न टिकट है ना टू योर होम कंट्री इट कुड बी एनीथिंग इज़न्ट इट ट्रू अच्छा एक चीज़ और है मैंने जैसे नवरात्रि के समय बात करी थी तो मेरे पास कॉल आया आपका और आपने कहा

ये करने वाले हैं, तो बस आप पहुंच सकते हैं buzz@hamfm.com पे. आप ईमेल भी कर सकते हैं अगर आप अपनी कम्युनिटी में चाहते हैं हम आपकी आवाज़ बने. ऑल राइट, टाइम टू बिलीव दैट येस यू कैन डू एवरीथिंग. तो कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार. आज का दिन कहलाता है वीरवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, जो भी इसे कहना चाहें. मेरी मुलाकात आपसे होगी कल सुबह 10 बजे. टू लुक आफ्टर योरसेल्फ्स, दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ. टेक केयर डार्लिंग. दिस डार्लिंग वॉज फॉर द गर्ल्स. ओके.

0: Box with Ketan.
1: Aa gaya.
2: Kia ora, namaste, sat sri akaal, assalam alaikum, aapka swagat karte hain aaj ke is khoobsurat din ke khoobsurat show mein, jiska naam hai Lunch Box Show. Well, yes, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी गपशप करनी है, so yes, आप बने रहिए. अभी से लेके 3 बजे तक हूं मैं और इस आर की स्पेशलिटी ये रहेगी दैट आई विल बी ब्रिंगिंग यू द लेटेस्ट खबर, बैक टू बैक लेटेस्ट खबर, और साथ में ऑफकोर्स मौका भी दूंगा मैं आपको कुछ सुनरे जहां पे आप जीत सकते हैं ढेरों इनाम हिस्सा लेके. वेल, कैसे ये तो यार थोड़ा सब्र तो करना पड़ेगा आपको, राइट? इट कैन नॉट बी लाइक सिंपली कि अभी से मैं बता दूं आपको. थोड़ा आप सब्र करिए, एंजॉय करिए. बहुत ही प्यारा गाना है, लंच बॉक्स शो है. ऑफ कोर्स आई नो दैट इधर यू विल बी ईटिंग समथिंग, सो मेक श्योर कि आप होम सिक रेमेडीज, कुछ ऐसी चीजें जो आप मिस करते हैं यहाँ पे, चाहे वो प्ले ग्राउंड हो, चाहे वो एक मोमेंट हो, चाहे वो यू नो कुछ मूवीज हो, या फिर एनीथिंग यू फील लाइक मिसिंग बीइंग ओवर हियर इन न्यूजीलैंड, मुझे बताइए आप 555-99 पे. जी हाँ, वैसे पॉडकास्ट और ये सारी चीजें भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से आप सुन सकते हैं, किन किन के लिए मैसेज आप मुझे भेज सकते हैं ताकि जीत सके आप ढेरों इनाम. बने रहिए, सुनते रहिए लंच बॉक्स शो आज का.
0: बचाओ क्या,

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स. और सेगमेंट जो कि मैं यहाँ पे होमसिक रेमेडीज के बारे में बताने वाला हूँ, उसके लिए आप रेडी हो जाइए. एक मैसेज आया है नितिन भाई का. वो कहते हैं, वोक अप दिस मॉर्निंग इन माई ऑकलैंड रेंटल फ्लैट टू फाइंड माई बेडरूम विंडोज कंप्लीटली ड्रिपिंग विद वाटर, सोकिंग द विंडोज आइल एंड लीविंग ब्लैक मॉल्ड स्पॉट्स ऑन माई कर्टन्स. बैक होम houses were airy and bright and we never had to wipe down or our bedroom glass every single morning. When I complained to my landlord, he just casually told me to buy a $300 dehumidifier and keep windows wide open in the middle of winter. My power bill is skyrocketing and running heaters and dehumidifiers and I still feels like I'm sleeping in a damp cave. Ooh, what to do, Ketan? Well, कोशिश करता हूँ मैं इसका जवाब देने का. I can imagine, I know how things are, I mean how things, you know, ये जो सिचुएशन है, because जब मैं नया नया पढ़ने आया था तो the house where I was living is also kind of one of the room was like similar, उसमें भी बहुत ही humidity थी और इतना foggy ho jata tha, and then of course the windows used to get so wet and each time we used to complain but nothing was working out. So yes, ek desi jugaad mein aapko batata hu. Sabse pehle to aap budget hack jo ki yahan ki jo sabse kafi popular budget hack ke jo houses hain, for example jahan se aap khareed sakte hain, wahan pe $3 ya fir windows squeezy और बबल रैप के लिए बबल रैप को लेके आ जाओ. ग्लास पर हल्के पानी स्प्रे करके बबल रैप चिपका दो. ये पूर मेंस डबल ग्लेजिंग का काम करता है और कंडेंसेशन जो है उसको भी 70% कम कर सकता है. दूसरा, डीह्यूमिडिफायर को 24 घंटे चलाने की बजाय टाइम पर लगाओ. सिर्फ शाम को 3-4 घंटे चलाओ जब रूम वार्म हो. और हाँ, हेल्दी होम स्टैंडर्ड के तहत लैंडलॉर्ड से प्रॉपर एक्सट्रैक्टर फैंस की मांग ज़रूर करो. एंड जस्ट गो टू द वेबसाइट एंड फाइंड आउट कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या आप कर सकते हैं, क्या किस चीज़ की आप डिमांड कर सकते हैं. डोंट जस्ट थिंक कि अगर आप रूम में रह रहे हैं तो सारा खर्चा आप ही का है, ऐसा नहीं है. इफ़ यू फील, बिकॉज लैंडलॉर्ड की ये भी जिम्मेदारी है कि वो जिनको भी रेंट पे रख रहा है उनकी हेल्थ भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर कुछ हेल्थ को गड़बड़ होती है तो इट इज़ कम्प्लीटली काइंड ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल टू मेक श्योर देयर टेनेंट्स आर लिविंग इन द सेफ एंड हेल्दी एनवायरमेंट. सो वो भी आप वेबसाइट पे चेक कर लो. बट यस, जो मैंने आपको सजेशन दिया है वो एक बार ट्राई करके देखना एंड बताना मुझे. वैसे यस, मैं लिसनर से यहाँ पे पूछना चाहूँगा, इफ एनी वन ओवर हियर हैज अ बेटर और मे बी स्लाइटली डिफरेंट आइडिया टू शेयर ओवर हियर फॉर नितिन भाई, तो मुझे बताइए 5599 पे. लंच बॉक्स विद केतन.
1: मुझे पसंद है लड़का.
2: हाँ,

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
2: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
1: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
3: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI।
4: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए। हाय, मैं हूं गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस। जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूं। लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं।
5: टर्म्स, कंडीशन, फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई। कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी, विच इज 0800-564-424।
6: Don't sleep on Briscoe's one-day sale on now with huge one-day 60% off deals plus huge one-day store-wide savings. Stores open late. Briscoe's one-day sale today only. See online for TCs and store hours.
7: Hey you with the ears. Your skinny phone plan now has rewards. So, all your scrolling, tapping.
8: Babe, wake up. Look at this meme.
7: Ha-ha reacts and thumbs up from dad will actually pay off. Join Skinny and renew 3 times in a row to collect up to 1,000 everyday rewards points. Skinny and everyday rewards accounts must be linked. See skinny.co.nz for eligible plans and T's and C's. Get the Skinny.
9: Happy, happy, happy, oh.
10: Now when you're in the loop with ANZ and take public transport, money loops back. Get 50% cash back on Wednesdays and weekends in October when you tag on and off AT public transport with a personal ANZ Visa card. Eligibility terms and conditions, fees and exclusions apply.
11: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
12: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
13: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927-99439 और विजिट legalassociates.co.nz।
14: Non-stop Bollywood.
15: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
14: हम playing Bollywood's biggest hits.
16: Lunchbox with Ketan.
17: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
16: हम Office Shoutout.
18: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। जल्दी से मुझे ऑफिस शाउट आउट के लिए मैसेज भेज दीजिए, कौन से कहाँ पे आप खाना खा रहे हैं, कहाँ से आपने मंगाया है, और चाहे अगर घर पे हो, अगर घर से है तो किसने बनाया है, और कहीं बाहर से ऑर्डर किया है तो कहाँ से किया है, ये आप मुझे भेज सकते हैं 5599 पे। बट यस, जब तक मैसेज आते हैं मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ दैट रोवा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कम्प्लीटली फ्री है, बहुत ही बढ़िया कंटेंट मिलेगा वहाँ पे और इस तरह का मिलेगा दैट यू विल नेवर गेट बोर्ड। जैसे कि हम रिवाइंड की प्लेलिस्ट भी है, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू समवेयर फॉर लॉन्ग ड्राइव तो डेफिनेटली इसके जरिए आप बहुत एक से बढ़कर एक गाने सुन सकते हैं, 80 दशक के गाने भी सुन सकते हैं, 60s-70s के भी फीजी भजन्स एंड फीजी कीर्तन भी सुन सकते हैं, चढ़ती कला पंजाबी गाने अगर आपको पसंद है तो ये हिट लिस्ट आपके लिए है, और साथ में राहत फतेह अली खान जी के भी गाने आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सो यस, इंतज़ार किस बात का, जस्ट डाउनलोड इट नाउ, कम्प्लीटली फ्री है एंड देन यू कैन स्टार्ट लिसनिंग टू दिस। म्यूजिक स्टेशन के साथ साथ ऑब्वियसली कम्युनिटी न्यूज़ के बारे में भी बताते हैं, हाल फिलहाल तो ऐसे कुछ एक्टिविटी हो नहीं रही है बट जैसे ही आएगा हम आपको ज़रूर यहाँ पर बताएंगे। बट यस, एट द सेम टाइम ये रहे मैसेजेस जो मुझे मिले हैं अभी। नील भाई कहते हैं, वर्किंग फ्रॉम ऑफिस आई पिक्ड अप बटर चिकन रैप फॉर लंच। यार ये मुझे ट्राई करना, लाइक आई नेवर ट्राइड इट बिफोर एंड ऑनेस्टली आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट, लाइक अगर मैं करूँगा तो मुझे लग रहा है कि शायद होगा, बढ़िया होगा फॉर श्योर। जसप्रीत ने मैसेज किया है, माई मम मेड फिश एंड चिप्स फॉर लंच टुडे। अरे वाह, दैट्स सो क्यूट, दैट्स सो क्यूट. एंड राकेश भाई का आखिरी मैसेज आया है, वो कहते हैं आई बॉट अ चिकन चाउमीन, चाउमीन सॉरी माय बैड, अब आई बॉट अ चिकन चाउमीन फ्रॉम होम. यार सबने ही मतलब चिकन खाया ऑलमोस्ट, एक ने फिश खाया, दैट्स गुड यार, दैट्स सो लवली. बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैसेजेस. आप बस बने रहिए, लेटेस्ट आज की जो हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड है उसके बारे में बताऊंगा मैं थोड़ी देर में.
14: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड की भी बात कर लेते हैं। 8 अक्टूबर 1941 को न्यूजीलैंड के वेस्ट कोस्ट के कोफी तिरांगी में एक हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ। डेयरी फार्मर स्टैनली ग्राहम ने पुलिस और होम गार्ड मेंबर्स पर शूटिंग की, जिसमें टोटल 7 लोगों की जान चली गई थी। ये ट्रेजेडी तब शुरू हुई जब ग्राहम ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान अपनी राइफल पुलिस को हैंडओवर करने से रिफ्यूज कर दिया। उसका मानना था कि पुलिस उनको अननेसेसरीली टारगेट कर रही थी और उसके नेबर्स उसकी काउस को पॉइजन भी दे रहे थे। वैसे शूटिंग के बाद ग्राहम बुश अब में डिसअपियर हो गए थे और पुलिस, सोल्जर और होम गार्ड ने न्यूजीलैंड की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन हंट लॉन्च की। वो करीबन 12 रातों तक कैप्चर से बचते रहे बिफोर पुलिस ने 20 अक्टूबर को उन्हें शूट किया। ग्राहम नेक्स्ट डे अपनी इंजरी से मर चुके थे।

0: चलिए पॉडकास्ट की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। इस एपिसोड में लेबर के टाकानिनी कैंडिडेट्स खरक सिंह के साथ स्मॉल बिजनेसेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, सुपरमार्केट कंपटीशन, रिटेल क्राइम, पॉलिसिंग, ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर डिस्कशन होगी। साथ ही क्रिस हिपकिंस और क्रिस्टोफर लक्सन के लेटेस्ट डिबेट पर भी बात होने वाली है। सो यस, मेक श्योर कि आप आज ये सुनते रहिए, बिकॉज आपको जल्दी इसके बारे में अपडेट मिल जाएगा। एक और पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ है जहाँ पे शर्ली सेठिया आई थी यहाँ से, यहाँ पे स्टूडियो में, अनफिल्टर्ड विद शर्ली सेठिया। शर्ली सेठिया अपने न्यूजीलैंड से इंडिया तक की जर्नी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आउटसाइडर के तौर पर करियर बनाने के चैलेंजेस को उसके बारे में बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से जवाब दिया है। पब्लिक ओपिनियन, इंडस्ट्री कनेक्शंस, एक्सपेक्टेशंस और अपनी टर्म्स पर करियर बिल्ड करने की रियलिटी, गुड बैड और ब्रूटली ऑनेस्ट साइड सब कुछ डिस्कशन हुआ है। आपको ज़रूर ये चीज़ देखनी चाहिए। तो आप मुझे बस 5599 पे ड्राइव लिख के भेज दीजिए, या फिर अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड्रोज पे ये भी सर्च कर सकते हैं स्पॉटिफाई या फिर रोआ पे। ब्रेकफास्ट कैचअप, ब्रेकफास्ट कैचअप, बियॉन्ड द डेप्थ्स, व्हाट डज सक्सेस एक्चुअली मीन। विजय और पूजा डिस्कस करते हैं कि सोसाइटी सक्सेस को होम लोन, मैरिज और फाइनेंशियल सेटल्ड होने से क्यों मेजर करती है, और क्या सक्सेस का मीनिंग सब अब चेंज हो रहा है या नहीं। इस पे आप भी जवाब दे सकते हैं वॉन्ट्स टू लिसन टू दिस। सो यस, टू लिसन टू दिस आप हमें BF लिखे और 5599 पे भेज दीजिए ताकि लिंक डायरेक्टली आपके फोन पे आ जाए।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे
3: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
3: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
4: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
5: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
6: It's all go at Weber Store. The four-day spring sale is on. We're Auckland's only Weber Store, a world-class barbecue store unlike anything previously seen in New Zealand, where we exclusively showcase the complete Weber barbecue range with over 50 models on display. Gas to electric, wood pellet to charcoal, we've got the lot. New models, new colours, new capabilities and features with great savings to be had. Get summer ready with our big spring sale, Weber Store, 86 Lun Ave, Mount Wellington.
7: Flight Centre's UK and Europe sale is on now. Fly return to Europe from Auckland from $2,571 with Lufthansa Group. Book in store or online. Fees, T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
8: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
9: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods multi-grain dosa batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods multi-grain dosa batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
10: Lunchbox with Ketan.
11: Aisa bajaunga na ki tere kaano mein roz meri awaaz goonjegi.
12: चलिए फटाफट से फटफट खबर पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आइकारोआ राफिती में वोटर्स वेदर इवेंट से थक चुके हैं। ईस्ट कोस्ट कम्युनिटीज का कहना है कि हर मेजर स्टॉर्म के बाद शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है, लेकिन उन्हें रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल रेजिलेंस के लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन और इन्वेस्टमेंट चाहिए। मार्टिन बोरो का 114 ईयर पुराना जो वाई हैंगा ब्रिज है डेब्रिस ऑफ फ्लड स्लैश रिमूवल के लिए थर्सडे और फ्राइडे डे टाइम आवर्स में क्लोज रहेगा। काउंसिल का कहना है कि रिपीटेड क्लोजर्स ब्रिज के वल्नरेबिलिटी को हाईलाइट करता है। क्वींसटाउन में मिसिंग वुमेन एरिका की सर्च में पुलिस को अभी भी मिस्ट्री मैन आइडेंटिफाई करने में सक्सेस नहीं मिली। एरिका को सितंबर 18 से नहीं देखा गया और पुलिस कह रही है कि मिसिंग पर्सन इन्वेस्टिगेशंस भी एक्टिव हैं। साउथलैंड में अनयूजुअल काउंसिल कंट्रोवर्सी, बिजनेसमैन एडी जी जिन्होंने काउंसिल को लास्ट ईयर नियरली $18,889 डोनेट किए थे, अब काउंसिल बिल्डिंग से ट्रेसपास्ड है। जी का कहना है कि वो डेड एनिमल स्किन्स का गिफ्ट देने गए थे, जबकि काउंसिल सेज हिज बिहेवियर वाज ऑफेंसिव टू स्टाफ। ऑल ब्लैक्स फैंस के लिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। क्या बैरेट ब्रदर्स बॉर्डन और जॉर्डी वॉलबीज के अगेंस्ट फिर से एक साथ फील्ड पर दिखेंगे या नहीं? अगर दोनों खेलते हैं तो ये लास्ट नवंबर के आयरलैंड मैच के बाद पहली बार हो सकता है। हॉलीवुड से एक बुरी खबर है। ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस एवा मैरी सेंट, नोन फॉर वन ऑफ द वाटर फ्रंट और नॉर्थ बाय नॉर्थवेस्ट का 102 साल की एज में निधन हो चुका है और उनके करियर 9 डेकेड्स तक चला, यानी कि 90 सालों तक। और बिजनेस न्यूज में एक मेजर जिम फ्रेंचाइजी न्यूजीलैंड में 100 मिलियन डॉलर एक्सपेंशन प्लान कर रही है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, अराउंड 50 न्यू जिम्स खोलने और अप टू 1000 जॉब्स क्रिएट करने का टारगेट है। वाह, दैट्स अमेजिंग यार।
0: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।